बल दिवाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लेते आए फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाउ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जैस डठे सब दुख जाए तेक बहादुर सिमरिया कर नौ निद आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे पंजा प्यारिया सोहा साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जापिया तापिया जिना नाम जपिया वंड छगया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिट कीता तना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोले जी वाहे गुरु बोले जी जिन्ना सिंगा सिंगरिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी के सांसा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोले जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आ रिया इत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंत की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाह दान प्रोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इस्नान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोले जी वाहे गुरु बोले जी सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दता।

0: सुनी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सदा प्रसारण सेवन कर रहे सी आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस फ्री की पंजाबी सेवा छोड़ से थोड़ी नजर कर रहे हैं सूफियाना कलाम
1: समात फरमाओ सूफियाना रंग समात फरमाओ सूफियाना रंग

Somebody, I'm a somebody,

0: यह आकाशवाणी जी सिंधी सरसाए 9870 किलोहर्ट से तैखा सवाए तां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बेस ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट स्टेबल सेगुना प्रोग्राम शुरू थी चुका है डिटेल्स कुछ ही तरह है थोड़ी देर में तां हमेशा यहां भगत करम साहब के बिना तैखा पोए शहीद भगत सिंह ते एक तकरीर पेश करेंगी तैखा कुछ हुबवतन गीत यह तो असम प्रोग्राम की तफसील तां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधाय हिंदर छो तो भगत कराम साहब के बुध
1: सुभा।

तमाम भगत कौराम साहब के बुधरोहा यह आकाशवाणी की सिंधी सर्विस है। यह पेश है शहीद भगत सिंह तेलिया नंदी तकरीर। शहीद भगत सिंह भारत जे आजादी जे जदोजहद जो महान शहीद भारत जे आजादी के लिए घणे देशभक्तन पैंजे जिंदगी जो कुर्बानी डिनी ए बहादुरी डेखारी पर कुछ नाला अड़ा जेके तमाम ही जज्बे ए इज्जत से याद कया वेंदा तेन एक नालो आए शहीद भगत सिंह। वो एक इनकलाबी हो तमाम घणी बेहतरीन सोच रखंदड़ हो ए को शहीद पण हो। शहीद भगत सिंह की लिगेसी इंदड़ जनरेशन का पीढ़ी का घणो अगत है। संदस जिंदगी एक चमकंदड़ सितारो है। तमाम ही नंढो अरसो रही पर तमाम ही बेहतरीन पैंजे पुठिया अभिलाषा की एक अड़ी राह रखी है जेका अग डी तई इंसाफ आजादी ए मजामत के राह के रोशन कर रही है। भगत सिंह जो जन्म 27 सितंबर 1907 में पंजाब जो इन वक्त पाकिस्तान में तहजो लियापुर जिले के बंगा गोठ में थो। संदस कुटुंब में अग्नि देशभक्ति जो माहौल हो। संदस पिता किशन सिंह ए संदस चाचो अजीत सिंह आजादी के हलचल में चुस्ती से शुमार हुआ। घर जो माहौल कौन परस नजर से भरल हो। भगत सिंह नंढी उम्र का ही इन कदर के जजब कर वरतो। बार की हैसियत में हु साल 1919 के जलियांवाला कतले आम का तमाम घणो मुतासर थो जिते ब्रितानवी फौजन सवे बेगुनाह हिन्दुस्तानियों के कतल कयो। इन कतलेआम भगत सिंह के जहन ते निशान छड़े डिना ए खेस बैठक हुकूमत खिलाफ जंग जोटन लाय आमादा कयो। हुन वसी समत ते पढ़ण शुरू कयो। कार्ल मार्क्स लेनिन ए मिखाइल बंकम के कमन के पाण खां अलावा भारतीय विचारधारा रखंदड़न के पढ़ा रहो जड़ो कि स्वामी विवेकानंद ए बंकिम चंद्र चटर्जी। भगत सिंह को फकत अमल जो मानू न हो पर एक गहरो सोच विचार रखंद हो। समस अकीदो तो बिना समाजी इंसाफ ए बराबरी के आजादी बेमान है। समस दूरादेशी मैस हुकूमत के दे वट का तमाम घणो अगत हुई। समस दूरादेशी हुई कि समाज में तब्दीली अचान खपे। उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में शुमार थो। यह एक बागी ग्रुप हुई जैसी सोच हुई तो

पाकिस्तानी हुकूमत के हथियारबंद कार्रवाई जरिए बाहर कड़ी फिटो कर सके तो उन गैर फाल मुजामत के ख्याल के रद्द कर रखो विश्वास रखो तो इनकलाबी फकत खेस हकीकी आजादी डारे सके तो संदस मशहूर नारो हो इनकलाब जिंदाबाद जो मुल्क भर के नौजवान लाए मुजाहरन में एक पराड़ो कदड़ नारो बणजी पो। साल 1928 में ब्रिटानिया हुकूमत साइमन कमीशन की मुखालफत कदड़ मुजाहरन मथा मौतमार लाठीचार्ज करण जो हुक्म दिनों इन कमीशन में कोई भी भारतीय एफजी को हो। मुजाहरन दौरान लाला लजपत राय एक महान इज्जतदार कौमी अगवान सो तमाम ही बुरी तरह से जख्मी थी पो ए बैद में फौत थी पो। भगत सिंह इन नाइंसाफी का नाराज थी कर राय की मौत जो बदलो वठण जो वायदो कयो। भगत सिंह शिवराम राजगुरु ए सुखदेव थापर से गड़ी कर जेम्स ए स्कॉट के कतल करण की साजिश रखी यो ऑफिसर लाठीचार्ज लाए जिम्मेवार हो पर गलत सियाप सबब उन्होंने एक बे ब्रिटानवी ऑफिसर जॉन सैंडर्स जो कतल करे वरतो। यो अमल को जाती इंतकाम जनो पर एक सियासी बयान हो एक ऐलान हो तो हाँ हिंदुस्तान जहा नौजवान जुल्म बर्दाश्त को न कंदा। साल 1929 में भगत सिंह ए बतुकेश्वर दत्त एक बो बहादुर कम कयो उन दिल्ली में मरकजी कानून साज असेंबली में गैर जानलेवा बम उछलाया तो जालमा कानून की मंजूरी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकजे बम शोर मचाने लाय ठाया वया हुआ नक के नुकसान पहुंचाने लाय धमाके का पोए हुनन इनकलाब जा नारा हया इन मकसद की वजाहत कदड़ पैम्फलेट उछलाया वह वो भजी को वह इन बदर उन गिरफ्तारी की अपील कई ए अदालत के कमरे के पैं पैगाम पहुंचण लाय इन्हें प्लेटफॉर्म तौर इस्तेमाल कर भगत सिंह जो मुकदमो एक कौमी तमाशो बणजी पो। संदस फजाहत जुरत ए सोच की वजाहत संदस नकादन का भी तारीफ हासिल कर वरती। जेल में रहंदे भगत सिंह तमाम घणो लिखो संदस मजमून मां नास्तिक छो आया सो एक अंधे अकेदे जो ताकतवर नकाद ए अकल पसंदी जो दिफा है उन दलील डिनी त भगवान ते अकीदो अमल जो मुतबादल न घुर्जे ए सचा इनकलाबी अकल ए इंसाफ ते भरोसो कंदा। भगत सिंह सोशलिज्म मजदूरन के इस्तेसाल ए तालीम के अहमियत बाबत तमाम घणो लिखो संदस लिखण संदस जहन के पैंजे वक्त का घणो अगते जहर कयो एक अड़ो जहन जो सियासी आजादी ए समाजी सुधारे के बाहमी तालुक के समझे तो वसी अवामी हिमायत ए रहम के अपील के बावजूद भी भगत सिंह राजगुरु ए सुखदेव के मौत की सजा बुधाई गई। 23 मार्च 1931 के खेन लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दिनी गई उन वक्त भगत सिंह महज 23 साल जो हो। ब्रिटानवी अख्तियारी वारा इन इनकलाबन के वधंदड़ मशहूरी का तमाम घणो डिगी वह खेन लिखी चोरी कर मौत की सजा डिनी एत कदर जो मौत की तारीख के पिण अगते कर वरतो पर सदन कुर्बानी मजामत के बाह के अधिक तेज कर सजे हिन्दुस्तान में मानन मातम कर सदन कुर्बानी जो जश्न मलाय यह टई शहीद लखे मानन के दिलन में अमर थी वह। भगत सिंह जो वरसो को फकत दर्सी किताबन तई महदूद को संदस ख्याल अज भी जदीद भारत में पराडो कन था उन एक अड़े मुल्क जो तस्वुर करो न फकत बैठकी हुकूमत का आजाद हो पर गुर्बत जात पात के भेदभाव ए इस्तेसाल का पण आजाद हो गैर मजहबी सोशलिज्म ए अकलियत के संदस जोर अज भी घणी माना रखे तो उन घणी बेन अगवान के मुतासर कर सुभाष चंद्र बोस राम प्रसाद बिस्मिल एतरे कदर जो महात्मा गांधी के पण मुतासर कर जितने समय विचारधारा में तफावत हुआ तो भी भगत सिंह के हिम्मत ए तासीर के कबूल किया वो। अज के जदीद भारत में भगत सिंह के शहीद ए आजम यानी कि वडे में वडो शहीद करे मल्हायो वेंदो आहे संदस जिंदगी नौजवान की ताकत यकीन की अहमियत ए इनकलाबी नजर के दायमी ताकत जो सबूत आए। शहीद भगत सिंह की जिंदगी एक फ्लेम जहां हुई जो रोशन ए तेजी से बरंज रही पर संदस गर्म जोशी अज भी भारतीय के दिलन के छुंदी थी रहे वो एक इनकलाबी हो जैसे बेहतर दुनिया जो ख्वाब डिसने की हिम्मत कई एनी के यकीनी

सब कुछ कुर्बान कर दिनो, संगस वर्षों को माजी तई महदूद को ना है, पर यो हाल ए मुस्कबिल लाए अमल जो सदपण है। तवा शहीद भगत सिंह ते तकरीब बुध रहा, तवा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुध रहा।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हीअ पेश आहिनि देश भक्ति गीत।

हे आकाशवाणी जी सिंधी सरसा है हिंसर असो प्रोग्राम जो वक्त पूरा थी रहा है वरी असा मुलाकात थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 4:30 बजे तेसी तक मोकल सदाई बढ़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार जारी रखने पर भी बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो यह वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
0: रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब भी अंत

0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को भी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से एक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रोक दी गई है। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। जापान में एशियाई खेलों में स्क्वाश स्पर्धा में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, एनसी सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह चुनौती पेश करेंगे। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 30 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during the ongoing conflicts. Addressing the UN General Assembly in New York last night, External Affairs Minister S. Jaishankar pointed out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations.
3: We remain deeply concerned over continuing hostilities, the targeting of commercial shipping and seafarers transiting international waterways is simply unacceptable. India calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
2: He said hostilities continue to destabilize global security, threatening progress and slowing development far beyond their immediate regions. Dr. Jaishankar said India is prepared to do everything possible to help improve the situation, particularly in areas of food and energy security. Union Home Minister Amit Shah will participate in a series of key development programs in Ahmedabad today. He will dedicate the newly constructed WAG-12 locomotive maintenance shed to the nation at the Sabarmati Loco Shed. On this occasion, Mr. Shah will also flag off the high horsepower WAG-12 electric locomotive. Later in the day, Mr. Shah will reach the Sabarmati Railway Station to dedicate various station redevelopment projects to the public. During the event, the Home Minister will also flag off the nation's first liquefied natural gas or LNG-powered demu train, marking a major eco-friendly milestone for Indian Railways. Mr. Shah will also attend an event in

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। इसके अंतर्गत आपने सुना भजन कलाकार प्रवीण दुबे, संगत कलाकार सरोद पर दानिश असलम, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, हारमोनियम पर साथ दे रहे थे नफीस खान और तबला पर साथ दे रहे थे पशुपति नाथ मिश्र। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:30 होने को है। अब सुनिए गीतों भरी गुड मॉर्निंग सुबह के इस कार्यक्रम में, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। और चूंकि बेला ही इतना खूबसूरत है तो इस खूबसूरत बेले में आइए साथ होते हैं और साथ चलते हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम गीतों भरी।

यूं ही नहीं चल सकता कोई किसी के साथ। जब तक एक हमसफर अच्छा ना हो तब तक कैसे कोई साथ चल सकता है, और जब कोई हमसफर अच्छा रहता है तो ये दिली तमन्ना हो जाती है कि ये हमारे साथ रहे, और ये हमारी किस्मत की बात है कि हमें एक अच्छा और खूबसूरत सा हमसफर मिला है जो हमारे साथ हमारी राहों को और खूबसूरत बना दे। और इन्हीं चीजों में जब गीतों में इन बातों को लिया गया है तो गीत भी तो बहुत खूबसूरत होगा। जी हाँ, हमसफर खूबसूरत, साथ खूबसूरत, तो फिर गीत भी खूबसूरत। इन्हीं पर बेस्ड एक गीत सुनते हैं सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

वाकई में किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे। और जब किस्मत से कोई मिल जाता है ना, तो ऐसे ही नहीं मिल जाता है। कहते हैं ना कि पहली बार जब किसी से मुलाकात होती है, कोई ऐसा जो आपको दिल को बहुत खास लगता है, तो एक सबसे पहले नजरें मिलती है, कुछ इशारा होता है, और इशारों में ही दिल की बात समझ लेते हैं। आपको पता है किस्मत ऐसे ही नहीं, जब आप किसी ऐसे से जो आपके किस्मत में लिखा है उससे नजरें मिलते ही आपको समझ में एक आ जाता है, एक ऐसा अपनापन सा लगता है जिससे आपको ये लगने लग जाता है कि हाँ ये हमारा ही है। और वो जो इशारा है ना, वहां कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, इशारों में ही दिल की बात कह दी जाती है।

0: है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती और मेरे साथ है सुषमा। और आज देखिए कितना अच्छी बात है कि पूजा के साथ हमारे साथियों की गुफ्तगू हो रही है और सुबह सुबह का मौसम इतने खूबसूरत लफ्जों में जो पूजा है अपना शो कर रही है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी दोस्तों के साथ रूबरू हो ही जाऊं।
1: बिल्कुल। और सुषमा आज हम बात करने से ये इशारों में दिल लेने वाले
0: अभी आपको
1: इशारों में दिल लेने वालों में फिर क्या होता है ना कि जो हमारी दिली तमन्ना है खास करके लेडीज में आपने ये देखा होगा फीमेल को बहुत पसंद है उनकी तारीफ सुनना और जब दिल किसी को दे देते हैं तो वो एक कोशिश में रहते हैं कि हमें हमारी तारीफ मिलती जाए। क्यों?
0: बिल्कुल सही, क्योंकि कहते हैं ना तारीफ सुनना लड़कियों की ऐसे भी फितरत में है महिलाओं की फितरत में और बार बार उनकी तारीफ की जाए तो वो और सजना संवरना और अपने आप को बहुत अच्छा फील करती है तो फिर करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल। और तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है, यानी कि आप भी तारीफ करते रहिए और इनफैक्ट हम आपको ये भी कह देते हैं कि सिर्फ लेडीज को ही तारीफ सुनना पसंद नहीं है, आप मेल को भी तारीफ सुना सकते हैं, उनको तारीफ उनकी कर सकते हैं। तो तारीफ का सिलसिला जारी रहना चाहिए ता उम्र, क्योंकि आप उससे बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत सी हो जाती
0: है। और पूजा इससे मैं भी एक बात कहना चाहूंगी श्रोताओं से, जब हम किसी की तारीफ करते हैं ना तो उसके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन, एक अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी आती है और उसको भी क्रेज होता है कि नहीं हमें अगली बार और ज्यादा सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है और अच्छा करना है।
1: तो तारीफ सुनने के लिए देखते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है।
0: हाँ, हम मेल चेक करेंगे अभी।
1: हाँ,
0: देखिए गीत तो बहुत खूबसूरत है पूजा, लेकिन साथ ही साथ हम मेल्स भी देखना चाह रहे हैं कि हमारे श्रोताओं को हमारा प्रोग्राम कितना अच्छा लग रहा है और कितना नहीं। और आप अपनी मेल आईडी बताना चाहेंगे श्रोताओं को? iprediodelhi@gmail.com श्रोताओं, ये हमारी मेल आईडी है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इस गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।

0: और हमारे पास मेल आया है कोपर गांव से, सुरेश मलोदे, वर्षा मलोदे, श्रद्धा मलोदे और मानसी मलोदे का है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और कार्यक्रम ये देखो ना सुषमा, अब ये आखिरी पड़ाव पर आ गया है ना।
1: हाँ, और पता ही नहीं चलता कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और दोस्तों, हम तो उम्मीद करते हैं कि जो इतनी प्यार भरी मोटिवेटेड बातें जो पूजा ने आपसे की और हमने भी कुछ कुछ बातें आपसे की, तो वो उनको आप अपनी जिंदगी में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे सहमत जरूर होंगे आप।
0: हाँ, और आखिरी पड़ाव है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि मिलते रहिएगा, ऐसे ही बात होती रहेंगी और अपने बात हम तक जैसे मेल के जरिए आपने पहुंचाया है वैसे ही पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि मिलो ना तुम तो हम घबराए। फिलहाल कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करते हैं। मुझे पूजा भारती और
1: सुषमा को लीजिए।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आठ बजने को है, अब सुनिए हिंदी में समाचार। समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
3: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
4: श्री
2: जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने

0: भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
1: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से एक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उत्तराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

0: ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
1: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधमसिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
3: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ओडिशा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्टबोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। पाकिस्तान आतंकवाद का सीधे

0: प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है। नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से एक शोध प्रकाशित किया है। चाय के साथ रोज 100 ग्राम नमकीन बना सकती है बीमार। पैकेज चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट में कैलोरी ज्यादा है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कॉल्स अपॉन ऑल वॉरिंग नेशंस टू डी एस्केलेट टेंशंस एंड कीप एनर्जी एंड ट्रेड रूट्स ओपन ड्यूरिंग ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स। Russia strongly backs India's claim for permanent seat in UN Security Council. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. All public sector banks and regional rural banks to remain open today for convenience of customers. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Uttarakhand. Char Dham Yatra suspended in view of adverse weather conditions. And in men's cricket, first one-day international of 3-match series between India and West Indies to be played in Tiruvananthapuram this afternoon. And now the news in detail. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during ongoing conflicts. Addressing the UN General Assembly in New York last night, External Affairs Minister S. Jayashankar pointed out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations. He said, hostilities continue to destabilize global security, threatening progress and slowing development far beyond their immediate regions. Dr. Jayashankar said India is prepared to do everything possible to help improve the situation, particularly in areas of food and energy security.
3: We remain deeply concerned over continuing hostilities, the targeting of commercial shipping and seafarers transiting international waterways is simply unacceptable. India calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
2: Referring to the protracted Russia-Ukraine conflict, the minister said, The ongoing war remains a critical international concern and echoed Prime Minister Narendra Modi's call for an end to hostilities. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has strongly backed India's claim for a permanent seat in the United Nations Security Council. In his address at the UN General Assembly in New York last night, Mr. Lavrov said, Russia, in favor of broadening the representation of Asia, Africa and Latin America and Moscow, supports India's and Brazil's candidatures for a permanent seat. He advocated for more seat allocation to the Global South and voiced strong support for India and Brazil. Mr. Lavrov said UN Security Council reforms cannot involve any additional seats being allocated to Western countries, especially to Germany and Japan, who are now on the path to militarism and revanchism. Prime Minister

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जंग में शामिल तमाम मुल्कों पर जोर दिया है कि वो जारी तनाजात के दौरान कशीदगी कम करें और तवानाई व तिजारती रास्ते को खुला रखें। रूस ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक आज ग्राहकों की सहूलत के लिए खुले रहेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के हालात के पेश नजर चारधाम यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3-1 रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने सभी फरीकी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि वो जारी तनाजात के दरमियान तहमुल से काम लें, कशीदगी कम करने, शहरियों की हिफाजत और तिजारत और तवानाई की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाए। कल रात न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि जंगों के असरात सिर्फ बराह रास्त शामिल मुल्कों तक ही महदूद नहीं रहते बल्कि उनकी सरहदों से बहुत दूर तक दीगर ममालिक के शहरियों को भी भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कशीदगी और तनाजात आलमी सलामती को गैर मुस्तहकम करते हैं, तरक्की की रफ्तार को सुस्त करते हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए खासतौर पर खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी के शोबों में सभी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने के अपने हक का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि सरहद पार से हुकूमत की पुश्तपनाही में की जाने वाली दहशतगर्दी आलमी निजाम के लिए बराह रास्त चैलेंज है। वजीर खारजा ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हुकूमतों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दहशतगर्दी की माली एयानत को बेनकाब करके उसका मौसर मुकाबला किया जाना चाहिए।
1: That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Its financial aspects, in particular, should be exposed and should be countered.
0: रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोफ ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत दिए जाने के भारत के मुतालबे की भरपूर हिमायत की है। कल रात न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए जनाब

0: लावरोफ ने कहा कि रूस एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमरीका की नुमाइंदगी को वसी करने के हक में है। उन्होंने कहा कि रूस भारत और ब्राजील की मुस्तकिल रुकनियत की उम्मीदवारी की हिमायत करता है। उन्होंने आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों के लिए अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मजीद नशस्तें मुख्तस करने की वकालत की और भारत और ब्राजील की भरपूर हिमायत का इजहार किया। जनाब लावरोफ ने कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात के तहत मगरबी ममालिक के लिए मजीद नशस्तें मुख्तस नहीं की जानी चाहिए, खसूसन जर्मनी और जापान के लिए, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो अब अस्करियत पसंदी और माजी की ताकत और हैसियत की बहाली की कोशिशों की राह पर गामजन हैं। अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल यूएनएससी के कुल 15 अरकान हैं। इनमें 5 मुस्तकिल अरकान शामिल हैं जिन्हें वीटो का इख्तियार हासिल है। ये 5 ममालिक चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमरीका हैं। इसके अलावा 10 गैर मुस्तकिल अरकान होते हैं जिन्हें 2 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईआर न्यूज, टीटी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक ग्राहकों की सहूलत के लिए आज खुले रहेंगे। यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से पूरे मुल्क में कल से शुरू होने वाली मुजव्वजा 3 रोजा बैंक हड़ताल के पेश नजर उठाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम बैंक शाखों, दफातर, एटीएम वाली शाखों और करेंसी चेस्ट्स को आज पूरे तौर पर कामकाज करने के लिए मंजूरी दी है। इस दौरान सरकारी सेक्टर के कई बैंकों ने 3 रोज तक जारी रहने वाली बैंक हड़ताल के दौरान महाना मुफ्त लेनदेन की हद से ज्यादा एटीएम लेनदेन करने पर चार्जेस को माफ करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद में कई अहम तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो साबरमती लोको शेड में नए तामीर करदा WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इस मौके पर जनाब शाह ज्यादा हॉर्स पावर वाले WAG-12 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह साबरमती रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वह स्टेशन की तामीर नौ से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ करेंगे। इस तकरीब के दौरान वजीर दाखिला मुल्क की रकीक कुदरती गैस LNG से चलने वाली पहली डेमो ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये भारतीय रेलवे के लिए माहौल दोस्त इकदाम के सिलसिले में एक अहम संग मील है। जनाब शाह शैला में आचार्य पद्मसागर सूरी सौराजी महाराज की 92वीं सालगिरह के मौके पर मुनाकिद होने वाली एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में पिछले 24 घंटे से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। मौसमियात के महकमे ने देहरादून, टिहरी और पौड़ी में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश और इक्का दुक्का मकामात पर इंतहाई मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के दीगर हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मुसलसल बारिश के तनाजुर में आज चारधाम यात्रा मुअत्तल रहेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रियासत के सभी अजला में आंधी तूफान, गरज चमक और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। गुज़श्ता 24 घंटों में ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बारिश की वजह से रियासत के बाला इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। मौसम की वार्निंग के पेश नजर पूरी रियासत में आफात से निपटने का निजाम हाई अलर्ट पर है। हुक्काम हसास इलाकों, दरियाओं और नदी नालों के साथ साथ पानी जमा होने वाले मकामात की भी निगरानी कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने लोगों को मशवरा दिया है कि वह खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: उधर उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर है। रियासत में अब तक 15 अफराद की मौत हो चुकी है। وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے متاثرہ تمام ضلعوں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہائی الرٹ پر رہیں اور متاثرہ افراد کو فوری راحت اور

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य की मील के वो पत्थर रहे हैं जहां से कविता दिशा बदलती है, राहें बदलती है। आज कविता का एक बड़ा वर्ग गजल की तरफ लगभग झुक गया है। बेहतरीन गजलों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है और एक जमीन भी तैयार की है। साहित्य की के इस अंक में लीजिए सुनिए हिंदी गजल नई जमीन विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं जाने माने लेखक और समालोचक डॉ. जानकी प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ शायर और समीक्षक श्री दीक्षित दनकौरी, वरिष्ठ कवि और गजलकार श्री अनिल वर्मा मीत। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ कवि और गजलकार श्री राजेंद्र निगम राज।
2: आज दुष्यंत कुमार जी के जन्मोत्सव के अवसर पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम सभी मालूम है कि सितंबर माह में ही उनका जन्म हुआ था, इसीलिए सितंबर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं सबसे पहले डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जो जमीन की बात चलती है कि उर्दू में गजल की जमीन, जैसे एक गालिब की जमीन या किसी शायर की जमीन हम बोलते हैं तो बहर काफिया रदीफ का वर्णन किया जाता है, तो हिंदी में गजल की जमीन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: दरअसल एक ही शब्द के अनेक संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थों में इस्तेमाल होते हैं। जो जमीन को अगर एक पारिभाषिक शब्द के रूप में लें, उर्दू अरूज यानी पिंगल शास्त्र की इस्तिलाह बोलते हैं उसे फारसी में, हम हिंदी में उसको पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अगर हम पिंगल की पारिभाषिक शब्दावली में यानी अरूज की इस्तिलाह के तौर पर जमीन का इस्तेमाल करेंगे तो जैसा कि आपने अभी फरमाया कि एक शायर की क्या हर रचनाकार की एक हर गजल की जमीन होती है, जाहिर है कि जमीन खाफिया और अदीब से जमीन की पहचान होती है और एक ही जमीन में बहुत से शायर शेर कहते हैं और मीर की जमीन में हजारों ने शेर कहे होंगे, दीक्षित दनकौरी की जमीन में बाद के कई लोगों ने शेर कहे होंगे, तो पारिभाषिक अर्थ में जमीन के माने ये हैं। लेकिन हम रचनात्मक अर्थ में जब जमीन का अर्थ लेते हैं तो उस जमीन से आशय जो है वो उसकी अंतर्वस्तु, उसकी वैचारिकता, उसकी सोच, और इसका अर्थ ये नहीं है कि अकेले अंतर्वस्तु या वैचारिकता, बल्कि साथ में उसकी जो अभिव्यक्ति है यानी जबान और बयान, ये भी उसमें शामिल होते हैं। तो हम जब जमीन कहते हैं तो हमारी मुराद यहाँ सोच की जमीन से है। जो विषय आपने रखा है वो विषय इस के संदर्भ में उस जमीन का अर्थ नहीं देता, अरूज वाली जमीन का, वो ये अर्थ देता है कि गजल जो है वो किस तरह से विकसित होते हुए, हम दुष्यंत कुमार को आरंभ बिंदु नहीं मान सकते क्योंकि दुष्यंत कुमार भी स्वयं को गजल का आरंभ बिंदु नहीं मानते थे, उन्हें भी विरासत में चीजें मिली थी, उन्होंने एक नया संस्कार उसे दिया। तो मेरा अपना जो पक्ष है वो पक्ष ये है कि नई जमीन की जो आप बात करते हैं, और मेरी ये बहुत दृढ़ मान्यता है कि नई जमीन पुरानी जमीन की वाबस्तगी में ही विकसित होती है
2: जी।
3: अगर आप ये सोचना चाहें कि आप हिंदी गजल में या गजल ही नहीं किसी भी काव्य रूप में कहते हैं कि भाई उन्होंने नई जमीन तोड़ दी, भाई नई जमीन पुरानी जमीन से विच्छिन्न होकर नहीं आप ईजाद कर सकते, जो अपनी परंपरा में जितना गहरे धसा होगा वो उतना ही नया लिखेगा और कहेगा
2: जी बिल्कुल।
3: जबकि आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि भाई रिवायत से हटो, रवायत से हटो, ये बहुत गलत सोच है। रवायत से हटने का, रवायत ही तो उससे प्राण वायु आप ले रहे हैं वहाँ से, दुष्यंत को, बाल स्वरूप राही को, बलबीर सिंह रंग को, उस दौर के जो और लोग हैं, या निराला की बेला की गजलों को 1946 की, या शमशेर बहादुर सिंह को, त्रिलोचन को, हम इनसे अपनी सोच का रिश्ता अगर तोड़ लेंगे तो नई जमीन की ईजाद अब नहीं कर पाएंगे। हाँ, अंतिम बात कि मैं निराशावादी इस मामले में नहीं हूँ, नई जमीन मुझे नजर आ रही है, सवालों का सामना लोग कर रहे हैं, यही वो नई जमीन है। लेकिन ये जमीन जितनी ताकत दुष्यंत कुमार और अपने अन्य वरिष्ठ जो गजल कवियों से ग्रहण करेगी उतनी ही ज्यादा बलवती होगी और ताकतवर होगी।
2: बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं माननीय दीक्षित दनकौरी
4: जी,
2: शायर की दुनिया के मशहूर नाम, आपसे पूछना चाहूंगा कि दुष्यंत के आने के बाद गजलों की दुनिया में क्या बदलाव आया है?
4: देखिए, शर्मा जी ने जो बात शुरू की मैं उसको और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। 1975 में एक लेख कल्पना में छपा था, उसमें खुद दुष्यंत जी ने लिखा कि मैं 25 वर्षों से उर्दू गजल को देख रहा हूँ। तो देख रहा हूँ का मतलब क्या है, मैं उसको आत्मसात कर रहा हूँ या कहें सीख रहा हूँ, या देखने का मतलब ही होता है। तो हिंदी गजल हो, पंजाबी गजल हो, गुजराती गजल हो, मराठी, किसी भी भाषा में गजल आएगी तो उसको उर्दू गजल से होकर गुजरना पड़ेगा। पहली बात तो ये सिद्ध की दुष्यंत जी ने। और जब ये मुजफ्फर हनफी साहब एक बहुत बड़े समीक्षक हुए हैं उर्दू में, जो 60 और 73 के बीच भोपाल में रहते थे, वो उनका एक इंटरव्यू छपा था गुफ्तगू-ए-दू-ब-दू एक पत्र नाम से जी। तो उसमें कहा था कि दुष्यंत हमारे पास आते थे, सीखते थे, तो उसमें फजल ताबिश, इशरत कादरी, ये यानी उनमें उठे बैठे हैं। तो दुष्यंत जी को जो लोग कहते हैं ना जी हिंदी गजल, ऐसा तो है हिंदी में वो लाए, लेकिन उनकी बैकग्राउंड निश्चित रूप से उर्दू की थी। तो उन्होंने ये बताया मुजफ्फर अली साहब ने कि जब वो गजल पढ़ते थे तो उनकी खामियां थी बहुत सारी, वो देख रहे होंगे अपने उर्दू और उसके हिसाब से, जैसा शर्मा जी ने कहा ना, लेकिन हमारे यहाँ इसमें हिंदी में मात्र एक छंद है, उर्दू का अलग से एक विधान है। तो उन्होंने बहुत पहले यानी 60-73 के बीच में ये कहा था कि दुष्यंत के यहाँ फनी लिहाज से कमियां हैं, लेकिन वो अपना हिंदी में एक विशेष स्थान बना चुके हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता। फिर जो है कल्पना में इनकी 16 गजलें छपी। अच्छा, तो दुष्यंत जी के समय से पहले भी गजलें हो रही थी, उनके साथ साथ भी हो रही थी, उनके बाद तो अब एक पूरा कार्रवाई चल पड़ा है। तो लोग ये प्रश्न भी करते हैं और जिज्ञासा भी रहती है कि साहब दुष्यंत क्यों, उससे पहले और भी थे, उनके साथ साथ और भी थे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनसे पहले जो गजलें लिखी ना, जैसे निराला जी ने लिखी मान लीजिए, तो वो एक टेस्ट बदलने के लिए था। निराला जी गजल, इन्होंने 16 गजलें लिखी, फिर उसके बाद साए में धूप आई, गजल पर केंद्रित होकर अच्छी तरह से, तो उनसे पहले या बाद के तुलना करना तो नहीं, लेकिन दुष्यंत ने जो एक नई जमीन तैयार करी, नए अंदाज से शेर कहने शुरू करे, उस समय सत्ता के खिलाफ, आम आदमी की पीड़ा, ये बहुत ज्यादा उर्दू शायरी में नहीं है, ये है जदीद शायरी में आए, फिर बाबा दे जदीद में आए, लेकिन वो जो लाए तो उसमें, और ऐसा भी नहीं है कि साहब उन्होंने सिर्फ यही कहा हो, सत्ता के विरोध करा हो, शायरी करी हो, लेकिन उनके यहाँ जो मैंने देखा, उनको पढ़ा समझा, उनके यहाँ गजल में गजलियत भी है। जो बात वो कह भी रहे ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इसे कहते हैं हिंदी गजल, इसके प्रतीक हमारे हिंदी के, इसका कथ्य हमारा हिंदी का, और एक पीड़ा, उसको उर्दू गजल का परंपरा और नई सोच और नया लहजा, ये सारा मिलाकर ऐसा उनका काम हो गया कि पूरी गजल के समाज में, साहित्य समाज में वो एक प्रतीक बन गए। और आज की डेट में ठीक है, बहुत लोग हैं सीनियर, उनको उनके समकक्ष भी हैं, लेकिन दुष्यंत के बाद या दुष्यंत या प्रकाश स्तंभ, ये सर्वमान्य हो गया, कोई इसको माने या न माने, दुष्यंत के बाद दुष्यंत को ही हिंदी गजल में कोट करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि दुष्यंत के बाद जो गजलें हुई हैं वो हल्की रह गई, ऐसा कुछ नहीं है। दुष्यंत की गजल की वो जमीन जो तैयार की थी वो बहुत फल फूल गई है जी, बहुत आगे चली गई है। मैं कहता हूँ दुष्यंत से भी आगे, जमीन के उस पेड़ पर फल लगने लगे हैं और वो फल उनसे भी आगे चले गए हैं। ये अच्छा होता है, कोई आदमी हमें पौधा रोपे और वो फले फूले तो वो अच्छा लगता है, उस विधा के लिए भी और साहित्य के लिए भी। बल्कि बच्चन जी ने तो कह दिया था हिंदी भाषा में गजल लिखना संभव ही नहीं है, बच्चन जी ने कहा था ये। रामदास मिश्र ने कहा था गजल हिंदी की प्रवृत्ति नहीं है। अब शर्मा जी तो कह रहे हैं ना जी कि ये हिंदी में मान्यता नहीं दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं शुरू से, लेकिन आज उन सब वर्जनाओं को तोड़ते हुए हिंदी गजल पूरे अपने आप उताप के साथ बिल्कुल समाज में है और बड़ी लोकप्रिय हो रही है, और मैं बड़ा आशान्वित हूँ।
2: धन्यवाद। तो आपने जो बताया बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अनिल वर्मा मीत जी मौजूद है हमारे साथ। तो मैं मीत जी से ही पूछना चाहूंगा कि आज दुष्यंत जी के जाने के लगभग 51 वर्ष बाद गजल तब और गजल आज, आप क्या अंतर देखते हैं, क्या बदलाव आया है?
5: हिंदी गजल ने पारंपरिक प्रेम और सौंदर्य की विधियों से बाहर निकलकर खुद को सामाजिक बदलाव की बाहर के साथ साथ यात्रा करते समय नए और नवीन आयामों को हिंदी गजल के साथ जोड़ा। आदमी के सुख दुख, उसकी पीड़ा, आर्थिक विषमताएं, वर्ग संघर्ष, व्यवस्था की विवेचना, मैं यहाँ व्यवस्था की आलोचना नहीं कह रहा, व्यवस्था की विवेचना और सांस्कृतिक सौहार्द, मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं को भी शिद्दत के साथ अपने में समाहित किया। यहाँ कुछ शेर उनके उद्धृत करना चाहूंगा जो मेरी बात को पुष्ट करते हैं कि अपने अपने काम में है व्यस्त सब, घर में एक बूढ़े की सुनता कौन है। हरे राम समीप जी इस संवेदना को पकड़ते हैं और बड़े सीधे शब्दों में हमें उनकी पीड़ा से रूबरू करा देते हैं। अब मैं प्रेम कृष्ण जी का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अब तो मायूस ही लौटा है खिलौने वाला, एक बच्चा न मिला गांव में रोने वाला। और एक मैं अपना शेर आपकी इजाजत से
3: जी
5: नज़र करना चाहूंगा शर्मा जी की कि सब्ज कैसे देख लें आंखें मेरी कि सब्ज कैसे देख लें आंखें मेरी जर्द पैदा हो रहा पत्ता नया। तो ये जो विषमताएं हैं जो हम चाहते हैं और जो हो रहा है उसमें जो अंतर है उसी की विषमता को ढकने के लिए हिंदी गजल अपने तेवर बदलती है और मैं कहूंगा कि ये अपना मिजाज बदलती है कहन बदलती है।
2: बहुत बढ़िया बहुत खूब धन्यवाद आपका भी। और अब फिर मुखातिब होते हैं डॉक्टर शर्मा से। दरअसल ये दुष्यंत की गजलों में जो बहर काफिया रदीफ का इस्तेमाल किया गया है इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे आपका नजरिया इस बारे में?
3: सिरा में जोड़ता हूँ दीक्षित धनगोड़ी साहब की बात से ही और मित जी को भी हमने सुना नजारा लफ्ज का आपने इस्तेमाल देखा होगा कि जो उर्दू अरूज का जो ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो दोनों तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं नजारा भी करते हैं नजारा भी करते हैं यानी छंद की जो मांग है बहर की जो तवक्को है उस हिसाब से ये आजादी ली जाती है। मैं वहीं आता हूँ लौटकर जब धर्म युग में ये गजल दुष्यंत की छपकर आई कहाँ तो तय था चराग हरेक घर के लिए कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए न हो कमीज तो पांवो से पेट ढक लेंगे ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जबान शायर की ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। ये गजल जब उनकी छपकर आई तो उस वक्त में वहाँ किसी स्थानीय कॉलेज में हिंदी का व्याख्याता था और ईमानदारी की बात यह है कि मेरा बहुत संकीर्ण सोच था गजल को लेकर और भाषा को लेकर क्योंकि मेरी जो संगत है या संगति है या उठना बैठना है वो उर्दू के मित्रों के बीच में रहता था शुरू से और वो इतनी सख्तगिरी अपनाते थे कि जरा जेर जबर का जरा सा अंतर हुआ तो आप खारिज शीन खाफ में जरा से उच्चारण में अगर गलती हो गई तो आप खारिज
2: जी।
3: हालांकि इसके कोई लाभ भी होते हैं कि आपका उच्चारण दोष दूर होता है इससे और आप शब्दकोश के प्रति सजग रहते हैं पर इसकी हानियां ये होती हैं कि लोग इससे दूर छिटकने लगते हैं। तो बड़े एक कठोर अनुशासन में मेरा उस समय मानसिक विकास हो रहा था दुष्यंत कुमार की गजल छपकर आई तो मैंने अपनी वही जो समझ थी जो एक संकीर्ण सोच था बहुत ज्यादा कि भाई शहर क्यों यहाँ तो जो गिर रहा है ये क्यों अब इस एक गजल के अंदर ही पांच गलतियां हैं उस हिसाब से आप देखेंगे तो मैंने ये उसमें रेखांकित करके और फिर एक जगह उनका आया कि मशाल एक जगह आया कि होमो हवन फिर एक जगह आया आमद रफ्त प्रयोग गलत है आमद और रफ्त होगा आना और जाना वो यानी और के लिए तो और तो दुष्यंत ने खत्म कर दिया एक जगह रख रहे हैं आप होमो हवन तो लिख रहे हैं आप होम और हवन और होम जो है वो संस्कृत का शब्द है हवन भी संस्कृत का शब्द है हमारे यहाँ हिंदी व्याकरण के अनुसार भी गलत है हिंदी व्याकरण के अनुसार आप संस्कृत के दो शब्दों के बीच में आप समाज चिन्ह लगा

0: लगा सकते हैं या आप पिता पुत्र में लगाए बिना समास चिन्ह, तो वो दो का अर्थ देगा पिता और पुत्र। तो होम हो हवन यानी आप फारसी के हिसाब से आपने समास बना दिया संस्कृत का, और जो फारसी का समास था उसमें वो आपने निकाल दिया। तो ऐसी कुछ बातें सख्ती के साथ मैंने लिखकर उनको जो है पत्र वहां लिखा। दूषण एक जगह सफील शब्द का इस्तेमाल भी किया उन्होंने दीवार के लिए, दीवार के लिए तो फसील शब्द होता है फारसी में, उन्होंने सफील शब्द का, एक जगह मशाल शब्द का प्रयोग है। तो हालांकि मैं गलत था आधा, ऐसा पत्र लिखते हुए मैंने अर्ज किया ना कि मैंने बहुत सुधार किया स्वयं में दुष्यंत कुमार जी के साहचर्य में, तो कुछ बातें तो मेरी सही थी लेकिन कुछ बातें बहुत सख्ती थी बहुत, जैसे मशाल है। अब मशाल अगर दुष्यंत कुमार का गलत है तो फिर निराला का भी गलत होगा। राम की शक्ति पूजा की पंक्ति पढ़ू मैं आपको, भूधर ज्यो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, ये राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है, तो वे निराला भी गलत हुए क्या? तो दरअसल दुष्यंत कुमार सही इसलिए थे कि हिंदी जन समुदाय उर्दू शब्दों का जिस रूप में उच्चारण करता है हमें उस रूप में स्वीकार करना चाहिए जी। मैं खुद उर्दू में लिखता हूँ बाकायदा, नियमित रूप से लिखता हूँ मैं, और मैं मशअल कहूंगा उर्दू वालों के बीच में, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि मैं खुद घर में मशाल कहता हूँ और उर्दू वाले भी घर में मशाल ही कहते हैं। मश अब साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, प्रसिद्ध वो गीत है। तो अब दुष्यंत कुमार सही इसलिए थे कि उर्दू शब्दों का जो प्रयोग सर्वमान्य हो चुका है उसको हमें कविता में भी स्वीकार कर लेना चाहिए
1: जी बिल्कुल।
2: ये बातें आ रही
0: है, ये उनका पक्ष था दुष्यंत कुमार का। अब रही इसकी बात कि वो लोगों ने खामियां निकाली, दरअसल बात यह है कि ये मुजफ्फर हनफी वगैरह अनेक ऐसे लोग हैं जो दुष्यंत कुमार से, ईमानदारी की बात यह है कि ईर्ष्या बरतते थे, क्योंकि दुष्यंत कुमार के पास जो है सोशल कंटेंट बहुत पावरफुल था। जो नई जमीन की आप बात कर रहे हैं वो दुष्यंत, आखिरकार साये में धूप की गजल ने किसने लिखी है? एक कंठ विश्वाई के लेखक ने लिखी है, जो 20वीं शताब्दी में अंधा युग के बाद एकमात्र ऐसा काव्य नाटक है इतना श्रेष्ठ, एक कंठ विश्वाई जो शंकर पर लिखा है उन्होंने, कि जब उमा ने वहाँ दक्ष के यज्ञ में समर्पण कर देती हैं और भस्म हो जाती हैं, तो उनके शव को लेकर जो भगवान शिव कंधे पर उसको ढोकर यहाँ वहाँ तीनों लोकों में चक्कर काट रहे हैं, तो इस पर वो एक कंठ विश्वाई लिखा है उन्होंने। तो एक कंठ विश्वाई के लेखक ने ये गजलें लिखी है, जलते हुए वन का वसंत के लेखक ने ये गजल लिखी है। 1952 में जब दुष्यंत कुमार की सूर्य का स्वागत इतनी प्रसिद्ध जो है उनकी कविता और उनकी जो किताब है जब छपकर आई, तो तमाम नई कविता के कवि जिसमें धर्मवीर भारती तक शामिल हैं दंग रह गए सारे के सारे, क्या लिखा है? प्रातः हुई, सुबह सुबह हुई है, सूर्योदय हुआ है। तो जो कवि कल्पना करता है कि ये दीवार पर चढ़कर ये किरणें मेरे घर में आना चाहती हैं, लेकिन बारिश का समय था, दीवार पर काई जमी हुई है, तो वो कह रहा है कि सूर्य तुम कैसे आओगे, तुम तो फिसल जाओगे चढ़ते हुए। तो मेरे बच्चे ने फिर भी अपनी कलम से दीवार पर से काई को खुरच दिया है ताकि तुम मेरे घर में प्रवेश कर सको। तो दुष्यंत कुमार की गजलें आकाश से नहीं उतर आई, इतनी सशक्त अंतर वस्तु अपने समय के गंभीर सवालों को एक दो पंक्तियों के अंदर व्यक्त कर देना, ऐसा नहीं है कि अचानक नाजिल हो गई, अचानक उसने 1974 में गजलें कहना शुरू कर दी, कोई चमत्कार तो है नहीं, कोई चीज अवतरित तो ही नहीं थी
2: जी।
0: ये दुष्यंत कुमार वो कवि है जो 1952 में ही अपनी श्रेष्ठता साबित करा चुका था तमाम नई कविता के कवियों के बीच में। समापन करते हैं इस बात का यहाँ कि उर्दू और हिंदी के मध्य बैर या बेबनस्य की कोई बात नहीं है, जो जीवित भाषाएं हैं वे एक दूसरे से रस ग्रहण करेगी ही।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जिस दिन हम प्रभावित होना बंद कर देंगे या प्रभावित करना बंद कर देंगे तो चेतना के स्तर पर उस दिन हमारी मृत्यु है। लचीली जो डाल है, जो लचीलापन जिसमें होगा वही आगे तक जीवित रहेगी।
1: डॉक्टर शर्मा आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों को बताई हैं, और अब शर्मा एक बात और कहूंगा, मैं एक बात और आपसे कहूंगा अंतिम में, कि आप दुष्यंत जी से काफी इससे जुड़े रहे हैं, तो एक कोई संस्मरण छोटा सा।
0: अब देखिए साहब, सितंबर का महीना था और बारिश हो रही थी जी। और रवीन्द्र भवन भोपाल में प्रसिद्ध लेखक शरद जोशी का नाटक हो रहा था अंधों के हाथी। मैं उस समय मैं अपनी PhD का थीसिस जमा करने विश्वविद्यालय गया था भोपाल। तो जमा करने के बाद लौटकर किसी ने बताया हमको कि वहाँ एक नाटक हो रहा है शरद जोशी का, चलो वहां पर चलते हैं।

0: जो मुलाकात थी उनकी, उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे लगा कि कोई आलिम फाजिल आदमी जो है ना, बहुत बुजुर्ग वो, और उसने मुझे धमका कर इस तरह से जो खत लिखा है, ये तुम हो? बिल्कुल, उन्होंने जो है दोनों हाथों में भरकर मुझे वाकई छाती से लगाया, और उन्होंने कहा कि अब तुम गजल पर लिखो। आप क्षमा करें, हिंदी गजल पर पहला जो लेख है ये इतिहास की बात है, दुष्यंत कुमार की प्रेरणा से, यद्यपि वो जीवित नहीं रहे थे, वो लेख मैंने ही लिखा है, वो रिकॉर्ड में है बात, और ऐसा लेख में लिखता नहीं, वो दुष्यंत कुमार के तर्कों से ये बात आई यहाँ पर
1: जी।
0: तो उर्दू फारसी शब्दों के बाहुल्य के बाद भी
2: यही बात है,
0: जो गजल है वो हिंदी गजल हो सकती, होनी चाहिए। और अंत में उनके दो शेर आप सुन लीजिए, दुष्यंत कुमार के एक पत्र में उन्होंने मुझे लिखे, हाशिए में एक छूटी हुई जगह पर बिल्कुल, आज हालात समंदर की तरह लगते हैं, आज हालात समंदर की तरह लगते हैं, सारे मंजर पसे मंजर की तरह लगते हैं।
2: क्या कहते,
0: आज हालात समंदर की तरह लगते हैं, सारे मंजर पसे मंजर की तरह लगते हैं, किसके कदमों के निशानात हैं इन राहों में, किसके कदमों के निशानात हैं इन राहों में, जो मेरे पांव में ठोकर की तरह लगते हैं।
2: वाह वाह,
0: ये दो शेर आपकी नजर है,
1: इसीलिए दुष्यंत को दुष्यंत कहा जाता है। तो आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डॉक्टर जनकप्रसाद शर्मा जी, श्री दीक्षित धनकोरी जी और अनिल वर्मा मीर जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हिंदी गजल नई जमीन, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ लेखक और समीक्षक डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ शायर श्री दीक्षित धनकोरी, वरिष्ठ शायर और कवि श्री अनिल वर्मा मीत। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ कवि और गजलकार श्री राजेंद्र निगम राज। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ, प्रस्तुत कर रहे हैं श्री कालीशंकर सौम्य।
4: विगत रविवार 20 सितंबर 2026 को युवा उत्कर्ष साहित्य मंच न्यास के तत्वावधान में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत विशेष काव्य समागम का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के सदर क्षेत्र में आयोजित इस साहित्यिक कार्यक्रम में कविता के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को स्वर दिया गया। काव्य समागम में श्री रामकिशोर उपाध्याय आयोजन अध्यक्ष रहे। कार्यक्रम में IRTS के श्री शैलेंद्र कपूर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ट्रू मीडिया समूह के मुख्य संपादक श्री ओम प्रकाश प्रजापति विशिष्ट अतिथि तथा समाज सेवी श्री अभिमीत मिश्र विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी की साहित्यिक समृद्धि, मानवीय संवेदनाओं और समाज से जुड़े विभिन्न विषयों को अभिव्यक्ति दी। 20 सितंबर 2026 को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली कविता मंडल की ओर से कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस साहित्यिक कार्यक्रम में हिंदी कविता के माध्यम से साहित्य प्रेमियों ने शब्दों और भावनाओं की समृद्ध दुनिया का आनंद लिया। दिल्ली कविता मंडल के इस आयोजन का उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि को बढ़ावा देना तथा रचनाकारों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना रहा। गोष्ठी में कविता के साथ गजल और शायरी की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को विविधतापूर्ण बनाया। कार्यक्रम में श्री प्रेम बिहारी मिश्र अध्यक्ष तथा श्री नीरज चौहान संयोजक की भूमिका में रहे। आयोजन ने हिंदी दिवस को केवल औपचारिक आयोजन तक सीमित न रखते हुए उसे साहित्यिक अभिव्यक्ति और रचनात्मक संवाद से जोड़ने का कार्य किया। 21 सितंबर 2026 सोमवार को दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली में राणा प्रताप बाग स्थित श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में सर्व श्री उर्वी उदल, डॉक्टर अमृता अमृत, बाल कवयित्री सानवी जैन, रेशु रोशन तथा नेहा जैन आमंत्रित रचनाकारों में शामिल रहे। कार्यक्रम के संयोजक श्री अभिषेक जैन रहे। आयोजन के लिए सर्व श्री रविन्द्र प्रसाद जैन, अजय जैन, मुकेश जैन और अशोक जैन संरक्षक के रूप में जुड़े। इसके अलावा अध्यक्ष श्री पवन जैन, उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र जैन एवं श्री राजीव जैन, महामंत्री श्री सुनील जैन एवं समस्त कार्यकारिणी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। 21 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान मुनीर का नई दिल्ली में हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता संस्था के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार पात्रो ने की। कार्यक्रम में सर्व श्री डॉक्टर प्रवीण आर्य, सरिता जैन, ओम प्रकाश कल्याणे तथा डॉक्टर गणेश श्रीवास्तव ऋषि ने काव्य पाठ किया। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक सरोकारों और जीवन के विविध अनुभवों को शब्द दिए। हास्य व्यंग संवेदना और विचार प्रधान

विजेताओं की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। 21 सितंबर 2026 को ही श्री दिगंबर जैन मंदिर मॉडल टाउन की ओर से दशलक्षण पर्व के अवसर पर राजधानी दिल्ली में भव्य विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश प्रदेश के जाने माने कवियों तथा बाल कवयित्री ने भी अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। कवि सम्मेलन का मंच संचालन श्री सत्येंद्र सत्यार्थी ने किया। आमंत्रित कविगणों में सर्व श्री अजीत अनुपम, अंजना जैन, नम्रता जैन तथा बाल कवयित्री सानवी जैन शामिल रहे। 22 सितंबर 2026 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के मुख्यालय में हिंदी पखवाड़े के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा वरिष्ठ कवि के रूप में शामिल रहे। साथ ही सर्वश्री ताकेश धर द्विवेदी, पंकज शर्मा, आलोक यादव, पवन आगरी और सरिता जैन ने अपनी अपनी काव्य प्रस्तुतियां दी। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा की विशिष्ट हास्य व्यंग शैली तथा अन्य आमंत्रित कवियों की विविध काव्य धाराओं ने कार्यक्रम को साहित्यिक और मनोरंजक दोनों आयामों में ऊंचाई प्रदान की। मंच पर कविता, हास्य और सामाजिक संवेदनाओं का संगम श्रोताओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। 23 सितंबर 2026 को हिंदी पखवाड़े के अवसर पर दिल्ली सचिवालय के मुख्य सभागार में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित इस साहित्यिक समारोह में आमंत्रित कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से काव्य की विविध छटाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सर्वश्री डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, मधुमोहिनी उपाध्याय, बलजीत कौर तन्हा तथा स्वदेश यादव ने काव्य पाठ किया। उनकी रचनाओं में सामाजिक सरोकार, मानवीय संवेदनाएं, संस्कृति और समकालीन जीवन के विभिन्न रंग दिखाई दिए। 23 सितंबर 2026 को दिल्ली पुलिस अकादमी की ओर से हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत व्यंग के रंग शीर्षक से हिंदी कार्यशाला एवं हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आदर्श सभागार पुलिस मुख्यालय दिल्ली में आयोजित हुआ। हास्य कवि सम्मेलन में एसीपी राजेंद्र कलकल वरिष्ठ कवि की भूमिका में विशेष रूप से शामिल रहे। साथ ही सर्व श्री दीपक सैनी, मास्टर महेंद्र, रजनी अवनी तथा राजवीर मलिक सहित आमंत्रित प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। 23 सितंबर 2026 को राज्यसभा सचिवालय कर्मचारी मनोरंजन क्लब एवं हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से हिंदी है हम शीर्षक से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। संसद पुस्तकालय स्थित जीएमसी बालयोगी सभागार में आयोजित इस साहित्यिक समारोह में हास्य गीत और ओज से जुड़ी काव्य प्रस्तुतियों ने वातावरण को जीवंत बना दिया। कार्यक्रम में आमंत्रित कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी भाषा की समृद्ध परंपरा और समकालीन संवेदना को स्वर दिया। आमंत्रित कवियों में सर्वश्री रसिक गुप्ता, संदीप शजर, ओम प्रकाश कल्याणे तथा विनोद पाल सहित अन्य कविगण शामिल रहे। कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों में जीवन, समाज और मानवीय संवेदना से जुड़े विविध विषयों को अभिव्यक्ति दी। 24 सितंबर 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में हिंदी भाषा और साहित्य को समर्पित कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में सर्वश्री दीपक गुप्ता, आशीष नासवा, बबिता पांडे, विनय विनम्र तथा रीत राधिका ने काव्य पाठ किया। अलग अलग भावभूमि और शैलियों की रचनाओं ने विद्यार्थियों एवं साहित्य प्रेमियों को कविता की दुनिया से जोड़ा। कार्यक्रम में कविताओं को भावनाओं, विचारों और कल्पनाशीलता की अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम के रूप में सामने रखा गया। कवियों की प्रस्तुतियों में समकालीन जीवन, सामाजिक संवेदना, मानवीय रिश्तों और साहित्यिक अनुभूतियों के विविध स्वर सुनाई दिए। युवा विद्यार्थियों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम ने साहित्य के प्रति रुचि और रचनात्मक संवाद को भी प्रोत्साहित किया। उड़ान कविता की शीर्षक ने कार्यक्रम की मूल भावना को सार्थक किया। 25 सितंबर 2026 को दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्यकार सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। इस समारोह में साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले रचनाकारों को सम्मानित किया गया। समारोह में श्री चंद्रभानु आर्य को सम्मेलन साहित्य रत्न सम्मान प्रदान किया गया। वहीं सर्वश्री डॉक्टर अंजू दुबे जैमिनी, कमलेश पांडे पुष्प, धर्मशील अग्रवाल, अशोक कश्यप, नीलम मदान और पुष्पा सिन्हा को सम्मेलन साहित्य विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त श्री बाबा कानपुरी को सम्मेलन साहित्य भूषण सम्मान, सुश्री कविता विकास को सम्मेलन साहित्य श्री सम्मान तथा डॉक्टर मनोज गिरी और सुश्री नीति जैन को भी साहित्यिक सम्मान प्रदान किए गए। करोल बाग स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल में संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विद्यार्थियों में इसके प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से संस्कृतोत्सव प्रदर्शनी 5.0 का आयोजन 25 सितंबर को किया गया। इस वर्ष प्रदर्शनी की थीम संस्कृति संस्कृताश्रिता रही और कार्यक्रम का संदेश जयतु संस्कृतम
जयतु भारतम रखा गया। प्रदर्शनी में ज्ञानम, संस्कृतम,

0: सर्जनम और भारतीयत्वम जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई। कार्यक्रम के आरंभ में बोलते हुए प्राचार्य श्री दीपक दुआ ने कहा, संस्कृत ही हमारी संस्कृति का आधार है। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पूर्व उच्चायुक्त श्री अखिलेश मिश्रा ने कहा कि संस्कृत ही विश्व की तमाम भाषाओं की जननी है। इसी अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति डॉक्टर मुरली मनोहर पाठक ने कहा, संस्कृत और भारतीय संस्कृति हमें फिर से सोने की चिड़िया बना सकती है। इस अवसर पर भारतीय संस्कृति की महत्ता की एक जीवंत प्रदर्शनी भी स्कूली छात्र छात्राओं ने ही नृत्य नाटक और काव्य पाठ की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर विद्यालय की उप प्राचार्य श्रीमती विनीता धवन एवं सर्व श्री नीता निझारा, डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव, डॉक्टर युवराज भट्टराई सहित अनेक साहित्य और संस्कृत कर्मी मौजूद रहे।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे श्री कालीशंकर सौम्य। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: और श्रोताओं, अब समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम हमारे अतिथि का। कुछ पलों में आप सुनेंगे ये कार्यक्रम।
3: आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि। हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जानी मानी फोटोग्राफर सर्वेष्टि से। इनसे बातचीत कर रही हैं काजल सूरी। फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी देखने का हुनर सिखाती है। ये एक पल है, शटर दबाने के बाद वो पल कभी लौट कर नहीं आता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त काजल। आज हमारे साथ है फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाली जानी मानी फोटोग्राफर सर्वेश जी। आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार।
3: तो पहला सवाल तो ये है कि आजकल फोटोग्राफी कहते हैं बहुत आसान हो गई है, क्योंकि मोबाइल में कैमरा होते हैं और हर कोई बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स लेने में सक्षम हो गया है। लेकिन जब फोटोग्राफी को हम करियर बनाने की जब हम बात करें तो बहुत कुछ जानना जरूरी हो जाता है। करियर के संदर्भ में फोटोग्राफी को आपके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे कि ये कला है या ये कोई विज्ञान है, क्या है?
4: ये टेक्निक बहुत ईजी हो गई है, लेकिन अभी क्या होगा, फोटो एक आर्ट भी है और एक इसको कहा जाए प्रोफेशन भी है। इसमें भी अलग अलग कई कई तरह के प्रोफेशन है। जैसे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है, कोई पोर्टफोलियो बनाता है, कोई ट्रेवल फोटोग्राफी करता है, कोई डांस के स्पेशल होता है। टेक्निक अच्छी होने के साथ साथ हम बहुत सारा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है।
3: बिल्कुल,
4: आज के दौर में हर कोई फोटोग्राफर है, हर किसी के मोबाइल में एक अच्छा कैमरा है
3: जी।
4: लेकिन फोटोग्राफी करने के लिए कहते हैं ना, एक शब्द हजार शब्दों के बराबर होता है।
3: बहुत खूबसूरत।
4: एक तो आजकल सेल्फी से अगर हटे तो फोटोग्राफी की तरफ सोचा जाए
3: जी,
4: क्योंकि फोटोग्राफी वो है कि आपका एक वो मोमेंट कैच करना है। जैसे मैं कारगिल वॉर गई, उस कारगिल वॉर में वो लॉन्चर जो था, रॉकेट लॉन्चर से जो शेल गिर जा रहा था, वो बहुत परफेक्ट फ्रेम परफेक्ट था, परफेक्ट फोटो थी। उसे भारत सरकार ने, आईएमबी मिनिस्ट्री ने अवार्ड भी दिया। टेक्निक जो है ये आपको मोमेंट कैच करने के लिए कैरियर के रूप में बहुत अच्छा है, लेकिन इसे पेशेंस है, क्योंकि ये बैठने की जॉब नहीं है, फील्ड वर्क है, तरह तरह के लोगों से मिलना होता है, तरह तरह के आपको अनुभव होते हैं। जैसे मैं ट्रेवल फोटोग्राफर हूँ, इस कैमरे ने मुझे तो पूरा हिंदुस्तान घुमा दिया, कई कंट्री घुमा दी। तो आपका शौक अगर फोटोग्राफी आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे तो बढ़िया कुछ नहीं है। तो फोटोग्राफी आपको एक पहचान भी दिलाती है, आपको बहुत सारी चीजें, लेकिन इसके लिए हमें अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा, तभी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। फोटो तो बहुत करते हैं, लेकिन आपकी फोटो बहुत कुछ कहती है,
3: बहुत कुछ कह जाती
4: एक
3: है।
4: फोटो कई कहानियां बना देती है अलग अलग ढंग से।
3: बिल्कुल,
4: इसीलिए कि टेक्निक अच्छी होगी, लेकिन हम अपने दिमाग को थोड़ा सा खुल के रखेंगे तो हम ज्यादा कर पाएंगे,
3: ज्यादा
4: और कैरियर इसमें पैसा भी अच्छा है। लेकिन वही वाली बात कि आपको मोमेंट कैच, आपको हमेशा आंखें खुली रखनी पड़ेंगी।
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पल है जिस तरह से मैंने कहा कि जो शटर दबाने के बाद वो पल कभी लौट कर नहीं आता।
4: अब जैसे मैं आपको बता दूं, मैं ट्रैकिंग बहुत करती हूँ, तो मैं एक बार केदारनाथ से ऊपर एक जगह है बासुकी ताल, तो गाइड को लेकर जा रही थी और बर्फ से जा रहे थे। अच्छा, गाइड बाई चांस वो फिसल गया, तो मैं ऐसी जगह थी कि मैं, मतलब मेरे को सारे भगवान याद आ गए, रोने लगी। मैंने कहा ये क्या हो गया, निकल आई उस पत्थर से, पत्थर एक अड़ गया था तो बेचारा आया गाइड, तो जान में जान आई। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव भी हैं कि आपको फोटोग्राफी में आपको हिम्मत देते हैं, आपको आप कॉन्फिडेंस बहुत देते हैं, तो आप निकलिए तो सही, आपको बहुत एक से एक मोमेंट मिलेंगे। परेशानियां आएंगी बहुत सारी, लेकिन आपको उस परेशानियों से बचने के लिए आपको दिमाग भी

0: आपका शार्प होगा,
1: शार्प होगा क्योंकि इमेजिनेशन,
0: जी जी इमेजिनेशन भी है और आपको एकदम हमेशा खुला रखोगे तो पता नहीं कब क्या कैच क्या करना पड़ जाए, एकदम तुरंत आपको शूट करना है,
1: फोकस रहना है।
0: और अब तो तकनीक इतनी बढ़िया आ गई है, इसको तो और भी अच्छे से यूज कर सकते, सब खेलिए ना, नहीं करते हैं लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेल्फी जाएंगे सेल्फी करेंगे, हमें दूसरों का कल्चर देखना है। जिस समय जब हम थे ब्लैक एंड व्हाइट के थे, ब्लैक एंड व्हाइट में हम इसको धो रहे हैं, फिर उसको ड्रम स्कैनिंग और पता नहीं कितना टाइम लगता था एक फोटो भेजने में, और आज टेक्निक से हम बहुत आगे बढ़ गए।
1: आपने जिस तरह से कहा कि फोटोग्राफी बहुत तरह की होती है, वेडिंग फोटोग्राफी, ट्रेवल फोटोग्राफी, कई किस्म की, कुछ कोई ऐसा है कि सब में एक तरह से किस तरह की टेक्निक्स होती हैं, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी ले रहे हो या ट्रेवल में जा रहे हो या कुछ और जो आप बताना, जो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कितने तरह की होती है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में?
0: देखिए वेडिंग की या पोर्टफोलियो की है, आपको एक फोटो में वो क्लिक करना है जो कई कहते हैं ना हमारी फोटो अच्छी नहीं आती,
1: बिल्कुल
0: आपको वही उसके एक्सप्रेशंस आपको ये करने हैं उनको बिना बताए, फिर देखिए वो कितनी अच्छी आती है। कई लोग कहते हैं अरे मैं ऐसी हूँ मुझे भी नहीं पता था, तो ये आपको टेक्निक आपके अंदर से आएगी, कहते हैं ना शौक होता है, आपको शौक होना चाहिए आपको इसमें, तो ये टेक्निक, तो इसीलिए आपको अपने स्वाद अनुसार जैसे कि नमक डालते हैं ऐसे ही आपका इंटरेस्ट किस में है, क्या आपका स्पोर्ट्स में है, जैसे मेरा ट्रैकिंग है, मैं ट्रैकिंग बहुत करती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो मैं दुनिया भर के उनका कल्चर दिखाती हूँ, उनका जैसे आदिवासियों के बीच में चली जाती हूँ तो उसके बीच में उनका कल्चर दिखाना बहुत सारा, एक से जैसे मैंने घोटुल कवर किया था, उनका कल्चर क्या है, हमसे वो बहुत एडवांस है, तो आदिवासियों का जीवन फोटो के द्वारा आप दिखा सकते हैं, हर कोई तो आदिवासियों के बीच में जा नहीं सकता लेकिन आपको फोटो के द्वारा दिखा सकते हैं, समुद्र भी हर कोई नहीं जा सकता, समुद्र में कैसे जहाज बड़े बड़े जहाज होते हैं या कुछ है, तो आप अपने फोटो के द्वारा दिखा सकते हैं, जैसे मैंने तो कई सारी एग्जीबिशंस की हैं, तो फोटो के द्वारा आप बहुत कुछ चीजें दिखा सकते हैं, बहुत जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट आपका होना चाहिए,
1: बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है कि वो कहते हैं ना कि लम्हा लम्हा जिंदगी है और इन्हीं लम्हों को हम फोटोग्राफ्स के जरिए कैद कर लेते हैं और जिंदगी के हर पल को फोटोग्राफ जो है वो संजो लेते हैं, तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने के नाते आप जो फोटोग्राफी है उसकी उपयोगिता के बारे में क्या कहते हैं?
0: प्रोफेशन देखिए आप अपना चैनल बना सकते हो, आजकल मैं आज के संदर्भ में कह रही हूँ, न्यूज़पेपर अगर आपकी थोड़ी अलग हटके हुई न्यूज़पेपर में दे सकते हो, प्रिंट मीडिया में दे सकते हो, फिर दूसरी बात अगर प्रिंट मीडिया में विजुअल लोग चाहते हैं, आजकल तो वीडियो भी इजी हो गई है, जिससे कैमरा ये किया फोटो की उससे वीडियो भी बना सकते हैं, तो आप तो एक पर दो काज कर सकते हो, वीडियो की वीडियो और कैमरा कैमरा किसी किसी यूट्यूबर को दे सकते हो, किसी को भी, और सबसे बड़ी बात कि आप जहाँ भी हैं आप अपना काम करते रहिए, दिमाग खोल के रखिए, कब कहाँ क्या मिल जाए कुछ नहीं पता, और फिर वो कहाँ से कहते हैं ना कई सारी चीजें वायरल हो जाती हैं जी, वो वायरल हो गया वो वायरल हो गया, ये आज की टेक्निक है,
1: बिल्कुल
0: पहले तो हमारी फोटो छपती थी तो अलग बात थी, लेकिन आज तो और इजी हो गया है,
1: बिल्कुल
0: तो और, लेकिन आपको इसके लिए वही वाली बात के दिमाग खोल के रखना
1: पड़ेगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। जो हम महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती हैं वो शुरुआत कहाँ से करें, किन स्किल्स पे वो काम करें कि उनकी योग्यता निखरे?
0: शुरुआत मैंने कहा इसमें एक तो पेशेंस की बहुत जरूरत है, शुरुआती दौर पे आपको अपना एक कैमरा लेना पड़ेगा, मोबाइल आजकल तो मोबाइल जर्नलिज्म या मोबाइल फोटोग्राफी भी हो गई है, आप अच्छे से अच्छे खींच सकते हो, कई लोग बड़ा ये चाहते हैं कि हमें ये दो, शुरू में थोड़ा सा कठिनाई हो गई है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ने से आपका जरूर थोड़ी सी दिक्कतें आ गई हैं फाइनेंशियल, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारा अच्छा एक एक, एक स्थापित अगर हो गए तो आपको अच्छा पैसा भी मिलता है, लेकिन हाँ ये है कि पहले से क्योंकि हर कोई कंपटीशन है, आप कंपटीशन में जाने के लिए आप तैयार हैं, आपको 24 आवर्स कहीं आग लगी है कुछ लगा है तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन जब आप परफेक्ट हो जाते हैं फिर उसके बाद आपको मतलब आपको खुद शौक हो जाएगा।
1: तो क्या योग्यता होनी चाहिए इसमें करियर बनाने के लिए फोटोग्राफी के फील्ड में?
0: आप जितना अनुभव लेते जाएंगे उतना ही, आप कहते हैं ना आटा गूंदने की कभी ट्रेनिंग नहीं होती है, तो आटा बिल्कुल परफेक्ट अपने आप आ जाता है, तो ऐसे ही इसी में है, बस ये है कि आपको लगे रहना है, लगे रहना है, लगन के साथ करोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे, बस ये आपको अपना डर हटाना पड़ेगा, शुरुआत करिए ना, शुरू में
1: डर के आगे जीत है,
0: हाँ डर के आगे जीत है, और शुरुआत में जरूर थोड़ी बहुत तकलीफें आएंगी, उसको साइडलाइन कीजिए और आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोकेगा।
1: जब फोटोग्राफ्स ले रहे होते हैं कैमरा से तो इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो पिक्सल और मेगापिक्सल इस तरह की बड़ी टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं, तो इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में जानना चाहें, सरल शब्दों में जानना चाहें तो क्या कहेंगे? पिक्सल
0: क्या होते हैं, इसके कैमरे की

0: क्वालिटी होती है, जितना अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा आपकी फोटो आएगी। पिक्सल इसमें डॉट डॉट होते हैं, कई हजार लाखों होते हैं, तब जाके एक फोटो बनती है। तो जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतना ही कैमरे में होता है, उतना ज्यादा आपको अच्छी फोटो होगी, क्लैरिटी होगी फोटो में। तो ये है। और वही मैंने कहा ना कि अब तो इतना टेक्निक की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए बड़े कैमरे की भी जरूरत नहीं है, बस आपको मोबाइल एक जरूर अच्छा लेना है।
1: अच्छा फोटोग्राफ लेने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, अच्छा कैमरा या टेक्निक या आपकी इमेज?
0: कहते हैं ना, हमें दोनों आंखें जरूर चाहिए। इमेजिनेशन हमारे दिमाग में है, इसका अगर एक साथ वो बना दिया जाए तो फोटो कहाँ से कहाँ आ जाती है।
1: जी।
0: और आपकी जागरूकता, फोटोग्राफी के लिए भी जागरूकता, आपका कैमरा और आपकी इमेजिनेशन, तीनों का ये हो जाए, कहते हैं ना कि कोई कुछ नहीं और आप कहाँ से कहाँ हो जाएंगे। लेकिन आपको ये तीनों चीजें एक साथ दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे तो खैर 32 साल हो गए, तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको अपने आप ही ये निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, खाना भूल जाएंगे कई बार, ये लगेगा कि नहीं नहीं यार ये वो करना, अच्छा अच्छा अच्छा ये देखा। एक ही चीज जो फोटोग्राफर है वो अलग नजर से देखता है, जो आम आदमी है वो अलग नजर से देखता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो जिस तरह से आपने कहा कि आपके अंदर वो एक इमेजिनेशन होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि हुनर सिखाया नहीं जाता, हासिल किया जाता है। आपके अंदर के विजन को आपको खुद ही पैदा करना है, तो उसके लिए पैशन का होना बहुत जरूरी है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या कहेंगे आप इस बारे में?
0: देखिए, पैशन नहीं
1: हो तो कुछ भी हो सकता है।
0: बिल्कुल, पैशन नहीं है तो फिर आप, मुझे लगता है किसी भी क्षेत्र में पैशन के बिना कुछ नहीं होगा, फिर टेक्निक और फिर अपना दिमाग ये सब करना पड़ेगा। ये लीग से थोड़ा अलग हटके है, इसीलिए आ रही है इस क्षेत्र में महिलाएं। और दूसरा, जैसे फैशन फोटोग्राफी भी करते हैं तो उसमें काफी जा रहे हैं, क्योंकि रात के 12 बजे तक फैशन फोटोग्राफी या कुछ है, वो भी एक अलग तरह का है, उसके भी एक अलग, उसका भी अपना एक अलग बाजार है। तो जैसे कारगिल वॉर में गए, तो कारगिल वॉर मैं क्योंकि एडवेंचरस हूं, तो मैं थोड़ा सा इस तरह जाऊंगी, भूकंप आया वहां चली गई, सूखा गया वहां चली गई, कोई राइट हुए तो वहां चली गई। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे
1: चैलेंजिंग है।
0: हाँ हाँ, तो मैं क्योंकि ट्रैकर हूँ, रनर हूँ, दौड़ती हूँ, तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा मैं लीग से अलग हटके हूँ, तो इसके लिए लगन तो आपके अंदर होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे।
1: पैशन हो, जुनून हो, तभी कुछ कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपने बात की कि एक बहुत अच्छा करियर तो है ही, तो कौन सा फोटोग्राफी में अगर किसी ने करियर के रूप में फोटोग्राफी को अपनाना हो, तो कौन सा ऐसा फील्ड है जहां बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं फोटोग्राफी में ही करियर को लेकर? जैसे आपने कहा ट्रेवल फोटोग्राफी है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है, तो कौन सा ऐसी जगह, क्षेत्र है जहां फोटोग्राफी में करियर को लेकर ज्यादा संभावनाएं हैं?
0: नहीं, ये मैंने पहले भी कहा कि आपको अपना, अपने स्वाद के अनुसार नमक डालना है।
1: जी,
0: तो आपको अपना, आपको क्या चाहिए, क्या ट्रैवल फोटोग्राफर बनना है या ट्रैकर फोटोग्राफर बनना है, या फिर आपको वेडिंग फोटोग्राफर बनना है, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी में भी बहुत सारा अच्छा पैसा भी है, और क्योंकि उसको शूट करने का भी एक अलग ही है, प्री वेडिंग और ये सब होता है। तो आपको अपना, आपको अपना क्या शौक है, क्या करना चाहती हैं, सबसे पहले आप खुद ये तय करेंगे। आपको तय करना है कि आपको क्या करना है,
1: क्या
0: बनना है, और क्योंकि स्पोर्ट्स में जाना है या पोर्टफोलियो करना है या एडवेंचर करना है, तो ये आप,
1: जिस तरह से आपने कहा आप ट्रेवल फोटोग्राफर हैं, यहाँ ट्रैकिंग करती हैं, एडवेंचर फोटोग्राफी भी आपने की है, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहता है, तो किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा?
0: देखो, एडवेंचर फोटोग्राफी तो सबसे ज्यादा टफ है। एडवेंचर फोटोग्राफी में थोड़ा नहीं है, काफी टफ है। आप फिल्म मेकिंग में भी आप जा सकते हो, फिल्म का कैमरा पर्सन बन सकती हो, और
1: इसलिए हो जाते हैं।
0: हाँ हाँ, तो ये आपके अपने ऊपर है कि आपको, आपके अंदर कितनी हिम्मत है,
1: और थोड़ा सा आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। कि इसमें यही है, जिस तरह से आप कहती रही हैं कि डर के आगे जीत है, आपको डरना नहीं है, काम करना है और आत्मविश्वास के साथ काम करना है। तो कुछ खास बात आप कहना चाहेंगे, कुछ खास टिप्स फोटोग्राफी से जुड़े हुए आप देना चाहेंगे?
0: मैं तो एक बात कहूंगी कि फोटोग्राफी में आने पर ज्यादा मजा आता है, देश का घूमने का भ्रमण भी हो जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको पैसे भी मिलते हैं, और फिर आपको, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप समाज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप सोचना होगा कि मैं ये करना चाहती हूँ। बड़ी बड़ी बात, डर के आगे जीत है।
1: सर्वेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। आज इस कार्यक्रम में आज की अतिथि थी जानी मानी फोटोग्राफर सर्वेश। इनसे बातचीत कर रही थी काजल सूरी। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी।

Jamie Jamie, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अंत ही विरासत की, नए भारत की, महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, वनयाचल के आंचल से, विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से, हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ, इसलिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वूव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पूरा प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। याद रखें,

के 30 मिनट पर रूबरू प्रोग्राम के तहत मारूफ कॉलम निगार मुतरजिम जनाब सुमित पॉल के साथ की गई एक बातचीत आप समाप्त करेंगे। आपसे गुफ्तगू की एसएम नोमान ने। दस बजकर 55 मिनट पर वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। सामिन हम आपको बता दें इसके फौरन बाद मन की बात का उर्दू तर्जुमा नशर किया जाएगा। दिन में 12 बजे खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी दुकानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम जारी रहेगा दिन में 1 बजे तक। दौरान प्रोग्राम 12:30 बजे आप तारीख साज प्रोग्राम सुनेंगे। आज का मौजू है अदम तावुन तहरीक। दिन में 1 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: सबका ही प्रोग्राम में अभी आप समाप्त कर रहे थे शब्द, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम आज सवेरे,
1: और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं को नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 27 सितंबर है, तो आज क्या है?
2: Absolutely. Today is World Tourism Day. And we all know that Kashi shines on the global tourism map, with security and connectivity making it a preferred destination for tourists from India and also across the world.
1: और 1958 की अगर हम बात करें तो आज ही के दिन मशहूर भारतीय तैराक मिहिर सिंह ने इंग्लिश चैनल को आज ही के दिन सफलतापूर्वक पार किया था और पहले भारतीय तैराक भी बन गए थे।
2: Let me tell you that today is the birth anniversary of Ravi Chopra, an Indian filmmaker best known for directing the television show Mahabharat that came in 1988 to 1990. And when we talk about Mahabharat, we cannot forget this voice, this narration and this style. Let's hear this dialogue by Harish Bhimani.
3: मैं समय हूँ, मेरे बहार के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है न किसी सुख की।
4: भारत की है कहानी।
2: Ravi Chopra directed the highly successful television series Mahabharat, which aired during 1988 to 1999 on Doordarshan. He also directed mythological shows like Vishnu Puran and Maa Shakti. His TV series Aap Biti was one of the most popular TV show on Doordarshan National in the early 2000s.
1: और आज हम ऐसी महान विभूति को याद कर रहे हैं जिनका मानना था कि जब तक समाज का सुधार या विकास नहीं होगा तब तक राजनीतिक विकास का कोई मूल्य नहीं है। जी हाँ, आज पुण्यतिथि है आधुनिक भारतीय समाज के निर्माता राजा राम मोहन रॉय की, और सही मायनों में वो इसके हकदार भी हैं क्योंकि उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा के खिलाफ रहे और सही मायने में आधुनिक भारत की नींव रखी। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और उन्होंने समाज की रूढ़िवादी सोच और अंधभक्त विश्वासों को दूर करने का अथक प्रयास किया। वे महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर भी थे। वे स्वतंत्रता चाहते थे लेकिन चाहते थे कि देश के नागरिक उसकी कीमत पहचाने। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। और अब हम याद कर रहे हैं ठुमरी क्वीन, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शोभा गुट्टू को आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका मूल नाम भानुमति शिरोडकर था। वे एक ऐसी शास्त्रीय शिल्पी थीं जिन्होंने गायन की ठुमरी शैली को विश्व भर में ख्याति दिलाई। उन्होंने ठुमरी के अतिरिक्त कजरी, होरी और दादरा आदि उपशास्त्रीय शैलियों के अस्तित्व को भी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो क्यों ना उनकी एक ठुमरी सुनी जाए।

और तन्वी आज हम याद कर रहे हैं ऐसे गायक को जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिनके गाय गीत आज भी हमारी जुबान पर हैं। अपने गीतों से कई पीढ़ियों को सम्मोहित करने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी महेंद्र कपूर हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्ण काल की प्रमुख हस्तियों में से एक थे, और जब भी देशभक्ति के गीतों का जिक्र होता था तो लोगों के जहन में सबसे पहला नाम महेंद्र कपूर का ही आता है। तो उनका एक गाना जो है क्यों ना वो सुना जाए, जिसमें उन्होंने कहा भारत का रहने वाला हूं।

और उनके गाए हुए देशभक्ति के गीत लोगों को देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना से भर देते हैं। और एक उपकार फिल्म का गाना है मेरे देश की धरती सोना उगले, तो क्यों ना वो सुनाया जाए।

और अब हम याद कर रहे हैं ऐसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक को जिनकी हर फिल्म देखकर आज भी लगता है कि उसमें खोसे गए हैं। एक अलग जादू, अलग एहसास था उनकी फिल्मों में। जी हाँ, आज जयंती है यशराज चोपड़ा की। यश चोपड़ा ने 1959 में पहली बार अपने भाई के बैनर तले ही बनी फिल्म धूल का फूल का निर्देशन किया था और इसके बाद उन्होंने भाई के ही बैनर तले धर्मपुत्र को भी निर्देशित किया। दोनों ही फिल्में औसत कामयाब रही थी और इसमें यश चोपड़ा की मेहनत सबको नजर आई। तो उनकी एक फिल्म

0: तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए, तो अनुमति दें मुकेश कुमार और तनीव खुराना को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ वंडरफुल डे। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामने हमारे नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। सुबह के 9:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आम उदम्बार से खबरें सुनिए। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने जंग में शामिल तमाम मुल्कों पर जोर दिया है कि वो जारी तनाजात के दौरान कशीदगी कम करें और तवानाई और तजारती रास्ते को खुला रखें। रूस ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। वज़ीर आज़म मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक आज ग्राहकों की सहूलत के लिए खुले रहेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के हालात के पेश नजर चार धाम यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3-1 रोजा बैन अवी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरूवनंतपुरम में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने सभी जंग में शामिल मुल्कों से जोर देकर कहा है कि वो जारी तनाजात के दौरान तहमुल से काम लें, कशीदगी कम करने, शहरियों की हिफाजत और तजारत और तवानाई की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाएं। कल रात न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर ने कहा कि जंगों के असरात सिर्फ बराह रास्त शामिल मुल्कों तक ही महदूद नहीं रहते, बल्कि उनकी सरहदों से बहुत दूर तक देर ममालिक के शहरियों को भी भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कशीदगी और तनाजात आलमी सलामती को गैर मुस्तहकम करते हैं, तरक्की की रफ्तार को सुस्त करते हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए खासतौर पर खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी के शोबों में सभी मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने के अपने हक का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि सरहद पार से हुकूमत की पुष्पनाही में की जाने वाली दहशतगर्दी आलमी निजाम के लिए बराह रास्त चैलेंज है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस हुकूमतों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दहशतगर्दी की माली इआनत को बेनकाब करके उसका मुअस्सर मुकाबला किया जाना चाहिए। रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत दिए जाने के भारत के मुतालबे की भरपूर हिमायत की है। कल रात न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए जनाब लारोफ ने कहा कि रूस एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमरीका की नुमाइंदगी को वसी करने के हक में है। उन्होंने कहा कि रूस भारत और ब्राजील की मुस्तकिल रुकनियत की उम्मीदवारी की हिमायत करता है। उन्होंने आलमी खित्ते जुनूब के मुल्कों के लिए अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मजीद नशिस्तें मुख्तस करने की वकालत की और भारत और ब्राजील की भरपूर हिमायत का इजहार किया। जनाब लारोफ ने कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात के तहत मगरबी मुल्कों के लिए मजीद नशिस्तें मुख्तस नहीं की जानी चाहिए, खसूसन जर्मनी और जापान के लिए, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि अब वो अस्करियत पसंदी और माजी की ताकत और हैसियत की बहाली की कोशिशों की राह पर गामजन हैं। अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC के कुल 15 अरकान हैं। इनमें 5 मुस्तकिल अरकान शामिल हैं जिन्हें वीटो का इख्तियार हासिल है। ये 5 ममालिक चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमरीका हैं। इसके अलावा 10 गैर मुस्तकिल अरकान होते हैं जिन्हें 2 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है। वज़ीर आज़म मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशा होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क

न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इससे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तला नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशर के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक ग्राहकों की सहूलत के लिए आज खुले रहेंगे। ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से पूरे मुल्क में कल से शुरू होने वाली मुजव्वजा 3 रोजा बैंक हड़ताल के पेश नजर उठाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम बैंक शाखों, दफातर, एटीएम वाली शाखों और करेंसी चेस्ट को आज पूरे तौर पर कामकाज करने के लिए मंजूरी दी है। इस दौरान सरकारी सेक्टर के कई बैंकों ने 3 रोज तक जारी रहने वाली बैंक हड़ताल के दौरान माहाना मुफ्त लेन देन की हद से ज्यादा एटीएम लेन देन करने पर चार्जेस को माफ करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद में कई अहम तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो साबरमती लोकोशेड में नए तामीर करदा WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इस मौके पर जनाब शाह ज्यादा पावर हाउस वाले WAG-12 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह साबरमती रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वो इस स्टेशन की तामीर नौ से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को आवाम के नाम वक्फ करेंगे। इस तकरीब के दौरान वजीर दाखिला मुल्क की रकीक कुदरती गैस LNG से चलने वाली पहली डेमो ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये भारतीय रेलवे के लिए माहौल दोस्त इकदाम के सिलसिले में एक अहम संग मील है। जनाब शाह शेला में आचार्य परम सागर सूरी सवालजी महाराज की 92वीं सालगिरह के मौके पर मुनाकिद होने वाली एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में पिछले 24 घंटे से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। मौसमियात के महकमे ने देहरादून, टेहरी और पौड़ी गढ़वाल में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश और इक्का दुक्का मकामात पर इंतहाई मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के दीगर हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मुसलसल बारिश के तनाजुर में आज चारधाम यात्रा मुअत्तल रहेगी। उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर है। रियासत में अब तक 15 अफराद की मौत हो चुकी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतासिरा तमाम जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हिदायत दी है कि वो हाई अलर्ट पर रहें और मुतासिर अफराद को फौरी राहत और मदद का फराहम करें। ओडिशा में गुज़श्ता कुछ दिन से शदीद बारिश के बाद दरियाओं में तुगयानी और नशेबी इलाकों में पानी भरने के साथ ही सैलाब की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। जला का दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि सुबर्णरेखा दरिया की सतह में तेजी से इजाफा शिवानी ओडिशा में तश्वीश का बाइस है। महानदी के तास के इलाके में छत्तीसगढ़ के बालाई आबी जखीरे के इलाके में शदीद बारिश के बाइस हीराकुट आबी जखीरे में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में इजाफी पानी को बांध के जरिए छोड़ा जा रहा है। आज पूरी दुनिया में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, एक दूसरे की सकाफत को जानने और इक्तसादी तरक्की को तकवीत फराहम करने में सियाहत के नुमाया रोल को उजागर करता है। इस साल का मौजू है सियाहत को असर नौ वजा करने के लिए डिजिटल एजेंडा और मसनू जहानत। ये मौजू सियाहत के मुस्तकबिल का तयन करने में टेक्नोलॉजी के रोल को नुमाया करता है। आकाशवाणी खबरों के शोबे से बात करते हुए सियाहत के सेक्रेटरी भुवनेश कुमार ने कहा कि सियाहत का शोबा इक्तसादी फरोग और रोजगार के मौके पैदा करने में नुमाया अहमियत का हामिल है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सियाहत के आलमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब बिरला ने कहा कि सियाहत सिर्फ सफर करने और मनाजिर देखने का नाम नहीं है, बल्कि ये मुल्क की सकाफत, फितरत, रिवायत और विरसे के बारे में जानने और उनसे जुड़ने का मौका है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत कसरत में वहदत का हामिल मुल्क है और राजस्थान हमारी सरजमीन पर खुश आमदीद के उसूल के साथ आज दुनिया भर में सयाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम है। वजीर आजम मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता आजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को
हासिल करने की सम्त लगाता।

0: काम कर रही है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान एक रोजा बैन अवी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जंग में शामिल तमाम मुल्कों पर जोर दिया है कि वो जारी तनाजात के दौरान कशीदगी कम करें और तवानाई और तजारती रास्ते को खुला रखें। रूस ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। वजीर आजम ने मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक आज ग्राहकों की सहूलत के लिए खुले रहेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 एक रोजा बैन अक्वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फील्डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत अकवाल जर्री पर मबनी शम्मे फरोजा।
1: आमतौर पर यह समझा जाता है कि इबादत अपने माबूद को राजी करने और आखिरत की जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए की जाती है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि इबादत का ताल्लुक सिर्फ आखिरत ही से नहीं बल्कि सेहत से भी है। इबादत सेहत इंसानी की जामिन और इसकी नश्वोनुमा का बायस होती है। हम जितने इबादत गुजार होंगे उतनी ही हमारी सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रहेगी। इसी तरह हम जितने सेहतमंद होंगे उतने ही बेहतर तरीके से हम इबादत अंजाम दे सकेंगे। मालूम हुआ कि इबादत का सेहत से और सेहत का इबादत से एक गहरा ताल्लुक है। जब हम सेहत को इबादत के साथ जोड़कर देखते हैं तो सेहत 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम शुदा मालूम होती है, रूहानी सेहत, दिमागी सेहत और जिस्मानी सेहत। अगर हम सेहत की पहली किस्म यानी रूहानी सेहत की बात करें तो सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम अदियान व मजाहिब का मानना है कि इबादत का सबसे ज्यादा असर इसी सेहत पर पड़ता है। सेहत की यह किस्म दुनिया में भी कारआमद है और आखिरत में भी। हम इबादत करते हैं जिसके नतीजे में हम दुनिया में भी रूहानी सेहत और कुव्वत से भरपूर जिंदगी गुजारते हैं और आखिरत में भी हमें एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। इस सेहत का ताल्लुक इंसान के अखलाको आदात, रहन सहन और तौर तरीकों से भी है। चुनाचे इसी सेहत की तरफ इशारा करते हुए कुरान करीम ने कहा है, कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, यानी जिसने गुरूर, बदअखलाकी, झूठ, कीना वगैरह जैसी रूहानी बीमारियों को अपने अंदरून से निकालकर अपने बातिन को संवारा। इबादत के सेहत पर असरात मुरतब होने के एतबार से सेहत की दूसरी किस्म दिमागी और नफ्सियाती सेहत है। दिमागी सेहत को जिस्मानी सेहत के मुकाबले में इसीलिए तरजीह दी गई है कि पूरा जिस्म दिमाग का ताबे होता है। आज की दुनिया में दिमागी और नफ्सियाती मरीजों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। लोग डिप्रेशन और फोबिया का शिकार हो रहे हैं, लोगों में खुदकुशी का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, बेखाबी की बीमारी आम होती जा रही है। इस किस्म के बीमार लोग अपनी बीमारी का इलाज नशा और नशावर अदवियात में तलाश करते हैं, हालांकि ये चीजें उनकी सेहत को मजीद तबाह बर्बाद कर देती हैं। इबादत ऐसे ही नफ्सियाती अमराज के शिकार लोगों को सेहत की तरफ ले जाती है। चूंकि इबादत का मफहूम बहुत वसी है, इसलिए सिर्फ नमाज पढ़ लेना या पूजा पाठ कर लेना ही नहीं बल्कि दुनिया का हर मजहब अच्छी आदत और खसलत के अख्तियार करने को भी नेकी और इबादत करतानता है। जब इंसान अच्छी आदतें मसलन सब्र, शुक्र और कनात को इख्तियार करता है तो लाजमन उसके अंदर मुश्किलात को सर करने, मसायब को बर्दाश्त करने और अपनी नाकामी को बर्दाश्त करके मुश्किलों के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत पैदा होती है। वो मुस्बत सोच और फिक्र को अख्तियार करता है, उसके जहन में मुस्बत जज्बात उभरते हैं और उसे नफ्सियाती बीमारियों से उभरने का मौका मिलता है। इबादत का असर सेहत पर पड़ने के एतबार से सेहत की तीसरी किस्म है जिस्मानी सेहत। वाज़ेह रहे कि जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत से खुदकार अवामिल मौजूद हैं, जिनमें से एक अहम अमल है सफाई सुथराई, जिसको अंग्रेजी इस्तिलाह में हाइजीन कहते हैं। दुनिया का हर मजहब सफाई सुथराई को पसंदीदा और महबूब समझता है। मजहब इस्लाम में सफाई सुथराई के बगैर इंसान की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। इबादत करने के लिए पाकीजगी लाजिम है और इस पाकीजगी

0: ज्यादा जरूरत अगर किस चीज की है तो आदमी को इंसान बनने की है। और अर्जुनी का ये पयाम कि आदमी पहले इंसान बने बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात
1: है। गालिब ने भी इसीलिए
0: दुश्वार हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। कितना अच्छा फर्क दिया है इसमें। देखिए आप कि आदमी, आपको पता ही होगा कि ये अरबी लफ्ज है, और जो दम ले और मर जाए वो आदमी है, और इंसान जो अरबी के उन्स लफ्ज से बना है, मतलब है कि इवॉल्व, जो उस म्यार पे पहुंच गया जिसके लिए सब बराबर हैं, जो किसी उसमें तफावत नहीं करता है, इम्तियाज तासुब जिसके निगाह में नहीं है।
1: बहुत उम्दा बात कही आपने। तो रूमी की शायरी का ये बुनियादी वस्फ जो था
0: जी,
1: जो उनकी मसनवियों में भी, उनकी तहरीरों में भी बार बार झलकता है, वो रहा। और आपने तर्जमे काफी किए हैं। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपको जैसे दूसरे तराजिम को आपने रद्द किया कि अभी तक उनका वैसा तर्जमा नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए, तो आप ये तर्जमे उर्दू तर्जमों के हवाले से ये बात कही आपने या अंग्रेजी तराजिम के हवाले से?
0: एडवर्ड फिजरॉल को आपने पढ़ा होगा। एडवर्ड फिजरॉल ने रुबायत उमर खयाम का अंग्रेजी में तर्जुमा किया
1: जी,
0: रुबायत उमर खयाम के नाम से उससे। लेकिन उनकी रूह को पकड़ नहीं पाए, अगर आप देखें तो उन अलामतों को पकड़ नहीं पाए,
1: लॉस्ट इन ट्रांसलेशन
0: जी हाँ, उन अलामतों को पकड़ नहीं पाए। तो यही हुआ, ये सब फारसी जानने वाले लोग थे, स्वेंटन जानते थे, अरबी जानते थे, और मैं बार भी बहुत हद तक जानते हैं, लेकिन फारसी की रूह, सूफिज्म की रूह को समझ नहीं सके, वो अलामतों पर ही रह गए। कभी कभार लगता है कि ये जितना वसी होना चाहिए था, जितनी गहराई में उतरना चाहिए था, या तो मसलहतन नहीं उतरे, या शायद उनकी समझ में सूफियाना कलाम आया नहीं।
1: तो अब मेरी दरखास्त यह है कि क्या आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में रूमी को शामिल रखते हैं कि आपको इसका बेहतर तर्जुमा, यानी जो आपके लिए आपको लगे कि शायद रूमी को इस तरह के तर्जुमा नगार की जरूरत थी, क्या ये मुमकिन है कि इस पर आप काम करें?
0: हम हकीर हैं, हम क्या बात करें इस बारे में, गुस्ताखी माफ हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों से बेहतर कर सकें।
1: माशाल्लाह, इसका मतलब कोशिश जारी है।
0: जी हाँ,
1: मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं।
0: आपकी ज़बान मुबारक हो, शुक्रिया।
1: जो भी आपको सुन रहे हैं, यकीनन वो चाहेंगे कि एक ऐसे शख्स जो रूमी के इतने बड़े प्रस्तार हैं, इतना सोचते हैं उनके बारे में, इतना पढ़ते हैं, वो एक ऐसा आइडियल तर्जमा करें जो लगे कि हाँ ये कम्प्लीट है
0: जी,
1: ये मुकम्मल है हर तरह से। और इसके लिए यकीनन मुझे लगता है कि आप ज्यादा मुनासिब शख्स होंगे, और खुदा करे ऐसा ही हो, मेरा ऐसा सोचना सही हो।
0: आपकी जबान मुबारक हो, शुक्रिया।
1: आपके कॉलम्स मैं पढ़ता रहा हूं कभी कभी अंग्रेजी में, और वो स्पीकिंग ट्री और
0: जी हाँ जी
1: इस हवाले से, तो ये अंग्रेजी में आप अपने आप को जाहिर करते हैं, आप दूसरी जबानों में जाहिर करते हैं, आप लेक्चर्स देने के लिए पाकिस्तान और वेस्ट एशिया के बहुत से ममालिक में जा चुके हैं, तो आपके तजर्बे अलग अलग जबानों के बोलने वाले, अलग अलग तहजीबों में जीने वाले लोगों के साथ होते रहे हैं। ये बताएं कि आपकी मौजूदगी वहां पर उन्हें हिंदुस्तान के बारे में क्या महसूस करने देती है, और यहां की जिन चीजों की, जिन सकाफती वर्षों की तर्जमानी आप वहां करते हैं, उन्हें किस तरह से देखा और समझा जाता है?
0: अच्छा सवाल है, बेदोस जवाब दें। तारीफ और तहसीन के साथ साथ कभी कभार हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों को बड़ा अटपटा लगता है कि ये शख्स ये पढ़ा रहे हैं, पढ़ा पाएंगे? जब हमारी उम्र काफी कम थी, तब जब हम पढ़ाते थे, तब काफी लोगों को थोड़ा लगता था कि भाई ये क्या जानते होंगे, हम आदमी मानते हैं कि हमसे क्या होगा। तब हमें थोड़ा गुस्सा आया करता था कि हम लोग क्यों कहते हैं कि हमें क्या आता है। आज हमें ऐसा लगता है कि वाकई हमें कुछ नहीं आता।
1: जाहिर है ये जो इल्म का समंदर है, उसके किनारे जो बिखरे हुए संग्रेजे हैं, वो मैंने चुन लिए हैं। किसी बहुत जहीन शख्स ने कहा था, जो उस वक्त उस जमाने का सबसे जहीन शख्स था, उसने ये कहा था कि मैंने उन संग्रेजों में से कुछ को चुन लिया है।
0: जी हाँ।
1: तो हम या आप या और दूसरे अगर खुद को ऐसा समझे तो इसमें कोई
0: जी, जी,
1: बुराई
0: जी,
1: नहीं है, और हमें ऐसा ही समझना चाहिए ताकि हम इससे हर लम्हा कुछ न कुछ नया सीखने को आगे बढ़ते हैं।
0: और इंसान में इंकसारी होनी चाहिए।
1: यकीनन यकीनन जरूरी है। और आपकी नजर हिंदुस्तानी फिल्मों पर भी, मैं ये नहीं कहता कि अच्छी है या बुरी है, लेकिन है
0: बहुत ज्यादा, और पुरानी फिल्मों के हम बड़े शौकीन रहे हैं। बहुत लिखा, बहुत पढ़ाया भी एफटीआई में,
1: लेकिन फिल्मों के बहुत सारे पहलू होते हैं, जैसे एक उसके स्क्रिप्ट का पहलू है, उसमें नगमा नगारी है, अदाकारी है, बहुत सारी चीज़।

0: हिदायत है, तो आपकी जो जाती तौर पर दिलचस्पी है वो
1: मौसीकी और तलफ्फुज़।
0: मौसीकी और तलफ्फुज़,
1: जी हाँ,
0: ये अब आपका पसंदीदा।
1: जी जी, जी जी।
0: तो अगर हम शायरी के हवाले से बात करें, जो फिल्मों में शायरी
1: जी, जी जी,
0: और जाहिर है आप काफी चीजें सुनते और देखते रहे, फिल्मों से आपकी वाबस्तगी रही है इस हैसियत से कि आप ऐसे इदारों में जाते रहे हैं जहां से फिल्मों के लिए बहुत कुछ सीखा जाता है,
1: उतने लिखते भी रहे हैं।
0: जी बेहतर। तो ये आज जो फिल्में आप देखते हैं, आज से मुराद है कि 70-75 के बाद, कहने हम 21वीं सदी को नहीं लाएंगे, चूंकि अभी पिछले जमानों का इम्पैक्ट इस पर अच्छा खासा है, हम जो एक वाजे फर्क महसूस कर रहे हैं, वो फर्क आपको, आप किस तरह देख पाते हैं?
1: हमें कहने दीजिए, हम 80 के बाद पैदा हुए, लेकिन आज तक 80 के बाद का एक भी नगमा नहीं सुना, एक भी फिल्म नहीं देखी। आप कह सकते हैं कि बड़ा तासुबी मामला है, ऐसी कैसी नजर है, लेकिन ऐसी नजर है क्योंकि हमने पुरानी फिल्में इतनी देखी, और गलती से जब हमने नए नगमे सुने तो रूह लड़कने लगी, हम घबरा गए।
0: आप मजरूह के काफी फैन रहे हैं।
1: जी,
0: मजरूह के हवाले से कुछ, अगर आप उनकी नगमा नगारी के हवाले से, उनकी फिल्मों के हवाले से कुछ बताना चाहें हमारे सुनने वालों को जो उर्दू सर्विस सुन रहे हैं।
1: देखिए, हम चार लोगों को बहुत, जो वाकई शायर थे, और उसके बाद आप कह सकते हैं लिरिसिस्ट, वे थे मजरूह, कैफी आजमी, शकील बदायूनी और साहिल लुधियानवी। हमने चारों पे बहुत काम किया। मजरूह हमें बहुत पसंद आया, खासकर उनके नगमों में जो शायरी थी, और हमारा पसंदीदा नगमा है, मतलब उनके कलम से निकला हुआ, मुझे दर्द दिल का पता ना था,
0: मुझे आप किस लिए,
1: मुझे आप किस लिए, आकाशदीप का चित्रगुप्त का म्यूजिक है, और उस पर हमने बहुत लिखा भी, और जो पाकिस्तान के कई उर्दू अखबार में शायद भी हुआ, उसमें हमने लिखा कि किस तरह से फिल्मी नगमा होते हुए भी उन्होंने मोहब्बत की बात की, लेकिन बड़ी संजीदगी से की। तो ये पाकिस्तान के कई उर्दू रिसालों में शाया हुआ, अखबार में भी, उनकी शायरी को भी पढ़ा और फिल्मी शायरी को भी। हमें दोनों जगह पे बहुत बहुत ऊंचे पाए के शायर लगे।
0: मजरूह के बारे में अभी गुफ्तगू करते हुए एक बात और जहन में आई कि मजरूह ने शायद उन जमानों के आसपास के भी नगमे लिखे हैं जिनके बाद की फिल्में आपने कहा आपने नहीं देखी।
1: जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कोई फिल्म है कयामत से कयामत तक, नगमे सुने, मतलब आते जाते कभी सुनने का शौक नहीं पैदा हुआ।
0: एक जमाना था जब हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह हम सुनते थे और कहते थे वाह क्या शायरी है, लेकिन अगर आज यही जबान इस्तेमाल की जाए तो हमारे कितने सामईन हैं, कितने फिल्मों के शायकीन हैं जो इस जबान को समझ पाएंगे। नुक्ता ये है, एक फिल्म आई थी कुछ दिनों पहले,
1: जी हाँ,
0: कहा जाता है कि वो इसलिए नापसंद हुई, गालबन वो फिल्म थी जिसमें शायरी के हवाले से ही तमाम फिल्म थी वो,
1: जी जी,
0: तो वो उसका बिजनेस और उसकी परफॉर्मेंस हिंदुस्तान की सतह पर इतनी मायूसकुन रही कि उन्हें उसके सबटाइटल्स दूसरी जबानों में बनवाने पड़े ताकि लोग वो जबान समझने में दुश्वारी न महसूस करें, फिल्म के मुकालमे जिस जबान में है या दो किरदार जिस जबान में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कई बार जमानों का ये बोध फनकार को तब्दील करने का एक मौका देता है, और शायद अगर हम इसमें कुछ अच्छा देख सकें तो वो ये भी है कि जिन नगमों का आपने जिक्र किया वो उनकी कैटेगरी, उनकी नौयत अलग है। वो अपने तौर पर बहुत अच्छे नगमे थे जिनका आपने पहले जिक्र किया, जिस जमाने के आप नगमों के शहदाई हैं, जिस जमाने में कैफी, मजरूह और साहिर लिखा करते थे, लेकिन अब जो नगमे लिखे जा रहे हैं उसमें ये नगमा बेहतरीन नगमों में शुमार होता है आज भी, चूंकि जिस तरह से बेतुके और बिल्कुल न कहीं मौसीकी, न कहीं जज्बात, न एहसासात, न कोई इंसानी रिश्तों की नजाकत का एहसास, ऐसे नगमे लिखे जा रहे हैं, उनमें अगर इस तरह के नगमे भी आते हैं तो उन्हें इसलिए पसंद किया जाता है कि ये जो कुछ सामने है उसमें ये बेहतरीन है। तो इसे हम इवोल्यूशन का हिस्सा मान लें अगर, तो शायद इसे समझने में ज्यादा आसानी हो सकती है।
1: आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम खुद अच्छा परोस नहीं रहे हैं? अगर हम अच्छा परोसे तो लोग सुनेंगे,
0: लेकिन इस अच्छे बुरे की जो तफरीक है ये भी हर जमाना अलग अलग तय करता है। एक वक्त में जो चीज अच्छी होती है कई बार वो दूसरे वक्तों के लिए अच्छी नहीं होती।
1: आपकी बात सही है, लेकिन चंद पैमाने कभी नहीं बदलते।
0: हाँ, वो पैमाना कभी नहीं बदलता। वो पैमाना यूं होता है कि माँ बच्चे को आज भी उतना ही चाहती जितना हजारों साल पहले चाह रही थी, एक महबूब अपनी महबूबा को वैसा ही चाहता है। तो ये तो बुनियादी जो इंसानी मिजाज और जज्बात हैं उनका मामला है, लेकिन इन जज्बात के इजहार के मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं। बहरहाल, लेकिन चूंकि आप जाहिर एक्सपर्ट हैं तो आपसे कुछ हमें

0: सीखने को मिलेगा, कुछ हमारे सामीन को जानने को मिलेगा, इसलिए मैं जानबूझकर आपको कुरेद रहा हूँ।
1: आप पूछेंगे सन 1945 का जब दिल ही टूट गया
0: जी,
1: क्या इस दौरे बजाइए, बजा के देखिए, लोग पसंद करेंगे
0: जी। आप आपकी बात बिल्कुल सही है,
1: वही मजलू हो।
0: मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि आज पसंद करेंगे, और आज भी जो तब्दीलियां आ रही हैं उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं, और जाहिर है उसके साथ कुछ खाशाक भी आ रहे हैं। सैलाब होता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें आती हैं। बहरहाल, आपका जो फिल्मों से और फिल्मी नगमों से ताल्लुक है, उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि आपसे तो फिल्मों पर भी अच्छी खासी गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन मैं फिलहाल ये चाह रहा था कि बाहर आपके जिन लोगों से मरासिम होते हैं, जिन प्रोग्रामों के लिए आप जाते हैं, वहां पर आपके किस पहलू को या आपकी जो इन्फॉर्मेशन हैं, जो आपके दिमाग में मालूमात का खजाना है
1: जी,
0: उसका कौन सा हिस्सा उनको ज्यादा कारामद लगता है और उससे वो ज्यादा महसूस होते हैं?
1: खासकर मजहब और फलसफे से ताल्लुक रखने वाले बातें उन्हें बहुत उनके कायल हैं
0: जी।
1: स्पेशल बीबीसी लंदन या फिर रेडियो ईरान या पाकिस्तानी
0: जी
1: उर्दू अखबार, वे फलसफे की बातें हमसे बहुत ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि हमने इस पर बहुत ज्यादा काम किया।
0: रूमी के अलावा आपने
1: हाफिज शिराजी
0: का जिक्र किया,
1: सारे लोगों को पढ़ा, सारे सूफी शायरों को पढ़ा, जामी, हाफिज शिराजी, फरीदुद्दीन अत्तार, खाकानी,
0: निजामी
1: गंजवी, सभी को
0: पढ़ा।
1: जी हाँ,
0: ये सारे बड़े नाम आपके मुताले में रहे,
1: और ये खुसरो को भी पढ़ा फारसी में।
0: तो जैसे फारसी शायरी को आपने पढ़ा, क्या वहां जहां आप जाते हैं, जिन ममालिक में आपके लेक्चर्स होते हैं
1: जी,
0: वहां हिंदुस्तानी अदब के प्रति लोगों की दिलचस्पी किस हद तक है? कभी वहां के लोगों ने आपसे ये सवाल नहीं किया कि यहां जो जबानें हैं उनमें से कुछ बताइए, क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हैं, यहां क्या अच्छा अदब लिखा जा रहा है, और इस तरह की दूसरी बातें आप
1: उन ममालिक की बात कर रहे हैं
0: जहां आप ले जाते हैं?
1: खुद से टाइट नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जहां जाते हैं वहां की जबान भी हमें पता हो, तो हम उनके बारे में बता देते हैं, उनके अदब से भी जुड़ी बातें, सरोकार रखने वाली बातें हैं, बताते हैं, वो खुश होती है।
0: नहीं, आप उनके अदब के बारे में बताते हैं, मैं ये अर्ज कर रहा था कि क्या वो हिंदुस्तान के अदब के बारे में आपसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं, उसमें दिलचस्पियां
1: जानने की?
0: ये मैं जानना चाह रहा था, और वो अगर जानना चाहते हैं तो वो किस नौयत की जानकारी चाहते हैं?
1: जैसे हमें याद है, स्कूल ऑफ ओरिएंटल अफ्रीकन स्टडीज के सदर हल्का उर्दू थे राल्फ रॉसन, वे जब भी वहां इंटरव्यू लिया करते थे या हम जब उनका इंटरव्यू लिया करते थे, हमारी बातें फकत उर्दू और सब कॉन्टिनेंट की उर्दू से होती थी, और वो भी ऐसी उर्दू जो हिंदुस्तान में बोली जाती है, पाकिस्तान में नहीं। उनका कहना था कि जो बेहतरीन उर्दू है वो लखनऊ और बिहार वहीं बोली जाती है, उन सूबों में। उन्होंने पढ़ाया, क्योंकि हमें तब उर्दू आती नहीं थी, हम फारसी से आए थे, तब उन्होंने कहा कि पहले आप हिंदी सीख लें, जब जैसे हिंदी सीख लेंगे तो फिर आपको रस्म खत सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो रस्म खत फारसी है और हिंदी आ गई तो आप उर्दू सीख जाएंगे। तो रॉल्फ रसल से हमने सीधे उर्दू सीखी।
0: अच्छा, ये बताएं, रॉल्फ रसल का नाम खुद में इतना बड़ा है
1: जी
0: कि आप बिल्कुल डायरेक्ट उनकी शागिर्दी में रहे, उनकी शख्सियत के हवाले से या उनसे मुकालमे या कुछ ऐसे वाकयात उनके हवाले से जो आपको जहन में ताजा हो रहे हो और आप शेयर करना चाह रहे हो हमारे सामीन के साथ?
1: देखिए, वे हमारे आप कह सकते हैं कैसे सरपरस्त थे, रहनुमा थे। उनके साथ साथ डॉक्टर जायफा अशरफ का भी नाम लेंगे और एडवर्ड डब्ल्यू सेठ, ये तीन लोग। साफ़ सवाल है, उन्होंने हमें उर्दू सिखाई नहीं, बल्कि उन्होंने शुरुआत की आज के गालिब से और कहा कि पहले मैं आपको दुश्वार शायरी से उर्दू में ले जाऊंगा, जबकि लोग सहल शायरी से ले जाते हैं, मैं आपको दुश्वार शायरी से उर्दू की जानिब ले जाऊंगा, तभी आप उर्दू समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। और ये तरीका हमें बड़ा अच्छा लगा था। आज जब हम लोगों को सिखाते हैं तो उनसे यही कहते हैं कि आप शुरुआत कीजिए दुश्वार से, फिर सहल पे आइए, न कि सहल से दुश्वार पे।
0: वाह, आपने मुश्किल रास्ता चुना जिसके बाद आसानियां ज्यादा होती हैं। बहुत उम्दा, मुझे उम्मीद थी कि आपसे इससे भी बहुत सारी अच्छी गुफ्तगू बहुत सारे अलग अलग मौजूदात पे हो सकती है। और अब मैं अपनी बात न करते हुए मैं खुद ये चाहता हूं कि आप अपने बारे में बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपके मंसूबे क्या हैं, किन मौजूदात पर आप काम कर रहे हैं, और आपने अपने हवाले से या दुनिया के हवाले से जो आपके सामने आई आप जो कुछ शेयर करना चाहें।
1: मुस्तकबिल का किसी इल्म है, आधा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, हम नहीं जानते अगले पल क्या होने वाला, आप कल की बात कर रहे हैं। फिर भी आपने सवाल किया है तो बस بےآموخت زندائی ہم فارسی میں کہتے ہیں. زندگی بھر پڑھتے رہنا ہے, مطالعہ کرتے رہنا ہے, اور جو بھی آیا

0: सीखते रहना है। हम अपने आप को कहते हैं कि आज भी हम तालिबे इल्म हैं और ज़ेरे तालीम हैं, सीखते रहेंगे, आगे क्या होता है हमें पता नहीं।
1: लेकिन आगे क्या होता है ये पता नहीं होता, बिल्कुल किसी को नहीं होता। आप चूंकि खुद को खाली नहीं रहने देते,
0: नहीं बिल्कुल नहीं,
1: मुझे इस बात का अंदाजा है,
0: एक लम्हा नहीं।
1: तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपको मसरूफ रखे हुई हैं?
0: मौसिकी, शायरी, मुताला और घूमना, खाना बदोशी हमारा शिवा है।
1: आजकल कौन सी शायरी आपके मुताले में है?
0: आजकल हम पढ़ रहे हैं, फिर से हम रवायती शायरों को पढ़ रहे हैं, मीर, दाग, मोमिन और गालिब तो है ही।
1: जाहिर है, इनसे तो आपने शुरुआत ही
0: जी
1: मुश्किल
0: से, फिर से पीछे लौट रहे हैं,
1: लौट पीछे की तरफ है गर्दिश है यह हम तू क्या कहने बहुत उम्दा। ये मोमिन की शायरी
0: जी,
1: गालिब ने इन्हें सुनते हुए इनके एक शेर पर कहा था कि मेरा ये दीवान आप रख लें और ये शेर मुझे दे दें, तुम मेरे पास होते हाँ, हो गोया
0: गोया
1: जब कोई दूसरा नहीं होता। लोग कहते हैं मोमिन के यहाँ और भी ऐसे बहुत सारे अशार हैं जो उनके हम असरों से उनको मुमताज करते हैं, मुखरिब बनाते हैं। तो मोमिन को पढ़ते हुए आपको क्या लगता है कि ये जो एक शेर जिसके सबब सारी दुनिया उन्हें इसलिए जानती है कि ये गालिब ने शेर के हवाले से ये बात कही थी, हालांकि उनके यहाँ बहुत सारे अशार हैं, लेकिन मोमिन को पढ़ते हुए आपको क्या लगता है? मोमिन का मामला ये था कि उनके यहाँ जो सहल निगारी है
0: जी हाँ
1: वो भी थी, और एक खास कैफियत जो लोग कहते हैं कि कम शुरा के यहाँ उनके हमअसरों में थी। तो अगर आप उनके बारे में अलग से भी कुछ आपका अपना नुक्ता नजर हो
0: जी
1: तो मैं वो जानना चाह रहा था, और उसके बाद हम बात करेंगे मौसीकी में जो आपकी दिलचस्पी उसके हवाले से, चूंकि मौसीकी की अब मोहब्बत से भी हम जैसे लोग वाकिफ नहीं होते, तो कम से कम बुनियादी चीजें इसी बहाने सीख लें।
0: जरा नवाजी का शुक्रिया। आपने मोमिन की बात की है तो हमें अपना जुमला याद आ रहा है जो हमने उर्दू अखबार के लिखा था। हमने कहा था कि मोमिन और मीर ये दो शायर ऐसे हैं जिनकी शायरी में बड़ा अदब है। ये वाकई बड़े बा अदब शायर थे,
1: बेशक
0: बड़े शाइस्ता, बड़े नफीस, बड़े थोड़े रवायती हों, कहीं ना कहीं वे जमीन से उतने नहीं जुड़ पाए, ये आरोप लगता रहा है, इल्जाम लगता रहा है उनपे, लेकिन बहुत बड़े शायर थे। मीर को ही लीजिए, मीर का एक शेर अदब के जिसे आप कहते हैं इंतहा है ये, दूर बैठा गुबारे मीर उनसे इश्क बिन अदब नहीं आता। कौन लिख सकता है बताइए,
1: क्या काम भला इश्क से आराम तलब को,
0: आराम तलब को।
1: बहरहाल मौसीकी में आजकल क्या है, आपकी तरजीहात में क्या है?
0: हम सुनना भी गुनाह समझते हैं,
1: तो इस गुनाह में आपने किस मौसीकी को शामिल किया है?
0: आज
1: यानी बस सुनना आपकी तरजीहात में?
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनेंगे तो गुनाह अज़ीम करेंगे।
1: अच्छा, तो ये जो पुराने नगमे हैं
0: जी
1: उन्हीं का सिलसिला हाँ। जारी है
0: जी
1: अभी आपके साथ, बेहतर। और फिलहाल आपका दौरा किसी और जगह के लिए, किसी और
0: जी, हम जा रहे हैं वियना यूनिवर्सिटी जहां वेस्टर्न क्लासिकल पर टॉक है, और आप कह सकते हैं कि वहां हम वायलिन भी बजाएंगे क्योंकि हमने यहूदी मैनुहिन के स्टूडेंट मैसिनो क्वाटा से वायलिन सीखा,
1: क्या कहने,
0: और उन्होंने हमें तोहफतन वायलिन दिया भी।
1: मैं ये जानना चाह रहा था कि मौसीकी में आपकी दिलचस्पी, तो मेरी मुराद फिल्मी मौसीकी से नहीं थी, बल्कि मैं ये जानना चाह रहा था कि आजकल आप किस इंस्ट्रूमेंट को अपने इजहार का जरिया बना रहे हैं?
0: वायलिन और पियानो हम दोनों बजाते हैं।
1: बहुत खूब, क्या कहने, अगर वायलिन होता तो मैं आपसे कहता कि हमें कोई अच्छी सी धुन सुना दीजिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपने इतने तराजिम किए
0: जी
1: अलग अलग जबानों से, तो क्या आपने खुद से शायरी करने की भी कोशिश की?
0: जी हम लिखते हैं लेकिन अपने आप को शायर कभी नहीं कहते, लोग कभी अगर कहें भी हमारा तखल्लुस है नश्तर, लेकिन जब कोई तारीफ करता है तो हम शर्मसार होते हैं।
1: हम नहीं करेंगे, आपको यकीन दिलाते हैं अगर आप सुनाना चाहें।
0: नहीं, हमें अपना कुछ भी याद नहीं है।
1: आपका शुमार उस कबीले में है जहां लोग खुद को अपने अंदर अपने कूजे में समेट के रखते हैं, हालांकि खुद को समेट कर रखना, खुद को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल काम होता है, आप इसमें कामयाब हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। वरना कई बार तो ऐसा होता है कि हम शायर से कहते हैं कि भाई दो शेर आप सुना दें,
0: सुनाते चले जाते हैं
1: और क्या अर्ज किया जाए। बहरहाल आप तशरीफ लाए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और हम दुआगो हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, मुख्तलिफ असनाफ के लिए काम करते रहें, अलग अलग मैदानों में नाम रोशन करें, मुल्क का, अपना, अदब का, तहजीब का। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया,
1: नवाज़िश,
0: आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम
2: रूबरू प्रोग्राम के तहत अभी आप समाप्त कर रहे थे मारूफ कलम निगार मुतरजिम جناب سنیل پال کے ساتھ کی گئی ایک بات چیت. آپ سے میرے گفتگو تھے ایس ایم نعمان. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. سامعین, اب سے چند لمحوں کے بعد وزیر اعظم ہند جناب نریندر مودی من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے.
3: یہ آکاشوانی دلی ہے, کرپیا ہمارے وشیش کارکرم کی پرتیکشا کیجیے. یہ آکاشوانی ہے.
4: شریمد بھگوت گیتا میں کہا گیا ہے, یدی ویکتی کی بدھی شدھ ہو تو اکثر چھوٹے چھوٹے کرموں کی نیتک یوگیتا بھی بڑے بڑے کرم کر ڈالنے میں سمرتھ ہوتی ہے. بدھی تو ایک تلوار کے سامان ہے. جیون میں جو کچھ بھی انسان کے سامنے آتا ہے اس کی کانٹ چھانٹ کرنا ہی بدھی کا کام ہے. اس کے وپریت جب بدھی شدھ نہ ہو تب کسی کرم کی نیتک یوگیتا کا گیان منشیہ کو نہیں ہو سکتا. اس طرح بدھی کے ابھاؤ میں اچھا کاریہ بھی برا بن سکتا ہے.
5: The best of entertainment, information, education, اب آپ کی ایک انگلی کے اشارے پر. کہیں بھی کبھی بھی رہے ہر دم اپڈیٹ. آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں آکاشوانی کا نیوز آن ایئر ایپ.
6: ایک زمانے سے کہانی ہے سنا رہی آکاشوانی, پھر آیا انٹرٹینمنٹ کا ریولیوشن, جب کونے کونے پہنچا دور درشن. کہانی نہیں بدلی, سٹائل گیا ہے بدل. جو کہانیاں ہم سنتے آئے دیکھتے آئے, اب وہی ویسی ہی کہانی سنائے گا ڈیجیٹل.
7: ڈاؤن لوڈ ویوز او ٹی ٹی ایپ ناؤ اینڈ واچ فار فری.
8: من کی شانتی اور شکتی کے لیے جڑیے بھکتی سے आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना. 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन.
9: कोई बोले राम राम.
8: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और यूट्यूब पर भी उपलब्ध आराधना चैनल.

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूँ?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
8: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
9: कहता है
10: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
12: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की यह सुविधा

अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा, बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था, तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में

मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत के इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का यह एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहां दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में
सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहाँ फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध, ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माय भारत के वॉलेंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर
स्पॉटिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है।

वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही है। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही है। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, विदेश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा यह अभियान शुरू किया है। इसमें
लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात

0: जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: अभी मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD रेडियो पर हमारी नशियात जारी है। पेश खिदमत है मन की बात प्रोग्राम का उर्दू तर्जुमा।
4: मेरे प्यारे हमवतनों नमस्कार। सितंबर के महीने में एक बार फिर मन की बात के जरिए आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। मैं मुल्क के तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं। मन की बात में हम मुल्क के शहरों की मुस्बत कोशिशों को प्लेटफार्म फराहम करते हैं, मुल्क की हसूलियाबियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी एक बड़ी तारीखी हसूलियाबी को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये हसूलियाबी है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 साल पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय फौज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। NOC के उस पार जाकर हमारे बहादुर जवानों ने जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की थी उसे देखकर दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की दहशतगर्द मुखालिफ पॉलिसी की एक नई मिसाल पेश की थी। दहशतगर्दाना हमलों की वजह से भारत ने तवील अरसे तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस तकलीफ के खिलाफ हमारा फैसला कुन रद्देअमल था। गुज़श्ता एक दहाई में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर दहशतगर्द भारत की तरफ आंख उठाएंगे तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, दहशतगर्दाना हमलों ने भारत को तवील अरसे तक जख्म दिए हैं। एक वक्त था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना एक आम बात बन गई थी। सितंबर के इसी महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में मुतादिद बेगुनाह लोग मारे गए थे। उसके चंद ही हफ्तों बाद मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई का मुतालबा होता था लेकिन उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। वक्त गुजरने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के दहशतगर्दाना हमले को भी 25 साल हो गए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन बेगुनाह लोगों ने अपनी जानें गंवाई थीं, उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है सन 2014 में PM बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं उन बेगुनाह शहरियों को खिराज अकीदत पेश करने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों शहरियों की जानिब से मुतासिरा खानदानों के तई अपनी ताजियत का इजहार करता हूं। मेरे प्यारे हमवतनों, इन दिनों मुल्क की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका खानदान भी है, आपके आसपास

के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की मर्दमशुमारी की। मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इसका पहला मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 32 करोड़ से ज्यादा खानदानों की मालूमात दर्ज की जा चुकी हैं। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुश्वार गुजार और बर्फानी इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई मुतासिरकुन तजर्बात हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में मर्दमशुमारी का आगाज चमोली के माना गांव से हुआ। माना को मूल का पहला गांव कहा जाता है। माना में सबसे पहले 83 साल पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होम स्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल जरिए से अपनी मालूमात खुद दर्ज की। साथियों, मर्दमशुमारी हम सबकी कौमी जिम्मेदारी है। मैंने 15 अगस्त को भी मुल्क के बाशिंदों से अपील की थी कि इसके लिए अपना वक्त जरूर निकालें। मर्दमशुमारी के लिए अपनी मालूमात खुद दर्ज करने की यह सहूलत बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपने और अपने खानदान की मालूमात दर्ज कर सकते हैं। ये सहूलत हिंदी समेत 16 जबानों में दस्तियाब है। साथियों, इसके लिए आपको मर्दमशुमारी की ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है। ये पोर्टल है sc.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना मकाम दर्ज कीजिए, अपने खानदान से मुतालिक मालूमात भरिए और इसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी कार्रवाई में तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। मालूमात सबमिट करने के बाद आपको एक खसूसी आईडी मिलेगी। जब शुमार कुनंदा आपके घर आए तो आप उसे ये आईडी बता सकते हैं। आपके जरिए दी गई मालूमात की तस्दीक होने के बाद वो मर्दमशुमारी का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग मर्दमशुमारी के पोर्टल पर अपनी मालूमात भर चुके हैं, खुशशुमारी कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा वक्त सर्फ होगा, लेकिन मुल्क के लिए बहुत अहम है क्योंकि आपकी दुरुस्त मालूमात, आपके खानदान की दुरुस्त मालूमात मुल्क के मुस्तकबिल की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे हमवतनों, आज 27 सितंबर की यह तारीख एक खास वजह से और भी खसूसी हो गई है। आज एक ऐसी अजीम शख्सियत का 100वां यौम पैदाइश है जिन्होंने सकाफत, मुआशरे और कौम के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के साबिक बैन अल अक्वामी कारगुजार सदर, काबिल सद एहतराम आजहानी अशोक।

सिंघल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज ही के दिन आगरा में उनकी पैदाइश हुई थी। उन्होंने माशरे में रहकर तपस्वियों जैसी जिंदगी गुजारी। उन्होंने राम जन्मभूमि तहरीक को जो समय दी, जो तवानाई दी, आज उसी का नतीजा है कि हम अयोध्या में अजीम शान मंदिर को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मेरी तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती रही है, मैंने न सिर्फ उनकी इस जिंदगी को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी मौका मिला। जब मैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की रसूमात में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत फितरी था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनका इतना जिक्र नहीं होता। राम मंदिर तहरीक के साथ ही उन्होंने समाजी इम्तियाज और नाबराबरी के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनकी पैदाइश एक इंतहाई खुशहाल खानदान में हुई थी। उनके वालिद सिविल सर्विस के अफसर थे। उनके बहन भाइयों में भी ज्यादातर लोग बड़े बड़े ओहदों पर रहे। वो खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने माशरे और सकाफत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। यही अजीम लोगों की पहचान होती है। आज उनके यौम पैदाइश की 100 साला तकरीब के मौके पर उनके करोड़ों मदाहों की जानिब से उन्हें सलाम करता हूं। अपनी तरफ से जज्बाती खिराज अकीदत पेश करता हूं। मेरे प्यारे हमवतनों, इस साल की शुरुआत हमने खुददारी के एक अजीम त्यौहार के साथ की थी। ये त्यौहार था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को मुनज्जम किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की शनाख्त मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी शान शौकत के साथ वसी समंदर के किनारे भारत को अब्दियत का आशीर्वाद दे रहा है। इसीलिए हमने पूरे फख्र के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, आज मन की बात में मैं ये गुफ्तगू दोबारा क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। सन 1026 ईस्वी में जब गजनी के जरिए सोमनाथ की तबाही हुई थी, इसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में मशहूर सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था। इसे तोड़ा गया था, यानी मोढ़ेरा मंदिर की तबाही को भी इस साल 1000 साल हो गए हैं, जबकि उस वक्त इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुआ था। 1025 में इस मंदिर की तामीर राजा भीमदेव ने कराई थी। साथियों, आप उस दौर के बारे में सोचिए जब इतना बड़ा हमला हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा अकीदे का इतना बड़ा मरकज मिसमार किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हों, तो किसी भी मुआशरे या हुकूमत का हौसला टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव अव्वल ने न सिर्फ गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही अरसे में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर की दोबारा तामीर भी करवा दी। इसी हौसले की वजह से सोमनाथ मंदिर की भी बार बार तबाही के बावजूद दोबारा तामीर होती रही। साथियों, मोढ़ेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के दौर में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर फन तामीर के अजीमशान मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूरज की पूजा सिर्फ फन तामीर और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, इसका एक मतलब यह भी होता है कि रोशनी, तवानाई, साइंस और तसलसल की तरगीब। इसीलिए मोढ़ेरा आज न सिर्फ सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का ये गांव मुल्क का पहला सूर्य ग्राम यानी सोलर विलेज बन चुका है। मोढ़ेरा आज पूरी तरह शमसी तवानाई से चलता है और इसने मुल्क के सामने सस्टेनेबिलिटी की एक मिसाल पेश की है। मोढ़ेरा में सियाहों के लिए कई कशिशें और सहूलतें भी शुरू की गई हैं। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढ़ेरा रक्स महोत्सव का इनेकाद भी होता है। इसमें भारत के सकाफती और क्लासिकी की रक्सों की शानदार पेशकश होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढ़ेरा जरूर जाएं और भारत के शानदार विरसे का नजारा करें। साथियों, माजी से हमारा ताल्लुक आज भी बहुत जिंदा है। इसके पीछे इन लोगों की लगन और मेहनत है जो इसे मजीद गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मुनप्पराई में ऐसी ही एक मुनफरिद कोशिश हो रही है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से वाबस्ता ए सेल्वाराजू जी इसे आगे बढ़ा रही हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ कदीम मुजस्मों की मालूमात मिली थी। इस मौजू पर गुफ्तगू के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर कई मुजस्मे और कदीम मंदिर मिले। माजी से जुड़ने की एक दिलचस्प कोशिश है। इस तरह हम अपने विरसे को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी कोशिशें की जा सकती हैं। यह हमें अपनी तारीख को करीब से देखने और समझने का मौका देती हैं। मेरे प्यारे हमवतनों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जिंदगी के बहुत से मंत्र दिए हैं। सफाई भी इन्हीं में से एक है। हम अक्सर अपने

0: मुहर्रम में भी इस साल लोगों ने मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक मुहिम शुरू की है। ये मिजो माशरे की तलो मरियना रिवायत के मुताबिक है। इसका मतलब है बेलो खिदमत और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसी कोशिशें इंतहाई काबिल तारीफ हैं। मुझे आंगनबाड़ी मराकज से वाबस्ता इन तमाम लोगों पर भी फख्र है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनबाड़ी मराकज अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। तकरीबन 9 करोड़ मुस्तफिदीन इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, आमला ख्वातीन और दूध पिलाने वाली माओं की बेहतर देखभाल मुमकिन हुई है। हमें गजाई किल्लत के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें अपने माशरे को गजाई किल्लत से पूरी तरह आजाद करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी अकीदत और जोश व खरोश के साथ गणेश उत्सव मनाया है। मुल्क भर में पूरे अकीदत मंदाना जज्बे के साथ गणपति बप्पा का इस्तकबाल किया गया। ये मुकद्दस मौका पूरे माहौल को जोश और खुशी से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश इन अकल और नेक कामों के आगाज की अलामत हैं। इनके कई गहरी अकीदत सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थेलखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वो ऐसे तो थाईलैंड के हैं। यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फराफिकानियत के तौर पर की जाती है और जब वो 19 साल के थे तब उनके वालिद ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक तस्वीर तोहफे में दी थी। यहीं से उनमें हैरत अंगेज अकीदत पैदा हुई। वो भगवान श्री गणेश से वाबस्ता रिवायत के मुताले में 4 दहाइयों से भी ज्यादा वक्त गुजार चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल समेत एशिया के कई ममालिक का सफर किया है। महाराष्ट्र से उनका खास लगाव रहा है। अष्टविनायक रिवायत के बारे में जानने के बाद वो कई बार यहां आ चुके हैं। उनकी कोशिशों से थाईलैंड के अकीदतमंदों के दरमियान भी अष्टविनायक यात्रा मकबूल हो चुकी है। साल 2002 में उन्होंने शुमाली थाईलैंड में चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम कायम किया। आज इसमें 10,000 से ज्यादा गणेश की मूर्तियां हैं। म्यूजियम में इन अकीदतमंदों के लिए अष्टविनायक की मूर्तियां भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकती। यहां हर इतवार सुबह तकरीबन 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े खसूसी मौके पर भी रसूमात अदा की जाती है। ये बताता है कि भारत की अकीदत, फन और सकाफती रिवायात दूसरे ममालिक में भी किस तरह मकबूल हो रही हैं। मेरी ख्वाहिश है कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद सब पर हमेशा कायम रहे। साथियों, मन की बात की हर एपिसोड के बाद मुझे मुतअद्दिद मौजूआत पर आपके पैगाम मिलते रहते हैं। आप इसी तरह तरगीब से भरी दास्तान भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास होने वाली ऐसी कोशिशों की तारीफ करते हैं तो उनका हौसला और भी बढ़ जाता है। मन की बात के जरिए उनके बारे में जानकर मुल्क के दूसरे हिस्सों के लोग भी मुतासिर होते हैं। ये सफर इसी तरह आपके ताबून से मुसलसल आगे बढ़ता रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ पूरे लुत्फ और खुशी से मनाएं। मैं आप सबको एक बार फिर नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: सामिन, अभी आप मन की बात का उर्दू तर्जुमा समाप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर हमारे नशियात का सिलसिला जारी है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज होने आईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। दिन के 12 बजे चाहते हैं अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: आप ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की इंसदादे दहशतगर्दी पॉलिसी की एक नई मिसाल पेश की है। ऑपरेशन सिंदूर ने वाज़े पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मौसर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में लोगों से कहा कि वो मर्दमशुमारी के अमल में हिस्सा लें और खुद से जाती तफसीलात फराहम करने की सहूलत का इस्तेमाल करें। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मनशियात से दूर रहें और मनशियात से पाक भारत के पैगाम को आम करें। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने जंग में शामिल तमाम मुल्कों पर जोर दिया कि वो जारी तनाजात के दौरान कशीदगी कम करें और तवानाई व तजारती रास्तों को खुला रखें। रूस ने अक़्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तक़िल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। आज दुनियाभर में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आईची नगोया में एशियाई खेलों में भारत के मर्दों और ख्वातीन की कंपाउंड तीरंदाजी टीमें सभी फाइनल में पहुंच गई हैं और मर्दों की क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3-1 रोजा बैन अवी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारतीय फौज की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की इंसदादे दहशतगर्दी पॉलिसी की एक नई मिसाल पेश की। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए जहां मोदी ने कहा कि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का कल 10 साल पूरा हो जाएगा, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने वाज़े पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मौसर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा कि वो मर्दमशुमारी के अमल में हिस्सा लें और खुद

अम्बास फिल्म का दुकान आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया हुआ, मौसीकी रवि की थी, नगमा निगाते साहिर लुधियानवी। और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में इस प्रोग्राम की अगली पेशकश, फिल्म है आए दिन बहार के। नगमा निगार आनंद बख्शी मौसीकी तरतीब दी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मैं ये सुन मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश वो कौन सी फिल्म का नगमा महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का गाया हुआ। राजा मेहदी अली खां के लिखे इस नगमे की तर्ज बनाई मदन मोहन ने।

सुन रहे थे। तहरीर प्रोफेसर मोहम्मद अनवारुल हक की थी, रावी थे SM नोमान। मीडियम न्यूज 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडेश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस, और प्रोग्राम जारी है मिले सुर मेरा तुम्हारा।

दुल्हन एक रात की इस फिल्म का दुकान आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। और लीजिए सुनिए धूल का फूल, फिल्म का नगमा साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, मौसीकी अंदर तक की आवाजें महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की।

और ये है मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। गीत गाया पत्थरों ने, फिल्म का नगमा महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया हुआ। तरतीब दी है रामलाल ने।

इस आखिरी के साथ ही मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत के इंसदादे दहशतगर्दी की पॉलिसी की एक नई मिसाल पेश की है। ऑपरेशन सिंदूर ने वाजह पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मौसर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में लोगों से कहा कि वो मर्दमशुमारी के अमल में हिस्सा लें और खुद से जाती तफसीलात फराहम करने की सहूलत का इस्तेमाल करें। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मनशियात से दूर रहें और मनशियात से पाक भारत के पैगाम को

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक में दुनिया के सामने भारत की इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसी की एक नई मिसाल पेश की है। ऑपरेशन सिंदूर ने वाजह पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मौसर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में लोगों से कहा कि वो मर्दमशुमारी के अमल में हिस्सा लें और खुद से जाती तफसीलात फराहम करने की सहूलत का इस्तेमाल करें। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मनशियात से दूर रहें और मनशियात से पाक भारत के पैगाम को आम करें। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जंग में शामिल तमाम मुल्कों पर जोर दिया कि वो जारी तनाजात के दौरान कशीदगी कम करें और तवानाई व तजारती रास्ते को खुला रखें। और मर्दूबी क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3-1 बैन अवी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। इसके साथ ही हमारी पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है 3 बजे आपके

इस प्यारे से गीत के बाद फिल्म सगाई की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे शील और राजेश एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके बीच प्रेम का रिश्ता बन जाता है। शील कैलाश से शादी नहीं करना चाहती, वो राजेश से शादी करना चाहती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां परिवार की इच्छा और दिल की इच्छा आमने सामने खड़ी दिखाई देती है, और फिर आता है शील का जन्मदिन, और इसी मौके पर शील और राजेश अपनी सगाई का जश्न मनाते हैं। आगे क्या हुआ ये जानेंगे इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: पापे ना शर्मा
1: इस खूबसूरत गीत के बाद अब वापस लौटते हैं फिल्म सगाई की कहानी की ओर। राजेश और शील की सगाई को कैलाश स्वीकार नहीं कर पाता। उसके मन में राजेश के प्रति दुश्मनी पैदा हो जाती है और फिर एक दिन राजेश की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट एक साजिश थी राजेश के खिलाफ। इस एक्सीडेंट में राजेश कमर से नीचे तक लकवाग्रस्त हो जाता है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ एक युवा प्रेमी जिसकी जिंदगी अचानक बदल गई, दूसरी तरफ एक लड़की जिसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपने प्रेमी का साथ देगी? शील के पिता इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन शील ने राजेश का साथ नहीं छोड़ा। शील ने राजेश के साथ विवाह कर लिया। यहाँ फिल्म का शीर्षक सगाई जैसे एक नए अर्थ में बदल जाता है। सगाई सिर्फ दो लोगों के बीच किया गया वादा नहीं रह जाती, वो जीवन भर साथ निभाने के संकल्प में बदल जाती है। फिल्म की कहानी जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
2: दस लाख की ऑर्डर मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के एक ही फिल्म से प्रोग्राम में, और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर आपके साथ। और आज आप सुन रहे हैं फिल्म सगाई की कहानी के साथ साथ उसके नगमे भी। तो आइए सुनते हैं एक और भावनात्मक गीत फिल्म सगाई से।

दोस्तों, इस भावनात्मक गीत के बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शादी के बाद शील अपने लकवा ग्रस्त पति की सेवा में लग जाती है और अपने पति को फिर से जीवन के प्रति विश्वास दिलाने की कोशिश करती है। यहाँ फिल्म सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रह जाती, एक ऐसी स्त्री की कहानी बन जाती है जो कठिन परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानती। कहानी का भावनात्मक केंद्र यही है कि जब जीवन आसान नहीं रहता तब रिश्तों की असली परीक्षा होती है। राजेश के लिए शील का साथ सिर्फ प्रेम नहीं है, वो अब उसके जीवन का सहारा बन जाती है। तो ये थी फिल्म सगाई की कहानी संक्षेप में। तो अभी हमारे दोस्तों को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा अपने संदेशों का, तो अभी हम अपने दोस्तों के संदेश शामिल कर लेते हैं। तो पहला संदेश हमें मिला है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम दिशानी और निमित अहुजा ने हमें ये संदेश भेजा है। इन्होंने लिखा है, एक ही फिल्म सगाई की कहानी और गीत सुन रहे हैं, अच्छी लग रही है, आपकी प्रस्तुति भी लाजवाब, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगला मेल हमें मिला है धर्मेंद्र छिप्पा जी का और इनके साथ है, अगला मेल है हमें झग्गर राम साहू, ये हमें मेल भेजा है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। और अगला संदेश है संजय धिंगिया जी का, एक ही फिल्म से कार्यक्रम इनको पसंद आ रहा है, शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। ये संदेश हमें मिला है बागपत उत्तर प्रदेश से। तो अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं फारूक अली जी का, इनको भी हमारा प्रोग्राम एक ही फिल्म से आज पसंद आ रहा है, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। अगला मेल हमें मिला है पीएस नावकर जी का, ये संदेश इन्होंने भेजा है नरवेल महाराष्ट्र से और इनके साथ हैं नावकर परिवार के सभी सदस्य, इनको भी आज का प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। एक और मेल

0: हम शामिल कर लेते हैं सुदर्शन मुखी जी का। ये मेल हमें इनके साथ है अनीता सिमरन, ये मेल हमें मिला है शांति नगर सोनीपत से। इनको भी आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, एक ही फिल्म से कार्यक्रम का ये आनंद उठा रहे हैं और फिल्म के गीत भी इन्हें पसंद आ रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगला मेल है हीरा मनी वर्मा जी का, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में इन्होंने लिखा है आज फिल्म सगाई, फिल्म से जुड़ी रोचक जानकारी के साथ फिल्म के बेहतरीन गीत सुनने को मिल रहे हैं, यादगार प्रस्तुति के लिए बधाई। तो आपका भी हीरामणी जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये मेल हमें मिला है दंत रेगी भट्टापारा से। और एक और मेल मैं शामिल करना चाहूंगी, रोजी डी कास्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से इन्होंने ये मेल हमें भेजा है और ये हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा प्रोग्राम बहुत ही आनंद के साथ सुन रहे हैं। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और एक और मेल शामिल करूंगी मैं, कमलकांत गुप्ता जी ने ये मेल भेजा है पीपरिया से और इनके साथ है दीपा गुप्ता और छिप्पा गुप्ता। तो इसी तरह से हमें अपने संदेशों के जरिए अपना प्रेम जाहिर करते रहिए और प्रोग्राम कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया भी हमें भेजते रहिए। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। जो नए श्रोता अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ईमेल पता मैं बताना चाहूंगी, ipradiodelhi@gmail.com। तो दोस्तों, फिल्म सगाई में कई अनुभवी कलाकार भी दिखाई देते हैं। राज मेहरा शील के पिता की भूमिका में है, दुर्गा खोटे शील की मां के रूप में, असिस्टेंट टुनटुन इफ्तिकार अस्पताल की डॉक्टर की भूमिका में और हेलन डांसर के रूप में दिखाई देती हैं। इन कलाकारों ने फिल्म की कहानी को अलग अलग रंग दिए। दोस्तों, फिल्म की एक खास बात है शील का विश्व कन्या के रूप में किया गया नृत्य। ये दृश्य फिल्म की कहानी में आने वाले तूफान से पहले का एक अलग रंग प्रस्तुत करता है। राजश्री का नृत्य और उस समय की सिनेमाई प्रस्तुति हमें उस दौर की फिल्मों की शैली की याद दिलाती है। दोस्तों, फिल्म सगाई की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि रिश्ते सिर्फ खुशियों के साथ रहने से नहीं बनते, रिश्ते तो मुश्किल समय में साथ निभाने से मजबूत होते हैं। रिश्तों की असली पहचान खुशियों में नहीं होती, मुश्किल घड़ी में जो साथ थामे वही तो सच्ची सगाई होती है। तो आइए सुनते हैं फिल्म सगाई का एक और प्यारा सा गीत।
1: खफा ना होना अगर मैं पूछूं, कहां से पाया ये हुस्न शबाब तुमने।

दोस्तों, फिल्म सगाई की कहानी में एक और बात आपको मैं अवगत कराना चाहूंगी कि टुनटुन ने मिस अनारकली की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में। यानी फिल्म में गंभीर प्रेम कहानी के साथ हल्के फुल्के हास्य का भी रंग मौजूद था। तो इसी के साथ अपनी दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक और फिल्म की कहानी के साथ। और इसी के साथ नमस्कार, और चलते चलते सुनते जाइए इसी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे कीते। कहा भारतीय फौज वालों पाकिस्तान च दहशतगर्दी टिकाणे ते कीती गई सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की दहशतगर्द विरोधी नीति की एक नवी मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री वालों नौजवानों नूं नशा मुक्त युवा मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत भविख च जंग की प्रकृति ध्यान च रखते हुए अपन समर्थावां का विकास कर रहे। अज विश्व सैर सपाटा दिवस मनाया जा रहा है। भारत वैस्ट इंडीज दरमियान 3 एक रोजा क्रिकेट मैचों की लड़ी अज तो शुरू। पहला मैच अज दोपहर बाद 2 बजे तिरुवनंतपुरम च खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय फौज वालों पाकिस्तान च दहशतगर्दी टिकाणे ते कीती गई सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की दहशतगर्दी विरोधी नीति की एक नवी मिसाल पेश की है। आज आकाशवाणी के अपने मन की बात प्रोग्राम च उन्होंने कहा कि देश का

0: थाना समझौता नहीं करेगा। आज जो विश्व सरसपादा दिवस है, इस मौके सभ्याचार सरसपादा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की है कि सरसपाटा हम सिर्फ बख थाना की यात्रा करने बारे नहीं, सगों रोजगार स्थानक आर्थिकता विकास का एक शक्तिशाली थम भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी अगुवाई हेठ विकसित भारत की एक आर्थिक शक्ति वजो सरसपाटे उत्साहित करने के उपराले किए जा रहे हैं। उन्होंने भारत को सैर सपाटे वास्ते दुनिया का पसंदीदा स्थान बनाने के संकल्प को मजबूत करने की अपील की। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने भी देश को विश्व सैर सपाटा दिवस मौके बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट ने कहा कि सैर सपाटा वख वख लोगों सदाचारा समाज प्रति जागरूकता बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई हेठ भारतीय यात्रा प्रेमियों लिए एक सुरक्षित विकसित स्थान वजो उभर के सामने आया है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने आज तुर्कमेनिस्तान सरकार के विदेश मंत्री राशिद मिरदोफ को आजादी की 35वीं वर्षगांठ पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि वह भारत और तुर्कमेनिस्तान विचकार संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद रखते हैं। नवी दिल्ली में कल तो दो दिन राष्ट्रीय खेतीबाड़ी सम्मेलन शुरू हो रहा है। खेतीबाड़ी के किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे। खेतीबाड़ी के किसान भलाई विभाग आने वाले हरी सीजन लिए मुख्य तरजीहां तैयारियां चर्चा करने इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कांफ्रेंस में केन्द्र राज सरकार खेतीबाड़ी उत्पादन उत्पादकता सेहता किसानों की आमदन बढ़ाने लिए तालमेल मजबूत करने रणनीतियां विकसित करने पर विचार वटांदरा किया जाएगा। क्रिकेट विच भारत ते वेस्टइंडीज दरमियान 3-1 रोजा मैचां दी लड़ी अज शुरू हो रही है। इस तों बाद दोवां टीमां दरमियान 5 मैचां दी 2020 सीरीज खेडी जाएगी। विराट कोहली ते रोहित शर्मा एक रोजा टीम च शामिल ने। शेष ओवर 2020 सीरीज च भारतीय टीम दे कप्तान होंगे। लड़ी का पहला मैच अज दोपहर बाद 2 बजे तिरुवनंतपुरम च खेडा जाएगा। दूजा मैच 30 सितंबर नूं गुवाहाटी विच ते तीजा 3 अक्तूबर नूं न्यू चंडीगढ़ च खेडा जाएगा। जापान में चल रही एशियाई खेडों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने अज मर्दां दे 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान के नेक्रूज सलीमोव को 5-0 नाल हरा के भारत का पहला मुक्केबाजी विच तमगा पक्का कर लिया। पिछले महीने ग्लासगो च अंकुश ने राष्ट्रमंडल खेडों च सोने का तमगा जीतया। पाकिस्तान उत्ते जीत के नाल ओ मुकाबले के सैमीफाइनल विच पहुंच गए ने। ते आखिर च खास खबरां इतवार फिर तों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश के लोगों अपने विचार सांझे किए। कहा भारतीय फौज वालों पाकिस्तान च दहशतगर्दी ठिकाणियों से की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया सामने भारत की दहशतगर्दी खिलाफ नीति की एक नवी मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री वालों नौजवानों को नशा मुक्त युवा मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत भविख में जंग की प्रकृति ध्यान रखते हुए अपन समर्थावान का विकास कर रहा है। अज विश्व सैर सपाटा दिवस मनाया जा रहा है। भारत के वेस्टइंडीज दरमियान 3-1 रोजा क्रिकेट मैचों की लड़ी अज तो शुरू। पहला मैच अज दोपहर बाद 2 बजे तिरुवनंतपुरम खेडा जाएगा। इसके नाल ही राष्ट्रीय खबरों का यह बुलेटिन खत्म हों। प्रदेशक खबरों का अगला बुलेटिन तुम सुनोगे शाम 6:20। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल पेश की और ये पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो मुनशियात से दूर रहें और मुल्क से मुनशियात के खात्मे के पैगाम की तशहीर करें। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो मर्दमशुमारी के अमल में शामिल हों और खुद ही तफसीलात का इंदिराज कराने की सहूलत का इस्तेमाल करें। लोगों की सहूलत के लिए सरकारी मिल्कियत के सभी बैंक और इलाकाई देहे बैंक आज खुले हुए हैं। एशियाई खेलों में बॉक्सर अंकुश पंघाल मर्दों के 80 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और इस तरह भारत को एक तमगा मिलना तय है। और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के साथ पहले एक रोजा मैच में भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर

0: फौज की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की भारत की पॉलिसी की एक नई मिसाल पेश की है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कल 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक को 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहादुर भारतीय फौजियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिस अंदाज से कंट्रोल लाइन को पार किया था, दुनिया भी इसे देखकर हैरान रह गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दाना हमलों की वजह से मुल्क ने तवील अरसे से जिस दुख और तकलीफ का सामना किया है, सर्जिकल स्ट्राइक इसी तनाजुर में भारत की फैसला कुन जवाबी कार्रवाई थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 9/11 के दहशतगर्दाना हमलों को भी इस साल 25 साल हो गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि अमरीका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इन हमलों में हलाक होने वालों में अमरीकियों के बाद सबसे बड़ी तादाद भारतीय अफराद की थी। जनाब मोदी ने 2014 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अमरीका के अपने दौरे में इन बेकसूर लोगों को खराज अकीदत पेश करने का तस्करा भी किया। मौजूदा मर्दमशुमारी के अमल का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में इस अमल का पहला मरहला करीब करीब मुकम्मल हो गया है। 32 करोड़ से ज्यादा कुंभों का डेटा पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि मर्दमशुमारी की तफसीलात खुद ही रजिस्टर करने की सहूलत बहुत ही सहल है और लोग अपने मोबाइल फोन से ही खुद के बारे में और अपने अरकान खानदान के बारे में जानकारी का इंदराज कर सकते हैं।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: जानकारी दाखिल करने के बाद लोगों को एक खसूसी आईडी मौसूल होगी जिसे वो मर्दमशुमारी करने वाले इन्यूमरेटर के आने पर शेयर कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज विश्व हिंदू परिषद के साबिक इंटरनेशनल वर्किंग सदर आडवाणी अशोक सिंघल का 100वां यौमे पैदाइश भी है। जनाब मोदी ने उन्हें एक अजीम शख्सियत करार दिया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सकाफत, मुआशरे और मुल्क के लिए वक्फ कर दी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने महात्मा गांधी की जयंती का भी जिक्र किया जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि सफाई सुथराई जिंदगी के उन बहुत से रहनुमा उसूलों में से एक है जो बापू ने दिए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क भर के करोड़ों नौजवान अफराद ने नशा मुक्त युवा अभियान के तहत मुनशियात और नशा आवर मादों के खिलाफ हाल ही में अहम अहद किया है।
1: आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अजीम जश्न के साथ इस साल का आगाज किया था। जनाब मोदी ने कहा कि महमूद गजनी ने 1000 साल पहले पहली मरतबा 1026 में सोमनाथ मंदिर को मुनहदिम कर दिया था। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आज भी खड़ा है। अपने खिताब के आखिर में जनाब मोदी ने सामईन से जोर देकर कहा कि वो अपने भाई से तरगीब किस्से और कहानियां शेयर कर रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मन की बात के जरिए इन कोशिशों के बारे में सीखने से मुल्क के दीगर हिस्सों के लोगों को भी तरगीब मिलती है। नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने यह उम्मीद जाहिर की कि लोग अपने अजीज व अकारिब के साथ आने वाले त्यौहार पूरे जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत खुद कफील और मुस्तकबिल के दिफाई इको निज़ाम तैयार करने की समत आगे बढ़ते हुए

0: अगले 10, 20, 25 साल के दौरान जंगी साजो सामान की नौईयत को मलहूज खातिर रखते हुए अपनी सलाहियत बढ़ा रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस के जेर एहतमाम प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही।
1: आज का युद्ध केवल सैनिक बनाम सैनिक नहीं है, आज का युद्ध मल्टी डोमेन है। भविष्य में सुरक्षा का क्षेत्र और युद्ध का मैदान टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होगा। जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा उसे बैटल फील्ड में स्वाभाविक रूप से एडवांटेज होगा। इसलिए हमने भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी को फ्यूचर रेडी बनाने पर बल दिया है।
0: आज पूरी दुनिया में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, एक दूसरे की सकाफत को जानने और इक्तसादी तरक्की को तकवीत फराहम करने में सियाहत के नुमाया रोल को उजागर करता है। इस साल का मौजू है सियाहत को अजसरे में वजह करने के लिए डिजिटल एजेंडा और मसनू जहानत। ये मौजू सियाहत के मुस्तकबिल का तयन करने में टेक्नोलॉजी के रोल को नुमाया करता है। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक ग्राहकों की सहूलत के लिए आज खुले हुए हैं। ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से पूरे मुल्क में कल से शुरू होने वाली मुजवजा 3 रोजा बैंक हड़ताल के पेश नजर उठाया गया है। पाकिस्तान में शुमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा सूबे के डेरा इस्माइल खान में हुए धमाके में 12 अफराद हलाक और 35 दीगर जख्मी हो गए। ये धमाका कल उस वक्त हुआ जब धमाका खेज मादे से भरी गाड़ी पुलिस चेक प्वाइंट में जा टकराई और जोर का धमाका हुआ। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के अंकुश पंघाल बॉक्सिंग में 80 किलोग्राम जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेक्रोस सलीमोव को 5-0 के मुत्तफिका फैसले से हरा दिया। इस तरह बॉक्सिंग में भारत को पहला तमगा मिलना तय है। अंकुश पहली मरतबा एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। मर्दों की क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। यह मैच अब से कुछ देर बाद 2 बजे शुरू होगा। भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही 2 महीने के वक्फे के बाद भारत के एक रोजा क्रिकेट मैचों की टीम में वापस आ गए हैं। इस सीरीज में शुभमन गिल भारतीय टीम की कमान संभालेंगे जबकि शाई होप वेस्टइंडीज के कप्तान हैं। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल पेश की और ये पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो नशियात से दूर रहें और मुल्क से नशियात के खात्मे के पैगाम की तशहीर करें। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो मर्दों शुमारी के अमल में शामिल हों और खुद ही तफसीलात का इंदराज कराने की सहूलत का इस्तेमाल करें। लोगों की सहूलत के लिए सरकारी मिल्कियत के सभी बैंक और इलाकाई देही बैंक आज खुले हुए हैं। एशियाई खेलों में बॉक्सर अंकुश पंघाल मर्दों के 80 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और इस तरह भारत को एक तमगा मिलना तय है। और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के साथ पहले एक रोजा मैच में भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindoor demonstrated no example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani urges people to work together for Nasha Mukti Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete. UN Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG-powered train at Sabarmati. Red alert for heavy to very heavy rainfall issued over Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, boxer Ankush Pangal assures medal by defeating Tajikistan's Nekruz Salimov in the men's 80-kilogram quarterfinal. Prime Minister Narendra Modi today stated that the surgical strike

0: Cricket: West Indies were 11 for no loss in 1.2 overs against host India on the first one-day international of the three-match series at the Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram when reports last came in. Earlier, India won the toss and opted to field first. Both Rohit Sharma and Virat Kohli returned to India's ODI lineup after a two-month break from this format. Shubman Gill will lead Team India for this ODI series, while Shai Hope captains the West Indies. The second ODI will be played in Guwahati on September 30, followed by the third one-day international in New Chandigarh on October 3rd. The ODI series will be followed by five T20 internationals. Shreyas Iyer will lead the team in the T20I series. The T20 international series will begin in Lucknow on October 6th, followed by the second T20I in Ranchi on October 9th. India made a strong start to its Asian Games archery campaign in Aichi, Nayoga today, with the men's and women's compound teams advancing to the semi-finals along with the recalf. India today claims two silver medals in squash. India's Abhay Singh won silver in the men's single squash. In the final, he lost to Malaysia's EON 11-9, 11-5, 11-5. The world number 26 Indian was unable to match the number 18 Malaysian, who defended his Asian Games title with a commanding straight games victory. In women's single squash, Anahat Singh also bagged silver as she played the final against Malaysian Sivashankari Subramaniam. Earlier, Ankush Fangal assured India of his first boxing medal at the Games after defeating Tajikistan's Nekruz Salimov 5-0 in the men's 80-kilogram quarterfinal today. India is now on the 11th position in the medals tally with a total of 32 medals, including 4 gold, 14 silver and 14 bronze medals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindoor demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani urges people to work together for Nasha Mukti Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-immunization facility, says first phase of census nearly complete. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG power train at Sabarmati. Anahat Singh red alert for heavy to very heavy rainfall issued over Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, Anahat Singh bagged a silver. Abhay Singh wins silver in men's single squash. Boxer Ankush Fangal assures medal. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की

0: मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
0: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
0: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
0: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
1: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
0: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
0: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथौन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले

0: 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए टैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता दोगुनी हो जाएगी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
2: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
0: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया जिसमें एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
4: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ के सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे गैप को कम से कम करें, मेटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाए। इनएक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
3: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में

0: भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं के 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन उत्पादकता स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रूपये का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

एक ही कलाकार सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त तृप्ति जौहरी का प्यार भरा नमस्कार। कहते हैं मोहब्बत को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता, मोहब्बत को महसूस किया जा सकता है, उसकी खामोशी सुनी जा सकती है और कभी कभी उसे पर्दे पर देखा भी जा सकता है। लेकिन अगर किसी फिल्मकार ने मोहब्बत को एक खूबसूरत दृश्य, एक कविता और एक गीत और एक एहसास बना दिया, तो वो नाम था यश चोपड़ा। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हमारे आज के कलाकार हैं यश चोपड़ा। हिंदी सिनेमा के उस फिल्मकार का नाम जिनकी फिल्मों में प्यार सिर्फ कहानी नहीं था बल्कि एक पूरा संसार था। सरसों के खेत, उड़ती हुई शिफॉन की साड़ियां, बारिश में भीगते प्रेमी, ट्रेन की खिड़की से दिखाई देता इंतजार और उन सब के बीच एक अधूरी सी मोहब्बत। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम याद करेंगे उस शख्सियत को जिसने भारतीय सिनेमा की रोमांटिक भाषा ही बदल दी। तो आज बात करेंगे हम यश चोपड़ा की।

साथियों, आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा की। 27 सितंबर 1932 लाहौर में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे शायद उस समय खुद भी नहीं मालूम था कि आने वाले वर्षों में वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना एक अलग अध्याय लिखने वाला है। यश चोपड़ा का बचपन साधारण था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। सिनेमा उन्हें आकर्षित करता था और यही आकर्षण उन्हें मुंबई तक ले आया। उन्होंने फिल्मी दुनिया में शुरुआत एक निर्देशक के रूप में की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। लेकिन यश चोपड़ा सिर्फ फिल्में बनाने वाले निर्देशक नहीं थे, वो भावनाओं को समझने वाले फिल्मकार थे। उन्हें पता था कि दर्शक सिर्फ कहानी नहीं देखता, वो कहानी में खुद को ढूंढता है। यश चोपड़ा अपने बड़े भाई बीआर चोपड़ा के साथ काम करते हुए फिल्म निर्माण की बारीकियां भी सीखी और आया वर्ष 1959। फिल्म थी धूल का फूल। ये उनकी निर्देशन यात्रा की महत्वपूर्ण शुरुआत थी। इसके बाद आई कई फिल्में जैसे धर्मपुत्र, वक्त, इत्तेफाक। हर फिल्म के साथ यश चोपड़ा की अपनी सिनेमाई पहचान मजबूत होती गई, खासकर वक्त, जिसने उन्हें एक बड़े फिल्मकार के रूप में

स्थापित किया जहां एक परिवार, समय का तूफान, बिछड़ना और फिर वर्षों बाद मिलना। यश चोपड़ा जानते थे कि बड़े पर्दे पर भावनाओं को कैसे प्रभावशाली बनाया जाता है।

साथियों, ये मधुर से गीत और संगीत आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन पसंद चैनल आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से। और आज आपकी दोस्त है आपके साथ तृप्ति जौहरी, और कार्यक्रम चल रहा है वही एक ही कलाकार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा जी के बारे में। तो साथियों, यश चोपड़ा की असली पहचान अभी पन्नी पाकी थी, वो पहचान जो आगे चलकर उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा रोमांटिक फिल्मकार बनाएगी। साल था 1973। यश चोपड़ा अपनी खुद की फिल्म निर्माण कंपनी की शुरुआत करने वाले थे, और शुरुआत की भी उन्होंने आई यशराज फिल्म्स, और इसी बैनर के तहत आई फिल्म दाग ए पोएम ऑफ

लव फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी जैसे कलाकार थे। यहीं से यश चोपड़ा की अपनी रचनात्मक दुनिया का विस्तार हुआ। उनकी फिल्म में प्रेम था, लेकिन सिर्फ प्रेम नहीं था, रिश्तों की जटिलता थी, समाज था, संघर्ष था और इंसान के भीतर चलने वाली भावनाएं थी। फिर आया साल 1976, फिल्म कभी कभी, अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर, राखी और अमिताभ की प्रेम कहानी। लेकिन इस फिल्म की सबसे खास बात थी शब्द। जी हाँ, शब्द। साहिर लुधियानवी की कविताएं और यश चोपड़ा की सिनेमाई दृष्टि, ऐसा लगा जैसे कविता स्क्रीन पर चल रही हो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर प्यार को कोई आवाज दी जाए तो शायद वो आवाज कुछ ऐसी ही होगी।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जान

0: जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
0: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा की। यश चोपड़ा की फिल्म में गीत कहानी से अलग नहीं होते थे, गीत कहानी का हिस्सा होते थे, और यही वजह थी कि उनके सिनेमा में संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता था, महसूस होता था। जी हाँ, यश चोपड़ा को सिर्फ रोमांस का फिल्मकार समझना उनकी प्रतिभा को छोटा करना होगा। उन्होंने गंभीर सामाजिक और एक्शन ड्रामा भी बनाए। अगर हम बात करें फिल्म दीवार की, जिसने अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन दौर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फिर आई फिल्म त्रिशूल, उसके बाद काला पत्थर, यानी एक तरफ प्रेम और भावनाएं तो दूसरी तरफ संघर्ष, व्यवस्था और इंसान की लड़ाई। यश चोपड़ा की यही विविधता उन्हें अलग बनाती थी। फिर आया वर्ष 1981, जब आई फिल्म सिलसिला। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा, एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम, विवाह, आकर्षण और सामाजिक मर्यादाओं के बीच इंसान की भावनाओं को दिखाया गया। फिल्म अपने समय से आगे की कहानी कही गई, और आज भी सिलसिला का नाम आते ही हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित रिश्तों और प्रेम कहानियों में इसकी चर्चा होती है। यह चोपड़ा की खासियत थी, वो रिश्तों को सिर्फ सही या गलत के खाचे में नहीं रखते थे, वो उनके भीतर छिपे दर्द और द्वंद को दिखाते भी थे।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा के बारे में। तो यश चोपड़ा ने एक से एक बढ़कर बेहतरीन फिल्में बनाई, जिसमें चांदनी, डर, दिल तो पागल है और वीर जारा जैसी फिल्में बनाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यश चोपड़ा की फिल्मों में ऐसा क्या था जो दशकों बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। शायद इसका जवाब उनकी फिल्मों की उस दुनिया में है, जहां प्रेम को सिर्फ संवादों में नहीं दृश्यों में भी दिखाया जाता था। उनकी फिल्मों में संगीत का विशेष स्थान था। गीत कहानी को आगे बढ़ाते थे, कपड़े भी कहानी का हिस्सा बन जाते थे, लोकेशन भी कहानी का हिस्सा बन जाती थी और सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं कहानी का केंद्र होती थी। यश चोपड़ा ने हिंदी फिल्मों के रोमांस को भारत की सीमाओं से निकलकर दुनिया के खूबसूरत लोकेशनों तक पहुंचाया। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियां हो, लंदन की सड़कें हो या भारत के पहाड़ और खेत, उनकी फिल्म में हर जगह एक खास रोमांटिक एहसास दिखाई देता था। यश चोपड़ा की सिनेमा की चर्चा संगीत के बिना अधूरी है। उन्होंने अलग अलग दौर के महान संगीतकारों और गीतकारों के साथ काम किया, जैसे साहिर लुधियानवी, हयाम शिवहरी, हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा की जोड़ी, जावेद अख्तर, आनंद बख्शी और बाद के दौर में कई अन्य प्रतिभाशाली संगीतकार और गीतकार। यश चोपड़ा समझते थे कि एक अच्छा गीत फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शक के साथ रह सकता है और यही हुआ भी। उनकी फिल्म के गीत आज भी रेडियो पर बजते हैं तो लोग उन्हें गुनगुनाते हैं और पुरानी यादें लौट आती हैं।

साथियों इसी के साथ कुछ हम नाम शामिल कर लेते हैं अपने कार्यक्रम में, जैसा कि प्रोग्राम का दस्तूर है कुछ हमारे साथी जुड़ जाते हैं कार्यक्रम में। तो रोजी डिकैस्ट्रो, ताज मोहम्मद, प्रकाश वर्मा, पीएस नाहवकर, पंकज शर्मा, सुदर्शन मुखी, दिग्दर्शन गौड़, संजय ढींगिया, राजकुमार डूडी और धर्मेंद्र छीपा और इनके साथ रवि कुमार, राहुल आर कुमार, हरजिंदर शिंदा, मसूर हसन, फरगुन यादव, फारूक अली खान, शेख जियाउर रहमान, के साथ उनके परिवार के सभी सदस्य, बाबू शिवा, प्रवीण हगोने, रवि कुमार, राहुल, और आपने भी मेल कई बार भेजी है तो आप सभी हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और आपने अपने संदेश हमें भेजे हैं कार्यक्रम से संबंध में। तो इसी तरह जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें। आनंद लीजिए इस गीत का।

साथियों, ये था आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आप थे अपनी दोस्त तृप्ति चौरी के साथ। तो आज के कार्यक्रम से दीजिए अपनी दोस्त तृप्ति चौरी को अनुमति, फिर किसी कार्यक्रम में आपसे होगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।

सामने आपको बता दें फिर कुछ देर बाद यानी 3:05 पर खबरें निश्चित की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 हम पेश करेंगे जनाब नफीस सिद्दीकी का तहरीर करता ड्रामा जिंदगी जिंदगी। 4 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। तो समय यह था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मिलियन में 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्रीडिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, कुछ ही लम्हों में खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की एक नई मिसाल पेश की और ये पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत मुस्तकबिल की दिफाई सलाहियतों में इजाफा कर रहा है जिनमें अगले 20 साल के दौरान जंगी साजो सामान की नौईयत पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। रूस ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और केपटाउन में गोलीबारी के दो अलग अलग वाकयात में 27 अफराद हलाक हो गए और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने स्क्वैश में चांदी के दो तमगे जीते हैं। अंकुश पंगाल ने मुक्केबाजी में एक तमगा यकीनी बना लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारतीय फौज की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की एक नई मिसाल पेश की है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कल 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक को 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहादुर भारतीय फौजियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिस अंदाज से कंट्रोल लाइन को पार किया था दुनिया भी इसे देखकर हैरान रह गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दाना हमलों की वजह से मुल्क ने तवील अरसे से जिस दुख और तकलीफ का सामना किया है सर्जिकल स्ट्राइक इसी तनाजुर में भारत की फैसला कुन जवाबी कार्रवाई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 9

रिकॉर्ड हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मर्दमशुमारी की तफसीलात खुद ही रजिस्टर करने की सहूलत बहुत ही सहल है और लोग अपने मोबाइल फोन से ही खुद के बारे में और अपने अरकान खानदान के बारे में जानकारी का इंदराज कर सकते हैं। जानकारी दाखिल करने के बाद लोगों को एक खसूसी आईडी मौसूल होगी जिसे वो मर्दमशुमारी करने वाले एन्यूमरेटर के आने पर शेयर कर सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि आज विश्व हिंदू परिषद के साबिक इंटरनेशनल वर्किंग सदर आजहानी अशोक सिंघल का 100वां यौम पैदाइश भी है। नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक अजीम शख्सियत करार दिया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सकाफत, माशरे और मुल्क के लिए वक्फ कर दी थी। वजीर आजम ने महात्मा गांधी की जयंती का भी जिक्र किया जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सफाई सुथराई जिंदगी के उन बहुत से रहनुमा उसूलों में से एक है जो बापू ने दिए थे। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क भर के करोड़ों नौजवान अफराद ने नशा मुक्त युवा अभियान के तहत मुनशियात और नशावर मादों के खिलाफ हाल ही में अहम अहद किया है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अजीम जश्न के साथ इस साल का आगाज किया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि महमूद गजनवी ने 1000 साल पहले पहली मरतबा 1026 में सोमनाथ मंदिर को मुनहदम कर दिया था। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सोमनाथ मंदिर समंदर के किनारे अपनी पूरी शान शौकत के साथ आज भी खड़ा है। अपने खिताब के आखिर में जनाब मोदी ने सामईन से जोर देकर कहा कि वो अपने बाई से तरगीब किस्से और कहानियां शेयर करते रहें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत खुद कफील और मुस्तकबिल के दिफाई इको निजाम तैयार करने की समत आगे बढ़ते हुए अगले 10-20-25 साल के दौरान जंगी साजो सामान की नौयत को मरोज़ खातिर रखते हुए अपनी सलाहियत बढ़ा रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस के जेर एहतमाम प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। जनाब राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि मुल्क को सिर्फ तकनीक दरामद करने पर ही तवज्जो मरकूज नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे दिफाई टेक्नोलॉजियां तैयार करने और उन्हें जदीद तर्ज पर ढालने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि जदीद तर्ज की जंग अब मुसल्ला अफवाज या हथियारों तक ही महदूद नहीं है बल्कि ये कसीर जहती बन गई है। दिफाई शोबे की तरक्की को उजागर करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल में मुल्क की दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है और कौमी सलामती को मुस्तहकम बनाने के ताल्लुक से उसकी हिकमत अमली में भी बड़ी तब्दीली आई है। फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने फौजी सलाहियत को बरकरार रखने और इसमें नई जान डालने की सलाहियत के ताल्लुक से दिफाई सामान की तैयारी में खुद किफालत से आगे बढ़कर दिफाई तैयारियों पर जोर दिया है। वो एक मीडिया हाउस के जेर एहतमाम डिफेंस कॉन्क्लेव में नई नौइयत की जंग के दौर में आत्मनिर्भरता के मौजू पर कलीदी खिताब कर रहे थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत दिए जाने के भारत के मुतालबे की भरपूर हिमायत की है। कल रात न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए जनाब लावरोफ ने कहा कि रूस एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमरीका की नुमाइंदगी को वसी करने के हक में है। उन्होंने कहा कि रूस भारत और ब्राजील की मुस्तकिल रुकनियत की उम्मीदवारी की हिमायत करता है। उन्होंने आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मजीद नशस्तें मुख्तस करने की वकालत की और भारत और ब्राजील की भरपूर हिमायत का इजहार किया। जनाब लावरोफ ने कहा कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में इस्लाहात के तहत मगरबी ममालिक के लिए मजीद नशस्तें मुख्तस नहीं की जानी चाहिए, खसूसन जर्मनी और जापान के लिए जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो अब अस्करियत पसंदी और माजी की ताकत और हैसियत की बहाली की कोशिशों की राह पर गामजन हैं। जनूबी अफ्रीका के 2 सबसे बड़े शहरों में गोलीबारी के अलग अलग वाकयात में कम से कम 27 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने आज बताया कि कल रात 17 लोग उस वक्त हलाक हो गए जब AK-47 राइफल और पिस्टल लिए हुए कुछ अफराद ने जोहान्सबर्ग के जनूब मगरब में वाक मेडेला शहर में एक बार में गोलीबारी शुरू कर दी। इस तरह के एक और वाकये में केपटाउन के नजदीक आज 10 लोग हलाक हो गए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस इस मामले में मुलव्वस बंदूक बरदार अफराद को तलाश कर रही है।
پاکستان میں شمال مغربی خیبر پختونخوا صوبے کے ڈیرہ

भूल का फूल इस फिल्म में नवाब सुन रहे थे आयशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में नगमा निगाती साहिल मौसीकार एन दत्ता। मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश जिंदगी और मौत फिल्म का नगमा महेंद्र कपूर की आवाज में मौसीकार है सी रामचंद्र।

0: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
1: जरा मैं भी सुनू।
0: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
1: तुमसे? नहीं,

वक्त होंगे नगमा आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में नगमा निकालते साहिर मौसीकार रवि। इसके साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। आज का प्रोग्राम खिराज अकीदत था अपने जमाने के मारूफ गुलकार महेंद्र कपूर के लिए उर्दू सर्विस की जानिब से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है इमाम नफीस सिद्दीकी का तहरीर का दर्दामा जिंदगी जिंदगी।

0: बाद मिस्टर जी थोड़ा सा ऊपर बैठ जाए, ये दवा पी ली आइए।
1: भगवान के लिए मुझे तंग ना करो, चले जाओ यहाँ से।
0: लेकिन आपका दवाई पीना जरूरी है मिस्टर जी, इसी दवा ने तो आपको जिंदगी के करीब कर दिया है।
1: जिंदगी जिंदगी कौन भी मानता है जिंदगी की।
0: आपने तो मरने की पूरी कोशिश की थी लेकिन मर नहीं पाए, शायद ईश्वर आपको जिंदा देखना चाहता है और कुछ लोग और भी।
1: दुनिया के चाहने से क्या होता है, वो तो मुझे जिंदा देखना नहीं चाहती, वो तो चाहती है मैं जिंदा भी रहूं और चलता कुड़ता रहूं।
0: लेकिन उन हमदर्द लोगों का भी तो आपकी जिंदगी पर कुछ हक है, जो बेहोशी की हालत में आपको यहाँ लाए थे।
1: वो कौन लोग थे मैं नहीं जानता, इस अजनबी शहर में मेरा कौन है यहाँ।
0: उनका नाम तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन एक दूसरे को ना जानते हुए भी कुछ लोग इंसानी रिश्तों को निभाते हैं। ऐसे तो सबको एक दिन मरना है, फिर भी इंसान दूसरे इंसान को मरता देख नहीं सकता, इसलिए मैं भी।
1: लोग तो सड़क के कुत्ते को भी मरता देखना नहीं चाहते, जिसके काटने से

0: वो पागल होकर मर जाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों की हमदर्दियाँ किसी इंसान को छत का साया और पेट पर रोटी नहीं दे सकती। बेवकूफ कहीं के, जरा सी नेकी करके जन्नत में जाना चाहते हैं। तुम इन लोगों की बात ना करो सिस्टर, ये मरते हुए जानवरों को दवा देते हैं और मरते हुए जानवरों की खाल खींच कर कारोबार भी करते हैं। धोखेबाज हैं सब।
1: ऐसा ही होता है मिस्टर जी, आप ठीक कहते हैं।
0: तो फिर मरने दीजिए मुझे, ये आबे हयात मुझे क्यों पिला रही हैं आप?
1: ये तो मैं भी नहीं जानती, पता नहीं क्यों जब आप दवा पी लेते हैं तो मुझे सुकून मिल जाता है। उस रात आपने दवा नहीं पी थी ना, तो मैं चैन से सो भी नहीं पाई।
0: मेरे दवा पीने से आपको शांति मिल जाती है?
1: जी, आप मुझे सुकून देना नहीं चाहते।
0: लाइए
1: प्लीज, ये ले, मेरे हाथ से पी लीजिए।
0: ठीक है, पिलाइए।
1: जी, ये लीजिए। थैंक यू मिस्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: ओहो हो, आ गई आप। बैठिए बैठिए बैठिए, शायद आज फिर किसी मरीज ने थका दिया होगा। मैं चाय लाता हूँ।
1: रात के 12 बज रहे हैं, अब चाय पियेंगे आप?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, चाय पीने के बहाने ही आपसे बातें कर लेंगे। आपके मरीजों ने तो
1: प्लीज राज, मैं बहुत थक गई हूँ।
0: नेचुरली भाई, थकन तो होगी ही, रोज 2-4 घंटे ओवर ड्यूटी करती हो और बिस्तर पर लेटे लेटे भी मरीजों के बारे में ही सोचती रहती हूँ।
1: राज, अब तो आप रोज ही तंस करने लगे हैं।
0: नहीं, मैं तंस नहीं कर रहा हूँ, आप ही मेरी ख्वाहिश को तंस समझ रही हैं। पिछले चंद सालों से आपके होते हुए भी मैं तनहा जी रहा हूँ। नींद आती तो है, मगर आपके इंतजार में जागता रहता हूँ।
1: मुझे एहसास है राज, मेरा भी आपके अलावा और कौन है।
0: फिर भी आप मरीजों के बारे में सोच सोच कर रातें गुजार देती हैं। सोती भी हो तो एक दूरी के साथ।
1: ऐसा ना कहो राज, मैं आपसे दूर नहीं, लेकिन थकन निढाल कर देती है, इसलिए
0: मुंह फेर कर सो जाती हो, और अक्सर सोते में भी मरीजों से बातें करती हो।
1: क्या करो राज, उनकी कहानियां ही अजीब होती है और उन्हीं में मैं खो जाती हूँ। हो सकता है सोते में भी वही ख्याल रेंगते रहते हो जहन में।
0: देखो दीपा, इस जमाने के हर शख्स की कहानी शेक्सपियर की ट्रेजेडी से कम नहीं। आप मसीहा भी नहीं जो उन्हें जिंदगी अता कर दें। आप आम इंसान हैं, उनके जख्मों पर सिर्फ मरहम रख सकती हैं, उनका दर्द नहीं पी सकती आप।
1: I believe so. I am extremely sorry, dear. अब नहीं सोचूंगी।
0: तो राज।
1: नहीं राज, बहुत थक गई हूँ, सो जाने दो। गुड नाइट।

0: अजय, मिस्टर अजय।
1: ओह, आप फिर आ गई सिस्टर।
0: ये बच्चों जैसी जिदें अच्छी नहीं लगती। अब आपको दवा पिलाने मुझे आधी रात को आना पड़ा।
1: आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है सिस्टर। अब मैं और जीना नहीं चाहता। यू गो सिस्टर एंड लेट मी डाई।
0: जीवन ईश्वर का वरदान है अजय साहब। जिस ईश्वर ने आपको जिंदगी अता की है उससे क्यों नाराज हैं आप?
1: जीवन ईश्वर का वरदान है होगा, मेरे लिए तो जलन कुढ़न और सुलगती हुई जिंदगी के अलावा कुछ और नहीं है। प्लीज आप जाइए, मुझे चैन से मरने दीजिए।
0: मैं ये नहीं पूछूंगी कि आप जीना क्यों नहीं चाहते।
1: और इसी सवाल के खौफ से मैं जीना नहीं चाहता। पता नहीं कौन लोग मुझे इस अस्पताल में लाकर डाल गए। मैंने सोचा था अजनबी शहर में मरना आसान होगा, लेकिन ये जीवन दान देने वाले न जाने कहां से आ जाते हैं।
0: जो लोग आपको यहाँ लाए थे
1: वो मेरे अपने नहीं थे। नेकी करके जन्नत पाने के हकदार बनना चाहते हैं वो, लेकिन वो मेरा दर्द क्या जाने। वो क्या जाने के जो दुनिया में दोजख की आग में चल रहा हो उसके लिए सुकून का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है खुदकुशी। देखो ना, मुझे यहाँ डालकर सब चले गए अपनी सुखी दुनिया में। कोई पूछने आया कि मैं जिंदा हूं या मर गया? किसने मेरा दर्द बांटा? ये पल तो पल के रिश्तेदार मेरा दर्द नहीं बांट सकते।
0: बगैर किसी सहारे के भी हम जिंदा रह सकते हैं। ऐसा भी होता है मिस्टर अजय कि हंसती गाती जिंदगी को जीवन के पहले ही मोड़ पर ऐसी ठोकर लगती है कि आगे बढ़ना दुश्वार हो जाता है। ऐसा मकाम भी आ जाता है कि जिंदगी और मौत के दरमियान एक कदम का फासला रह जाता है। और यूं भी होता है कि हम इस ठोकर को बर्दाश्त कर जाएं तो अगला मोड़ नई राहों को जन्म देता है। जिंदगी नया रास्ता पा जाती है और जिंदगी नाउम्मीदी के अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ जाती है। इस तरह नाउम्मीद जिंदगी में आरजुओं का सूरज फिर रोशन हो जाता है अजय।
1: लेकिन इस पुनर्जन्म की तकलीफ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
0: तकलीफ तो बच्चे को जन्म देते वक्त औरत को भी होती है, लेकिन वो इस खौफ से दूसरे बच्चे को जन्म देने से इनकार नहीं करती क्योंकि वो इसकी जिंदगी का मकसद है। मैं रात के देर से बुझी बुझी सी चिंगारी ढूंढकर अपनी सांसों से हवा देकर सुलगाना नहीं चाहती।
1: फिर क्या चाहती हैं आप?
0: आपको दवा पिलाकर सुकून से सोना चाहती हूँ, और जब तक आप नहीं पियेंगे मैं सो नहीं पाऊंगी।
1: अजीब बेबसी है, पिलाइए।
0: हाँ, ये लीजिए जी। थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ अजय साहब। अब एक बात और पूछना चाहती हूँ।
1: जी।
0: क्या रोज आधी रात को दवा पिलाने मुझे ही आना पड़ेगा?
1: आपको नहीं, मैं पी लूंगा।
0: प्रॉमिस?
1: यस प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ।
0: ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक, गुड नाइट मिस्टर अजय।
1: गुड नाइट। अजीब औरत है ये। मीनाक्षी।
2: राज साहब, सर उधर तो देखिए, जनाब की मिसेस तशरीफ ले आई।
3: हेलो मीनाक्षी। I'm so sorry, Meenu.
2: बस रहने दे अपनी एक्टिंग। अभी आने की क्या जरूरत थी?
3: अरे मेरी बात तो सुन।
2: क्या सुनूं? सारे मेहमान तुझे पूछ रहे थे और बेचारा राज तो जवाब देते देते एकदम नर्वस हो गया। कैसी कैसी बातें कर रहे थे सब तेरे बारे में। शायद आजकल कुछ रात से।
3: नहीं मीनाक्षी, ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों आज भी दोस्त हैं।
2: दोस्त हैं, पति पत्नी नहीं।
3: वो भी हैं। तू तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है।
2: फिर क्या बात थी जो तू राज के साथ नहीं आई?
3: डॉक्टर घोष ने इमरजेंसी कॉल पर बुलाया था। यू नो इट वॉज अ सीरियस केस।
2: होगा, तेरा तो यही एक खूबसूरत बहाना है। दीपा, कहने वालों की जबान तो नहीं बंद की जा सकती ना।
4: अरे मीनाक्षी, तुम भी क्या ये बेकार की बात लेकर बैठ गई? अरे भाई, होगा कोई जरूरी केस मुझसे और तुमसे भी ज्यादा जरूरी।
2: दीपा, तुम प्रोफेशन को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? तुम जानती हो ना कि मेरे पति भी सर्जन है। मैंने तो पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अगर मुझसे ताल्लुक रखना है तो बर्थडे पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, चाहे कितनी ही इमरजेंसी कॉल क्यों ना हो। और वो नहीं गए, मेहमानों को छोड़ने गए हैं, बस आते ही होंगे।
3: तुम्हारी बात ठीक है, मैं समझी थी कि 10-5 मिनट में कोई।
2: मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मरीजों की खातिर सोशल रिलेशन तोड़े नहीं जा सकते। राज तुमसे बहुत नाराज है।
4: अरे भाई, इनसे कौन नाराज हो सकता है मीनाक्षी। अरे भाई, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था, इसलिए इमरजेंसी कॉल पर जाना पड़ा। तुम्हारी बर्थडे और मेरा क्या है, इन्हें तो
2: बस करो राज, बस करो। चलो अंदर चलो, तुम ही दीपा के साथ खाना खा लो। भूखे बैठे हो ना, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। और दीपा, हाँ? कान पकड़, अब ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी।
3: अच्छा बाबा।
2: आओ ना राज, कम ऑन, चलो चलो।

0: मैं बहुत खुश हूं अजय, आज तुम ठीक होकर जा रही हो।
1: मैं तो मर ही चुका था सिस्टर, आपकी हमदर्दी ने मुझे जिंदगी अता कर दी।
0: ऐसा ना कहो, जिंदगी और मौत दोनों ऊपर वाले के अख्तियार में है। इंसान किसी को क्या जिंदगी दे सकता है? कैसा लग रहा है अब तुम्हें?
1: दोबारा जिंदगी पाने के बाद जब मैंने इस धरती पर कदम रखे तो ऐसा महसूस हुआ कि इस धरती पर मेरा भी हक है। मेरे पास शुक्रिया का एक लफ्ज है आपको देने के लिए, और अकीदत में डूबे आंसुओं के दो कतरे।
0: बहुत कुछ है ये मेरे लिए, तुम्हें नई जिंदगी मिली, ये एहसास ही मेरे लिए बहुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हंसते हंसते एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया है। तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब कोई मरीज मौत और जिंदगी की कश्मकश से निकलकर हंसता हुआ अपने घर लौटता है तो मुझे ऐसा लगता है जिसे खुदा के बेटे यीशु ने किसी बेजान को जिंदा कर दिया। क्या सोचने लगी तुम?
1: मैं सोच रहा था सिस्टर, काश वो मगरूर लड़की आपसे ये सीख पाती कि दूसरों के लिए किस तरह जिया जाता है।
0: कौन लड़की?
1: आशा, जिसकी बेवफाई ने मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया।
0: कभी कभी ऐसा भी होता है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते और जज्बाती होकर रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। यूं भी होता है अजय कि दो ईगोइस्ट एक दूसरे पर जान देने वाली शख्सियतें मामूली सी बात पर एक दूसरे के सामने सर झुकाने में तौहीन महसूस करती हैं। एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के बजाय आपस में टकरा जाती हैं, हालांकि दोनों के दरमियान समझौता कहीं करीब ही होता है। क्या ऐसा नहीं होता जी?
1: शायद ऐसा ही हुआ था हमारे साथ।
0: अजय, रेल की पटरियां एक महदूद दूरी पर हजारों मील साथ साथ चलती हैं, और फिर नई राहों नई मंजिलों को जन्म देने के लिए आपस में मिल जाती हैं। पटरियों का ये मिलन टकराव नहीं बल्कि नई दिशाओं को जन्म देने वाला समझौता है। ये समझौता तुम्हारे और आशा के दरमियान भी हो सकता था अगर दोनों ने सब्र से काम लिया होता। सोचो अजय, क्या तुम्हारी और आशा की जिदों के टकराव को बेवफाई का नाम दिया जा सकता है?
1: सिस्टर, हमारे साथ ऐसा ही हुआ था।
2: इसका मतलब है तुम्हारी खातिर मैं अपना हर शौक छोड़ दूं, गला घोट दूं कला का, मार डालू अपने अंदर के फनकार को? आखिर किस लिए करूं मैं ऐसा?
1: इसलिए कि सिर्फ तुम मेरी हो।
2: मैं कब इनकार करती हूं अजय कि मैं तुम्हारी नहीं हूं? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहती?
1: फिर वो स्टेज पर गैर मर्दों के साथ एक्टिंग क्यों करती हो?
2: अच्छा प्लीज,
1: मैं कोई पत्थर नहीं आशा कि तुम्हारे पानी में आग लगा देने वाले जज्बाती डायलॉग और गैर मर्दों के साथ मोहब्बत के एक्शन देखता रहूं। तुम्हें क्या पता कि हॉल में बैठे हुए मेरे दोस्त मुझ पर कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं। I can't tolerate, आशा।
2: तुम जज्बात में पागल होते जा रहे हो अजय। मैं कोई हरजाई नहीं हूँ जो हर मर्द की बाहों में झूल जाऊं। अजय, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, एक्टिंग को एक्टिंग ही समझो। एक्टिंग मीन्स एक्टिंग एंड नॉट रियलिटी।
1: आशा, तुम भी सुन लो, मैं ये इसके एक्टिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता।
2: ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि तुम मुझे बर्दाश्त करो।
1: ये तुम क्या कह रही हो आशा, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ।
2: बस करो अजय, आज मैंने तुम्हारे अंदर भी मर्द की पैदाइशी खुदगरजी देख ली।
1: तो आशा,
2: कितने खुदगरज होकर बात कर रहे हो तुम। मेरी फन की इतनी बेइज्जती। अजय, वो जमाना गुजर गया जब मर्द औरत को सिर्फ बिस्तर की गुड़िया समझकर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता था।
1: ओ आशा,
2: उसे घर की चार दीवारी में कैद करके उसको दासी बनाकर रहता था। धर्म और नारी संस्कार का वास्ता देकर उसकी आजादी को कैद कर लेता था।

0: अच्छा ही हुआ जो तुमने शादी से पहले अपना असल रूप दिखा दिया।
1: आशा,
0: स्टेज मेरा मंदिर है अजय, तुम्हारे लिए अय्याशी का अड्डा होगा। मैं स्टेज नहीं छोड़ सकती।
1: और मुझे छोड़ सकती हो?
0: तुमने ही मुझे छोड़ने का खूबसूरत बहाना बना लिया है। जो इंसान फनकार से उसका फन छीन ले उसका क्या भरोसा।
1: आशा,
0: मुझे अफसोस है कि मुद्दतों से तुम इसी आग में चल रहे हो। अच्छा ही हुआ जो तुम इजहार कर बैठे, वरना नफरत की ये चिंगारी किसी न किसी दिन मेरी खुशगवार जिंदगी को आग लगा देती। बहुत बड़ी दुनिया है अजय, ढूंढ लो अपने लिए कोई दासी।
1: तुम जवानी के जोश में ये भूल रही हो कि मैं तुम्हें दासी नहीं सती सावित्री बनाना चाहता हूँ, जो शोहर की खातिर मौत के देवता से भी टकरा जाती है।
0: मैं सावित्री बन सकती हूँ अजय, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा जिस्म नहीं दिल जीतना होगा। औरत की इज्जत करनी पड़ेगी, खुद को सत्यवान बनाना पड़ेगा, जो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ऋषि गौतम बनकर अहिल्या को बद्दुआ देकर पत्थर की मूर्ति बनाना चाहते हो।
1: आशा,
0: मैंने तुम्हें चीखने का हक नहीं दिया अजय, आई एडवाइस यू, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा।
2: और तुमने उसे जाने से रोका भी नहीं?
1: हाँ, रोका नहीं, मेरे गुरूर ने मुझे पत्थर बना दिया था। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि आशा मेरी जिंदगी भी अपने साथ ले गई है। मेरे खुदगर्जी ने मेरा सब्र करार छीन लिया। जागते जागते जब कभी आंखें बंद हो जाती तो इसकी आवाज चीख बनकर मुझे बेदार कर देती।
0: तुम औरत को औरत नहीं दासी देखना चाहते हो, ऋषि गौतम बनकर उसे पत्थर की मूर्ति बनाना चाहते हो।
1: उसे बहुत तलाश किया, मिली नहीं, वो शहर छोड़कर कहीं जा चुकी थी और इस मुसलसल अजियत से छुटकारा पाने के लिए मैं खुदकुशी करने इस अजनबी शहर में चला आया।
2: औरत के नाजुक एहसासात को बहुत कम मर्द समझ पाते हैं अजय
1: जी।
2: वो नहीं जानते कि जब प्यार की पहली कोपल इसकी मन की गहराइयों में फूटती है तो उसे लगता है जैसे कोई बच्चा उसके दिल के आंगन में किलकारियां मारता हुआ खिल रहा हो। अजय
1: जी,
2: आशा को तलाश करो
1: जी,
2: वो भी तुम्हारी तरह बेचैन होगी, वो कहीं ना कहीं मिली जाएगी। उसे माफी मांगो, तुम्हारा एहसास से मिदामत उन जख्मों को भर देगा जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देते। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक अजय।
1: थैंक यू मैडम, मैं उसे जरूर तलाश करूंगा।

0: राज, रात आपने खाना नहीं खाया?
1: खाया था होटल में।
0: होटल में?
1: होटल में मीनाक्षी आ गई थी।
0: लेकिन होटल का खाना अनहाइजीनिक होता है।
1: अरे होता है, पर इतना जहरीला भी नहीं कि मैं खाकर मर जाऊं।
0: ओ राज, कैसी बातें कर रहे हो तुम?
1: अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ दीपा, अच्छा है। अरे भाई, होटल का खाना खाकर बीमार पड़ जाऊं, शायद तीमारदारी के बहाने ही तुम मेरे करीब आ जाओ।
0: मैं कब दूर हूँ तुमसे राज, तुम्हारे अलावा मेरा है कौन?
1: अरे भाई, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा।
0: ऐसा ना कहो राज, मैं तो सिर्फ खिदमत ही करती हूँ।
1: अरे तू करती रहो खिदमत, मरने दो मुझे, अगर मैं

0: मरता हूं तो मरने दो।
1: बहुत गुस्से में हो आज।
0: हाँ, जब कभी मैं दर्द से चीखता हूं ना तो तुम प्यार का फहर रख देती हो, लेकिन ये भूल जाती हो कि मेरा जख्म हर मौसम में हरा रहता है। अरे मर चुका वो राज जो कभी इंसान था, अब तो उसकी हैसियत एक कुत्ते जैसी है।
1: राज,
0: जो तुम्हारे बनाए हुए खाने पर जिंदा है, लंच बॉक्स और फ्रिज में रखे हुए बासी खाने पर, जो तन्हाई में खुद पर भौंकता है और खुद ही को खाने के लिए दौड़ता है, तुम्हारे बनाए हुए शीश महल के शीशों में अपनी बिगड़ी हुई सूरत देखकर उसे मार डालने की कोशिश करता है और खूबसूरत शीशों से टकराकर जख्मी हो जाता है। हर रात जख्मी होता है और हर सुबह अपने बिखरे हुए वजूद के टुकड़ों को जमा करके अपने जख्मों पर खुद ही मरहम रख लेता है और इंसानों की तरह टोकरे पर चला जाता है।
1: भगवान के लिए मेरी बात तो सुनो राज।
0: भगवान भगवान भगवान, अरे होगा किसी का भगवान वो, जहाँ तुम जैसे जीवन दान देने वाले मसीहा हो वहां से भगवान भी चला जाता है। जाओ जाओ जाओ, अरे तुम जाओ अपनी ड्यूटी पर, मैं अपनी तन्हाई में जी लूंगा।
1: नहीं राज, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल लूंगी।
0: नहीं नहीं दीपा, अब मैं नहीं चाहूंगा कि तुम खुद को मेरे लिए बदल दो। अरे तुम तो खुशबू हो, खूब महको, ऐसा नफस हो मुर्दों के जिसमें रूप को मैं अपनी साथ में तुम्हें महदूद करना नहीं चाहता। हर अजीम इंसान ला महदूद होता है, तुम भी।
1: राज, क्या आज तुम्हारे अंदर भी मर्द की पैदाइशी खुदगर्जी जाग उठी है? पागलपन की हद तक आ गए हो आज तुम। कैसे मर्द हो जो अपने नफस पर काबू नहीं रख सकते?
0: दीपा, मुझे ताना दे रही हो? मुझे? अरे दीपा, मैं मर्द हूँ, मर्द। बोलो बोलो, किसको दिखाऊं अपनी मर्दानगी? बोलो, अरे उन मरीजों को जो तुम्हारी तीमारदारी की बदौलत जिंदा होकर तुमसे हंस हंस कर बातें करते हैं।
1: मुझसे?
0: हाँ, तुमसे। अरे दीपा, एक दिन तुम्हारी याद का दौरा पड़ा तो मैं अस्पताल चला गया और तुम मरीज से, अरे उस नौजवान आदमी से बहुत देर तक बातें करती रही। अरे क्या मरीजों का दिल जोड़ना भी तुम्हारी ड्यूटी में शामिल है?
1: हाँ, मेरी ड्यूटी भी लामहदूद है राज, मेरी तरह। तुम्हें उसी वक्त गला घोट देना चाहिए था।
0: किसका?
1: मेरा, क्योंकि मैं गैर मर्द से बातें कर रही थी।
0: मैं ऐसा नहीं कर सकता था दीपा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी चाहत हो तुम।
1: राज, तो फिर अपनी खुदपरस्ती का गला घोट दो जो इंसानियत को कत्ल करके इंसान को खुदगरज बना देती है।
0: अरे दीपा, जिसने अपना वजूद तुम्हारी जात में बिठा दिया, तुम उसे खुदगर्ज कहती हो? और सच पूछो तो खुदपरस्त मैं नहीं, तुम हो। तुम अपनी मसीहाई की वजह से मुझे भूल बैठी हो।
1: तो फिर मुझे तरह छोड़ दो, मैं भी मरीजों के दर्द का हिस्सा बन जाऊंगी। जहां समझौता मुमकिन है वहां जिदों से काम नहीं चलता, और तुम समझौता भी नहीं करना चाहते। तुम्हें यह भी गवारा नहीं कि मैं नौकरी छोड़कर तुम्हारे घर की चार दीवारी में जिंदा रहूं, सिर्फ तुम्हारी परस्तिश करूं, तुम्हें ही पूजूं।
0: दीपा, दीपा, दीपा, मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता।
1: तो फिर एक ड्यूटीफुल औरत को नेकी की राह से ना भटकाओ। जिस इंसानियत को जिंदा रखने के नारे अपनी जुबान से लगाते हो उसे सच कर दिखाओ। दुखियों की आहों में निजात का रास्ता ढूंढो, उनके दर्द को खुशी से बांट लो।
0: दीपा दीपा दीपा, ये पैगंबरों और देवताओं का काम मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मुझसे ये सब। मैं इंसान हूं दीपा, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं हूं मैं। मैं लक्ष्मण रेखा खींचकर तुम्हारी आजादी को कैद करना नहीं चाहता, लेकिन अपनी बेचैनी की वजह भी नहीं जानता मैं।
1: राज, जब जज्बात के तूफान से बचकर बाहर आ जाओगे तो वजह भी ढूंढ लोगे। बहुत ही करीब कहीं आसपास सुकून की राह भी मिल जाएगी।
0: दीपा, आपसे मिलना चाहते हैं।

0: मिस्टर अजय और मिसेस अजय।
1: अजय तुम राज, इन्हीं से बातें कर रही थी मैं।
0: दीदी
1: अब अरे ये क्या कर रहे हो जी? मैं कोई देवी हूँ जो मेरे चरणों में सर झुका रहे हो?
2: जीवन दान देने वाली बहन भी देवी का रूप होती है दीदी, यही है आशा।
1: नमस्ते दीदी। नमस्ते, खुश रहो। अरे कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों को मुस्कुराता देखकर। देखो राज, कल तक ये दोनों एक दूसरे से नाराज थे
2: जी।
1: और इस बेवकूफ अजय ने तो खुदकुशी की कोशिश भी की थी। अब तुम्हें यकीन आया, हर मसले का हल भी कहीं आसपास ही होता है।
2: आपने नसीहत की थी दीदी, मैं आशा को तलाश करने निकल गया और जब ये मुझे मिल गई तो माफी मांगने का मौका भी न दिया। मुझे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी।
1: बैठो, बैठ जाओ। उफ, मैं बहुत खुश हूँ आज। राज, मेरी कहानियों के मौत और जिंदगी के दरमियान रोते हंसते यही किरदार है। राज, इन्हीं की कहानियां मैं तुम्हें सुनाकर बोर करती थी।
3: और इन्हीं की कहानियां सुनकर मैं अंदर ही अंदर चलता रहता था। सोचता था कि जिंदगी के कितने कीमती लम्हात हम दूसरों की बातों में बर्बाद कर रहे हैं।
1: अब क्या सोचते हैं आप?
3: अब मुझे अपनी कुड़न की वजह मिल गई है। दूसरों का दर्द दूर करना ही सबसे बड़ी खुशी है। दीपा, दीपा तुम माँ मरियम भी हो और मसीहा, सीता भी हो और सावित्री भी। अरे, अरे कितने कितने रूप हैं औरत के, ये मैंने आज ही जाना।
1: भगवान के लिए मुझे इतने बड़े बड़े नाम ना दो, मैं तो इन अजीम हस्तियों के पांव की खाक भी नहीं।
3: नहीं दीपा नहीं, तुम्हारे किरदार की अजमत का आज मैं कायल हो गया। अरे मेरे अंदर का खुद गरज और खुद परस्त इंसान मर चुका है।
1: राज,
3: ठीक बात।

काफी रंग आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। मौसीकार थे कल्याण जी आनंद जी। और लिए सुनी प्रोग्राम की अगली पेशकश शो फिल्म का नगमा मन्ना डे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में आप सुन रहे थे गीत फिल्म का नगमा। और स्वामी लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश महेंद्र कपूर की आवाज में मदन मोहन की मौसीकी से जय नगमा फिल्म है जब याद किसी की आती है।

0: मुकाबले में अना हसीन ने भी चांदी का तमगा हासिल किया। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने के भारत की पॉलिसी की नई मिसाल पेश की और ये पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीरे दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत मुस्तकबिल की दिफाई सलाहियतों में इजाफा कर रहा है, जिनमें अगले 20 साल के दौरान जंगी साजो सामान की नौईयत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। रूस ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और केपटाउन में गोलीबारी के दो अलग अलग वाकयात में 27 अफराद हलाक हो गए। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने स्क्वैश में चांदी के दो तमगे जीते हैं। तेज तीरंदाजी में मर्दों और खवातीन की कंपाउंड टीमें रिकर्व के साथ साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: इंडिया में भी 1000 71 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सभी शाम के 5 बजे चाहते हैं यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती है। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नेट पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन की यह पंजाबी सेवा है। शाम के 5 बजे ने हम साड़ी दूजी सभा शुरू होंगी है। सभा का आगाज कर रहे हैं शेरे जबान सराइकी के प्रोग्राम जोक माही के नाल।

0: ऑल इंडिया रेडियो दी विदेश प्रसारण सेवा दा सिराई की प्रोग्राम है। मैं संजय पाहुजा आप सबको सलाम नमस्ते सत श्री अकाल करेंगा। आज असा हाजिर हैं एक वार्ता दे नाल G20 के अवसर पर वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। वार्ताकार हैं डॉक्टर चंद्र भानु आर्य। इसके बाद असा सुनसु सिराई की गीत संगीत। आओ पेश है वार्ता।
1: भारत G20 राष्ट्र समूह सम्मेलन 1 दिसंबर 2022 तो 3 नवंबर 2023 सारा उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम अर्थात एक धरती एक परिवार एक भविष्य। ये चार वाक्य जेड़े मैं तुम्हारे सामने बोलियन हिन्दी दे आखरी दो हिस्से एक वैदिक मंत्र दे दो शब्द वसुधैव कुटुंबकम ये धरती एक परिवार है ते ही मंत्र दी व्याख्या दे त्रय शब्द धरती परिवार ते भविष्य। ये सारी आज दी वार्ता दा असली विषय है। पहले ऐसा समझो कि G20 दा मतलब क्या है। जी माने ग्रुप, 20 माने वी देशे दा ग्रुप, थी गया G21। ही ग्रुप इच 19 देश हैं अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कनाडा चीन फ्रांस जर्मनी भारत इंडोनेशिया इटली जापान कोरिया मेक्सिको रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका तुर्की यूनाइटेड किंगडम ते संयुक्त राज्य अमरीका। हिन्ने 19 देशों के अलावा वीवा सदस्य है यूरोपीय संघ। ग्रुप वी दे हिन्ने सदस्य देशों के वित्त मंत्री ते सेंट्रल बैंकिंग दे गवर्नर अपने अपने देश के राष्ट्र नेता उच्चे राष्ट्रपति होवन प्रधानमंत्री होवन चांसलर राजा यूरोपीय परिषद अध्यक्ष कोई होवे। हिन्ने दे निर्देश के अनुसार हर साल हिट चुने हुए देश विच अलग अलग विचार समस्या दृष्टिकोण दे संदर्भ विच कई कई सभा सम्मेलन विचार गोष्ठी आयोजित करें दिन ते सर्वसमावेशी मतलब सबदे सांझे सबको मंजूर समाधान तक पहुंचने की कोशिश करें दिन। हिन्ने देश

I'm gonna go to bed.

0: से चाबी होंगी,
1: है ना पापा? सी के वाई सी आई डी बैंक तो आदि के वाई सी वेरवा सी के वाई सी रजिस्टर विच अपलोड करता है अते तुहानू मिलदी है 14 अंका दी सी के वाई सी आई डी जो हर आर्थिक लेन देन विच लागू होंदी है। इत्था के वाई सी अपडेट नाल बाकी बैंका विच भी अपडेट हो जांदी है।
2: वाह भाई वाह, आरबीआई कहंदा है
1: के वाई सी सुरक्षित बैंकिंग वाल पहला कदम।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

0: Santo Sao Langa,
1: आ जाओ लांगा पांच साहब लांगा।
0: आगे जी। हाँ जी, जय हिंद महाराज।
1: जय हिंद जी, जय हिंद पांच साहब जी। आया नू
0: होर सुनाओ, ठीक ठाक हो?
1: बहुत वधिया।
0: किथे अजकल तोरे फेरे हो रहे ने, सैर सपाटे हो रहे ने?
1: बहुत जरूरी है। देखो अपना जे तुसी घरों बाहर निकलोगे ते दुनिया जेड़ी हैगी भांत भांत दी तुहानू देखण नू मिलदी है।
0: बिलकुल मिलदी है, भांत भांत दी बोली सुनण नू मिलदी है, पहरावा देखण नू मिलदा है,
1: खान पान मिलदा है,
0: खान पान
1: लोग मिलदे हैगे, सभ्याचार मिलदा है।
0: बिलकुल सही कहा।
1: ते जेड़ा अपने जेड़ा कहने सभ्याचार दा आदान प्रदान भी हुंदा हैगा जी। कुछ चीजां आपां उहनां नू दे के आउने, कुछ उहनां तों लै आउने।
0: असीं सिखदे भी आ नवीआं चीजां, बड़ा वधिया चीज आ।
1: सो इस करके घुमणा फिरना जेड़ा है ये भी अपने आप च एक कला है जी।
0: बिलकुल सही कहा
1: जी।
0: साडे इधरों लोग जानते ने भी माड़ा जिहा मौसम तत्ता होया नहीं ते चलो पहाड़ा च
1: तुर पैंदे आ,
0: है ना। ते ए चंगी गल भी है, जाना आना चाहिदा, है ना।
1: बहुत वधिया जी,
0: उथे जाके थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना
1: चाहिदा जी। बिलकुल बिलकुल जी, मैं कहना पंच साहब भी वधिया छाप छड के आई।
0: तुहानू
1: लोग याद कर ना कि आपां कोई माड़ा जिहड़ा आपां कहने इंप्रेशन उते
0: पाके आईए। बिहार ओ जिहा रखिए भी लोकी कहण कि यार पंजाबी आए सी,
1: आए सी, आए सी।
0: इह ना कहण कि आए सी पंजाबी।
1: हुण देखो ना पंच साहब कि घुमण फिरन दे कई बहाने हो जांदे हैगे।
0: बिलकुल,
1: कोई लोग अपने माता दे दर्शनां वल चले जांदे भी चलो इस बहाने माता दे दर्शन भी कर आए,
0: नाले
1: सैर भी हो गई, कुछ खरीददार भी हो गई है जी। ते इहदे नाल देखो कई कारोबार भी चलदे आ।
0: हां,
1: इह किन्नी अच्छी खूबसूरत गल हैगी है कि तुसी जाने हो, किथे रहने हो, किथे खाने हो, कुछ चीज लैने हो ते उहदा परिवार भी तुरदा है जी इहदे नाल।
0: हां,
1: खर्चा तुरदा है।
0: बिलकुल तुरदा। वैसे असीं तां पंजाबी खाण पीण दे शौकीन ज्यादा हुंदे ना, ते असीं बाहर जाके ते इही लभदे भी नवीं चीज केड़ी असीं सिख के आईए इथों जिहड़ी इहनां दे कोल खास है, फिर इथे आके आपां बनाईए, है ना, ते खाईए ते खवाईए।
1: सो इस करके हुण देखो कि कई लोग ये भी कोशिश करते है भी घरां दे विच कोई इस तरीके का समान या कमरा बना लो तो आमदन का जरिया बन सकता जी।
0: बिलकुल,
1: बंदा कोई बाहरों आया घूमन फिरन आया।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दिते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दिते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। जावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: अच्छा पंसर, हुण जिहड़ा समां आया कि सर्दियां वास्ते जिहड़ियां सब्जियां बिजाई करनियां
2: ने, जी जी,
1: ते मटरां दी काश्त बारे ना डॉक्टर हीरा सिंह होरां ने कुछ जानकारी दित्ती है।
2: ठीक है जी,
1: लो सुनो फिर।
2: जी किसान वीरो, अज असी गल करांगे मटरां दी कास्त बारे। मटर ठंडे मौसम दी मुख फसल है। ये पंजाब विच इक अहम सब्जी दी फसल है, जो कि तकरीबन 1,10,000 एकड़ विच उगाई जांदी है। ते इस तो असी 4,60,000 टन दे करीब मटरां दा उत्पादन करदे हां। इस नूं 20-25 डिग्री तापमान दी जरूरत हुंदी है। जेकर इस ਸਾਡੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਗਣ ਸਾਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ

0: ਕਾਰਬਰਫੈਕਸ ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਛਿੜਕਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਕੰਨ ਤੇ। ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਖੇੜਾ ਤੇ ਜੜਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਚੀ ਦਾ ਗਲਣਾ। ਉਖੇੜਾ ਰੋਗ ਤੇ ਜੜਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਚੀ ਦਾ ਗਲਣਾ। ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਜੜਾਂ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਚੀ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਲਾਭ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब तक भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रम्मी कल्चर ऐप और अन्य गेमिंग ऐप से जुड़े मामलों में लगभग 442 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। निदेशालय ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में सावधि जमा, व्यावसायिक दुकानें, एक विला और कई आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 4 रजत समेत कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3

0: हजार मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विनी शंकर ने डेकाथॉनल में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल करके कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोता लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: अश्वनी भाई
1: जी, नग्ना भाई,
0: भाई देखिए कृषि से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं और जो कृषि से जुड़ी संस्थाएं हैं किस प्रकार से वो योगदान दे रही हैं उनका किसानों के लिए काफी महत्व है। और आज हम भाइयों को सबसे पहले सुनवा रहे हैं CWC यानी केंद्रीय भंडारण निगम सेंट्रल वेलफेयर कॉरपोरेशन की जो 64वीं वार्षिक बैठक हुई है उस पर एक रेडियो रिपोर्ट, तो आइए सुनते हैं।
2: वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन यानी केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक रत्न उपक्रम है जो उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निगम समय समय पर किसानों के हित के लिए कई तरह के प्रशिक्षण और महिलाओं को जागरूक करने के लिए काम करता रहता है, साथ ही साथ कृषि उत्पादों के रखरखाव में अहम भूमिका निभा रहा है। विगत दिनांक 25 सितंबर 2026 को NCUI के सभागार में केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा अपने अंशधारियों के साथ 64वीं वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल, CWC के प्रबंध निदेशक श्री संतोष सिन्हा, निगम के निदेशक मंडल के सभी सदस्य श्री विपिन भाई एन पटेल के साथ साथ निगम के सभी अधिकारियों कर्मचारियों सहित देश भर से आए सहकार बंधुओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके की गई। सबसे पहले सभी का स्वागत करते हुए केंद्रीय भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक श्री संतोष सिन्हा ने निगम की साल भर की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और वार्षिक एजेंडा प्रस्तुत किया।
3: आप सभी को नमस्कार। ये अवसर हमें न केवल वर्ष के दौरान अपने वित्तीय और परिचालन निष्पादन की समीक्षा करने बल्कि हमने जो प्रगति की है उसका आकलन करने, अपनी सामूहिक उपलब्धियों को स्वीकार करने और आगे की राह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करने का अवसर प्रदान करती है। आगे की दिशा में बढ़ते हुए हमारा ध्यान अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ करने, परिचालन उत्कृष्टता बढ़ाने, नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा अपने सभी स्टेक होल्डर्स के लिए सतत मूल्य सृजित करना उस पर केंद्रित है। निगम बुनियादी मानव शक्ति पर निर्भर गोदामों से विकसित होकर प्रौद्योगिकी सक्षम, समेकित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम में परिवर्तित हो रहा है। निगम ने अब तक का सर्वाधिक टर्नओवर और लाभ अर्जित किया है तथा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का उल्लेखनीय विस्तार करते हुए 164.15 लाख मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता के साथ 986 गोदामों का संचालन किया है। निगम ने बिहार, असम और महाराष्ट्र राज्यों में निजी पक्षों को प्रोक्योरमेंट सेवाएं प्रदान की हैं। इसके अंतर्गत निजी एजेंसियों की ओर से किसानों से मक्का

0: निरंतर सेवाएं प्रदान करता रहेगा। आगामी वित्त वर्ष में प्रवेश करते हुए हम नए अवसरों का लाभ उठाने और एक विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स पार्टनर के रूप में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए तैयार हैं। हम मिलकर अपने सभी स्टेक होल्डर्स के लिए निरंतर मूल्य सृजित करते रहेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।
1: इस अवसर पर श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में केंद्रीय भंडारण निगम की उपलब्धियों और गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा,
2: भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम नाफेड, भारतीय कपास निगम और सबसे महत्वपूर्ण हमारे किसान समुदाय सहित हमारे प्रमुख डिपॉजिटर्स के प्रति भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने सम्मानित बोर्ड सदस्यों के रणनीतिक मार्गदर्शन के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपनी बेहतरीन मैनेजमेंट टीम और कर्मचारियों का भी आभारी हूं, जिनकी निष्ठा और समर्पण हमारी सफलता का आधार है। मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा भारत सरकार का भी अनेक निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता और साझा उद्देश्य के माध्यम से हमने एक सुदृढ़ और भविष्य के लिए तैयार उद्यम का निर्माण किया है, जो निरंतर विकास करने और स्थायी मूल्य सृजित करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इस उल्लेखनीय यात्रा में एक साथ आगे बढ़ते हुए आपके निरंतर सहयोग, विश्वास और प्रतिबद्धता के लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।
1: इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्य श्री बिपिन भाई एन पटेल ने सहकारिता और आत्मनिर्भर भारत के लिए सहकारिता के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा,
3: सभागार में उपस्थित सभी सहकारी बंधु, बघेल साहब की सारी बातों से मैं अपने को जोड़ता। एक बात उन्होंने अधिकार कह दी, ये अधिकार उनको नहीं था, रुपये बढ़ाने वाली बात, ये तो हम लोगों के बीच में अभी ईश्वर की कृपा से आदरणीय राम भट्ट जी हैं, इनका आशीर्वाद हमको सबको मिलता है, ये काम उन्हीं के जिम्मे है और MD साहब इन्हीं की मानते भी है। बघेल साहब आप कितना भी कहो, जो राम भट्ट जी कहेंगे आदरणीय MD साहब वही करेंगे। मुझे आपके ज्यादा कानून काजा नहीं मालूम, लेकिन मैं सहकारिता के क्षेत्र से आता हूं, ये बात बघेल साहब की बिल्कुल सही है, इसको आप लोग अन्यथा मान लें कि आपके शेयरधारक तो हजारों करोड़ के होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे अंशधारक ही आपकी AGM की शोभा बढ़ाते हैं, तभी आपकी AGM कामयाब होगी। बैंक क्षेत्र से केवल बड़ी सारी जी है, ये सौभाग्य हमारा कि हमारे सहकारिता क्षेत्र के ही है, वरना ये पद भी किसी दूसरे के पास होता, अफसर के पास, वो मंच में नहीं आता। इसी क्रम में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, नए मेंबरशिप की समितियों को लेनी चाहिए आपको। बहुत तमाम हम जैसे कोऑपरेटर हैं जो आपके AGM आने के लिए चिरौनी करते दूरी सरकारी संस्थाओं से कि भैया आप हमारा प्रस्ताव भेज दो, न गिफ्ट के लिए आते हैं न उसके लिए आते, आते सिर्फ इसलिए पूरे देश के सरकारी लोगों से मुलाकात हो जाती है, आपको दर्शन हो जाते हैं। तो हमारा आग्रह यह है कि अगर आपको ठीक लगे तो मेंबरशिप खोलनी चाहिए, नई समितियों की मेंबरशिप और लेनी चाहिए और आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी।
1: इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्य श्री मनीष सहानी ने जानकारी देते हुए कहा,
4: सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की 64वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में मंच पर मंचासीन संस्था के अध्यक्ष एवं निदेशकगण, संचालक मंडल के सदस्यगण और जो भी इस संस्था के शेयर होल्डर हैं, इसमें से तमाम लोग मुझे इस कॉपरेटिव में सिखाने वाले और कोऑपरेटिव में मुझे बढ़ाने वाले, कोऑपरेटिव के अंदर मेरी कैसे उपस्थिति रहे उसमें मुझे सहभागी बनाने वाले ऐसे तमाम लोग यहां बैठे हैं। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे यहां प्रतिनिधि भेजा और उसके कारण मैं यहां पर संचालक बन पाया। सबसे मैं अपने आप को संबद्ध करते हुए केवल इतनी एक बात कहूंगा कि बड़े पैमाने पर माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा देश के अंदर एक बड़ा मूवमेंट सहकारिता का खड़ा किया जा रहा है और सहकारिता को हर क्षेत्र में प्रभावी तरीके से खड़ा करने का काम माननीय मंत्री अमित शाह जी ने किया है और ये पक्ष हो या विपक्ष हो सबको ये स्वीकार करना पड़ेगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में काम ना हो रहा हो, नई सहकारी समितियों के बनाने से लेकर के नए गोदाम से बनाने से लेकर के मार्केट के अंदर सहकारिता

0: का कैसे सामान बिके, कैसे उसकी खरीद हो, कैसे उसकी बिक्री हो और कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, इस सारे काम में माननीय अमित शाह जी ने एक अद्वितीय काम जिसे कहते हैं सहकारिता क्षेत्र में किया, क्योंकि हम पहले सहकारिता के क्षेत्र में बहुत छोटे स्तर पर काम कर रहे थे। अभी हम देश के एक बड़े बोर्ड में संघानी साथ डायरेक्टर बने हैं वहां, तो ये सब हमारे आप सबके जो जितना हम लोग ने देखा है कोऑपरेटिव को, पहले उदय शंकर अवस्थी जी हम लोग कोऑपरेटिव के अंदर उनको भी एक भीष्मितामह मानते थे, उन्होंने भी एक बड़ी संस्था खड़ी की इफको की, और हम सबका बड़ा सहयोग बड़ा प्यार उनका रहता था। ऐसे सभी बोर्डों में जहां लोग आज बैठे हैं जो आए हैं उन सबका भी बड़ा सहयोग प्यार है। मैं इतनी ही बात कहूंगा कि सभी के साथ हम CWC को भी एक कारपोरेशन के साथ में सहकारिता से जुड़ी संस्था मानते हैं, इसलिए कुछ सहकारी नई संस्थाएं जो बन रही हैं ऐसी प्रयास होना चाहिए कि उनको भी अपने साथ जोड़ें और उनकी कुछ सदस्यता का कुछ ऐसा उपक्रम करें। कुछ जो डेलीगेट्स के लिए जो समितियां हट गई हैं, जैसे बैंक्स को हमने हटा दिया है, तो उनके शेयर होल्डर्स भी बाकी दूसरी संस्थाएं हो सकें, अच्छे लोग आपके पास आएंगे, अच्छे सुझाव देंगे। निश्चित रूप से आप ये मान के लिए कि हम लोग तो कभी CWC का बहुत पहले का एक समय याद करते हैं तो आज में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कभी यहां CWC की जो स्थिति थी उसमें आज जमीन आसमान का अंतर है। उसके लिए इस समय का प्रबंधक समिति जो है और इससे पहले वाली प्रबंध समिति, इन सारे लोगों का और संतोष जी ने बहुत प्रयास किया है, और मेरे को मेरा जितना अभी तक का इनका सानिध्य हुआ है, जितनी बातचीत हुई है एक बोर्ड बैठक के, लेकिन इनकी बहुत अप्रोच है ऐसी। और FCI के चेयरमैन साहब हमारे साथ जो वर्तमान में चेयरमैन है हमारे भी, उनका भी बड़ा सोच ऊंची है और बड़ा अच्छा सहयोग करने को तैयार है वो, और उनकी बातचीत भी ऐसी है कि संस्था और आगे बढ़े और इतने बड़े पैमाने पर ये जो हम लाभ में हैं, निश्चित रूप से प्रबंधन अच्छा है तभी कोई संस्था लाभ में आती है। मैं सारे प्रबंधन को धन्यवाद भी करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि जितने समय आपके साथ रहूंगा कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करूंगा। मेरी तरफ से कहीं कोई त्रुटि हो तो आप सब मुझसे बड़े हैं, एक बार मुझे अगर आप सुझाव देंगे टोकेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे आपको कहीं ऐसा स्थिति आएगी, मैं आपके पूर्ण सहयोग से ही काम करूंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा। जय हिंद, जय सहकारिता।
1: निगम की निदेशक मानव संसाधन सुश्री संगीता राम रखियानी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा,
2: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंध निदेशक महोदय, निदेशक मंडल के सभी सम्मानित सदस्य, विशिष्ट शेयरधारक, अधिकारीगण तथा देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का निगम की 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर आप सभी की उपस्थिति एवं सहयोग उत्साहजनक है। यहाँ प्रस्तुत किए गए आंकड़े तथा विवरण हमारे संस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाते हैं, जिसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हम आदरणीय अध्यक्ष महोदय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा गतिशील दृष्टिकोण ने निगम की प्रगति के लिए एक सशक्त आधार दिया है। आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कुशल नेतृत्व तथा कार्यनीतिक दिशा निर्देशन ने निगम की प्रगति एवं विस्तार को एक नई मजबूती प्रदान की है, जो इस संगठन को सतत विकास की ओर ले जा रही है। मैं निदेशक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके विवेकपूर्ण मार्गदर्शन ने निगम को बदलते औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को ढालने एवं परिचालन उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम जिन उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं, यह उनके निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोगजनक दृष्टिकोण के कारण ही संभव हो पाया है। मैं हमारे सभी हितधारकों, अंशधारकों, सहयोगी एजेंसियों तथा सहकारी समितियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। आपका अटूट विश्वास, सहयोग एवं समर्थन हमारी निरंतर वृद्धि एवं सफलता का अभिन्न अंग है। प्रबंधन की ओर से मैं हितधारकों को आश्वस्त करती हूँ कि निगम परिवार आगे भी सफलता के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं इस अवसर पर निगम के समग्र कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने में हमारे सभी व्यावसायिक भागीदारों, सहयोगियों एवं सम्मानित ग्राहकों द्वारा

0: द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए धन्यवाद करती हूँ। निगम परिवार के सभी कर्मचारियों एवं सदस्यों का अपार समर्पण एवं अथक प्रयास भी सराहनीय है। मैसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स के सामिधिक लेखा परीक्षक ऑडिटर श्री आशु गोयल जी का भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं गत वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर चुके अध्यक्ष महोदय श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी एवं निदेशक गणों श्री सिद्धार्थ शंभू जी, श्री रवि रंजन जी तथा श्री डीएस राठौड़ जी द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग ने हमारी यात्रा को नई दिशा प्रदान करते हुए उस पर स्थायी एवं सकारात्मक प्रभाव डाला है। अंततः मैं आज यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ तथा निगम की प्रगति के लिए अथक प्रयास जारी रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को दोहराती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: इसी के साथ केंद्रीय भंडारण निगम के अंशधारियों की 64वीं वार्षिक साधारण बैठक पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। स्वर शशि कपूर, सहयोग दिनेश कुमार, संयोजक शिव नंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।
2: तो अश्वनी भाई
3: जी,
2: अभी हमारे भाई एक रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे 64वीं वार्षिक बैठक के ऊपर जो केंद्रीय भंडारण निगम की अभी संपन्न हुई थी। तो ये रेडियो रिपोर्ट भाइयों ने सुनी और हम जानते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं जब खेती किसानी का काम करते हैं तो उनको पैसे की जरूरत समय समय पर पड़ती है, क्योंकि कृषि में समय निकल गया तो फिर हमारी खेती का काम खराब हो जाता है। उनको पैसे ना किसी से उधार लेना पड़े, इसके लिए भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई हुई है, जिससे कि भाई कार्ड बनवा करके बैंक से पैसे लेकर अपने संसाधन जुटा सकते हैं। जो उनको निवेश करना है खेती में उसके लिए उनके पास पैसे उपलब्ध हो जाते हैं।
4: और बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं नेका भाई, जैसे गांव की अर्थव्यवस्था में खेत खलियान जितने महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है हमारा पशुधन, गाय भैंस बकरी भेड़ सुअर या मुर्गी पालन से केवल पशु नहीं बल्कि ग्रामीण परिवार की आमदनी का भी मजबूत जरिया है। लेकिन पशुपालन में भी रोजाना का खर्चा होता है, पशुओं के लिए चारा चाहिए, दवा चाहिए, टीकाकरण चाहिए, बिजली पानी बिजली का खर्च भी, और कई बार पशुओं का बीमा भी कराना पड़ता है। ऐसे में अगर अचानक पैसों की सूत अगर निरंका भाई आपको पड़ जाए तो कहां से पूरी हो पाएगी।
2: बिल्कुल, और ये एक सुविधा हमारे किसान भाइयों को है कि वो क्रेडिट कार्ड अगर बनवा लेते हैं तो बैंक से उनको पैसे मिल जाते हैं और किसी से उनको उधार लेना नहीं पड़ता है। बस ध्यान ये रखना है कि समय सीमा के अंदर आपको पैसे वापस जमा कराने हैं, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहे और आपको इस तरह से बैंक की तरफ से सहायता मिलती रहे। और इसके लिए आपको अपने नजदीकी जो बैंक हैं, बैंक की शाखाओं में जाकर के मिलना पड़ेगा और वहां पर जो कागज लिए जाते हैं वो बहुत ऐसे कागज नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा जुटाना पड़ेगा। आपके आधार कार्ड है, आपकी पहचान पत्र है, जो भी कागजात वहां पर आपसे लेंगे फिर आपको कार्ड बनाकर दे देंगे। तो ऐसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप, ताकि आपको जिस समय पैसे की जरूरत पड़े तो आपको कहीं दूसरे के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, किसी से उधार मांगना ना पड़े। तो इनका आपको लाभ उठाना चाहिए। और अब क्या सुनवा रहे हो
4: जी? अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक
2: उपदेश सुनते हैं राजेंद्र जाटव की आवाज में। तो सुनते हैं ये उपदेश।

0: अश्विनी भाई
1: जी,
0: ये भाई सुन रहे थे उपदेश राजेंद्र जाटव की आवाज में। और अब देखिए, हम भाइयों को बहुत जरूरी जो किसानी में एक बात है वो बताना चाहेंगे कि जब भी हम बिजाई करते हैं तो जरूरी है कि हमारा बीज गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। कई ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से हमारी फसलों में जाती है। आपने बिजाई कर दी और जब पौधा उग के आता है उसके अंदर रोग आ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: फफूंदी वाली कई ऐसी बीमारी हैं जो बीज से ही हमारी फसलों में पहुंचती है। तो इससे बचाव के लिए किसान भाई जब भी बिजाई करें बीज को उपचारित जरूर करें। जब आप बीज को उपचारित करेंगे उसके बाद उसमें बीमारी आने की संभावना समाप्त हो जाएगी। क्योंकि बीमारी जब होगी तो एक तो गुणवत्ता खराब होगी, आपका उत्पादन भी खराब होगा। तो पहले ही आप उसमें जब उपचार कर देंगे तो संभावना वो खत्म हो जाती है। अब बात आती है कि उपचारित किस बीज को करना है। खास तौर पर जिस समय आप सरकारी एजेंसी से कोई बीज खरीदते हैं तो आमतौर पर देखने में आता है कि वो पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है कि उपचारित बीज है, वो उपचार करके भेजते हैं। लेकिन अगर आपने खुद का बीज तैयार किया है तो उसे भी आपको सीधे सीधे इस तरह खेत में नहीं बोना है, बल्कि उसका उपचार जरूर करना है। अब जो आने वाली फसलें, चाहे वो सब्जी की फसलें हैं, चाहे खाद्यान्न की फसलें हैं, चाहे दलहन की फसलें हैं, हर एक में आपको जरूरत होती है कि बीज को उपचारित करें। और इसके लिए जो दवाइयां आती हैं, फफूंदनाशी दवाइयां आती हैं, उनके माध्यम से आप फफूंद से आने वाली बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। क्योंकि ये बीमारियां कई बार तो जब पौधा आप तैयार करते हैं नर्सरी में उसी वक्त भी दिखाई देती हैं।
1: जी,
0: अगर बीज आपका स्वस्थ होगा तो आपकी फसल भी अच्छी होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी। तो इन बातों का ध्यान रखकर हमारे किसान भाई अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं। जब उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ेगी तो आपका फायदा ज्यादा होगा। और अब घड़ी की सुइयों से मिल रहा है इशारा कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने को हमारा, तो अपने भाइयों से हम आज्ञा चाहते हैं। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज का गजल और कवाली का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: देखा?
2: हाँ मेरा

0: कलर हमेशा शॉपिंग.
1: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट.
2: सेविंग करने की भी यही उम्र है.
3: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा.
1: आई नो ना.
3: आरबीआई कहता है
4: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट. नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दिल्ली में बच्चे और युवा कचरा प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूकता बढ़ा रहे हैं. आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं की इस पहल को जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज कई क्षेत्रों में 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया. दो दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू. और एशियाई खेलों में आज भारत ने 7 पदक जीते. भारत के 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली में बच्चे और युवा कचरा प्रबंधन तथा स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं की इस पहल को जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया.
5: हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं. ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं. हर हफ्ते सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं. यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं. कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया. यही तो जनभागीदारी है.
4: प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती का भी उल्लेख किया जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देशभर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है.
5: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली. ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत. इसमें माई भारत के वॉलेंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं. नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं. माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है.
4: वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है.
5: प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है. पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही. ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है.
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बार लाल किले से खेलों के लिए प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की है. अपने संबोधन के समापन में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि आने वाले त्योहारों को लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ मनाएंगे. सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट सहित कई क्षेत्रों में 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया. इन कार्यों की लागत लगभग 214 करोड़ है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से सड़क, सीवेज और ड्रेनेज से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा.
6: बादली विधानसभा में भी लगभग 160 करोड़ के काम चल रहे हैं. रिठाला में हमारे 328 करोड़ के काम संसदीय क्षेत्र में चल रहे हैं. 609 करोड़ के काम मात्र मुंडका में चल रहे हैं.
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं.
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट. expert@AIRNewsHindi और public@AIRNewsAlerts को फॉलो करें.

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष के चुनाव आयोग और देश की चुनावी प्रक्रिया पर आरोपों का खंडन किया है। राजधानी में आज मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की मंशा जनता को गुमराह करना और देश में ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे लोगों का ध्यान देश और दिल्ली में हो रहे विकास कार्यों और विपक्ष की अपनी नाकामियों से हटकर अनावश्यक विवादों की ओर चला जाए।
1: देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है जिसका कोई आधार नहीं है। आज वो लोग बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग के काम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों के समय में ऐसा हो पाता था?
0: मुख्यमंत्री ने फॉर्म 6 पर विपक्ष के सवालों के बारे में कहा कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मूल फॉर्म में बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया से संबंधित घोषणा को अलग से जोड़ा गया है। इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट BLA को चुनाव आयोग के बूथ लेवल अधिकारियों BLO के साथ समन्वय कर पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में सहयोग करने के निर्देश दिए। श्री मल्होत्रा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर विपक्ष के सवालों के बारे में कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके फैसलों पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की जगह तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम ने आज 501 सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है। महापौर प्रवेश वाही ने सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कर्मचारियों के वर्षों के परिश्रम और सेवा को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महापौर ने बताया कि इससे पहले निगम ने 296 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं के लिए जागरूक करता रहेगा।
2: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भी सनातन संस्कृति के प्रखर संवाहक, हिंदू समाज के संगठन और जागरण के लिए जीवन समर्पित करने वाले अशोक सिंघल की जयंती पर उन्हें नमन किया। दो दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे।
3: कृषि और किसान कल्याण विभाग रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर विमर्श करेंगे। पहले दिन आत्मनिर्भरता, विविधीकरण और उत्पादन वृद्धि, स्थिरता और जलवायु अनुकूल कृषि तथा डिजिटल कृषि, अवसंरचना, वित्त पोषण और जोखिम प्रबंधन पर चर्चा होगी। दूसरे दिन क्षेत्रीय सम्मेलनों से प्राप्त प्रमुख सीखों और पहले दिन की चर्चाओं के परिणामों पर विमर्श होगा। सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्रियों को अपनी प्राथमिकताओं और रबी मौसम की तैयारियों के लिए सुझाव देने का अवसर मिलेगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं सरफिरोजी।
0: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा कि ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। इससे पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं के मामले में नीति जारी करने, दावों का निपटारा, निगरानी की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो सकेगी। पोर्टल पर जानकारी हिंदी और अंग्रेजी के साथ 11 और क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। इससे पशुपालकों को उनकी अपनी भाषाओं में जानकारी और सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत 560 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए और उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाया।

0: मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए पुलिस थानों में विशेष टीमें गठित की गई थी। इन टीमों ने द्वारका जिला मॉनिटरिंग सेल के साथ मिलकर लगातार काम किया। पुलिस ने मोबाइल फोन को ट्रेस करने के लिए तकनीकी जांच, फील्ड वेरिफिकेशन और अन्य राज्यों के पुलिस के साथ समन्वय किया। वहीं द्वारका जिला पुलिस के अनुसार इस वर्ष अब तक 2000 से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। रोहिणी जिला पुलिस ने आज कम्युनिटी पुलिसिंग पहल के अंतर्गत जिला स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, अनुशासन, फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना तथा उन्हें नशा और अपराध जैसी असामाजिक गतिविधियों से दूर रखना था। इस प्रतियोगिता में महिला कबड्डी टीम ने भी भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान मंजीत छिल्लर ने खिलाड़ियों को अपने अनुभव साझा कर प्रेरित किया। साथ ही प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने 4 रजत समेत कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्वी शंकर ने डिकैथलॉन में 7934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता बद्रा ने महिलाओं 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं पदक तालिका में चीन 118 स्वर्ण समेत 204 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। आज का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने कहा कि पर्यटन अलग अलग लोगों, संस्कृतियों और समाजों के बारे में जानकारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विविधता में एकता का प्रतीक भारत और पधारो हमारे देश की भावना से परिपूर्ण राजस्थान आज विश्वभर के पर्यटकों की पहली पसंद है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने कहा कि अब पर्यटन अलग अलग स्थानों की यात्रा करना मात्र नहीं है, बल्कि ये रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली में बच्चे और युवा कचरा प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूकता बढ़ा रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं की इस पहल को जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज कई क्षेत्रों में 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। दो दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू। और एशियाई खेलों में आज भारत ने 7 पदक जीते। भारत के 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
2: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं युवा

0: पत्रकार श्री नयन नीरज।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं नयन नीरज नायाब आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम गजल गोष्ठी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस गजल गोष्ठी में हम गजल की उस जादुई दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां जज्बात लफ्जों का रूप लेकर संवेदनाओं की गहराई को छूते हैं और हर एक शेर दिल में उतर जाता है। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान हैं श्री विज्ञान व्रत जी, गजल विधा में आपका योगदान अतुल्य है। आपके शेर संवेदना और सोच की गहराई से निकलकर सीधा दिल में उतरते हैं। और साथ ही हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान वरिष्ठ गजलकार आदरणीय श्री अरुण सागर जी, आप गजल की परंपरा के प्रतिनिधि हैं। जहां शब्द और भाव का अद्भुत संगम होता है, आपकी गजलों में भाषा की सरलता अर्थ की गहराई दोनों झलकते हैं। और मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं जानिसार अख्तर साहब के एक शेर से कि सो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, सो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो इस रात की औकात बनेगी। और जितने उत्सुक आप हैं हमारे दोनों वरिष्ठ मेहमान वरिष्ठ गजलकार की नायाब गजलों को सुनने के लिए उतना ही उत्सुक मैं हूं। तो मैं आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और अपने पहले मेहमान साहब का स्वागत करता हूं, हमारे वरिष्ठ गजलकार आदरणीय श्री विज्ञान व्रत जी। और उन्हें मैं आवाज देता हूं अहमद फराज जी के एक शेर के साथ कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, क्या सादा लोग हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। तो मैं स्वागत करता हूं श्री विज्ञान व्रत जी का।
2: जी, तो तीन मतलब सुने पहले आप।
1: स्वागत है।
2: एक जरा सी दुनिया घर की, एक जरा सी दुनिया घर की, लेकिन चीजें दुनिया भर की। बस अपना ये गम देखा है, मतलब अर्ज करता हूँ कि बस अपना ये गम देखा है, तूने कितना कम देखा है।
1: वाह क्या बात।
2: तुमसे जितनी बार मिला हूँ पहली बार मिला हूँ। और दो चार गजलें मैं अर्ज करता हूँ। मैं खिड़की वो पर्दा है, मतलब देखें कि मैं खिड़की वो पर्दा है, देखो तो क्या रिश्ता है। और अब के उसने खुद को भी और नजर से देखा है।
1: क्या बात है।
2: और नजर से देखा है और उसने अपना नाम पता, शेर देखें कि उसने अपना नाम पता अक्सर खुद से पूछता है।
1: वाह।
2: और शेर देखें कि अब की बार निशाने को वो दानिश्ता चुका है।
1: क्या बात है।
2: रोज बदल जाता है जो किस दुनिया का नक्शा है।
1: वाह।
2: मैं खिड़की वो पर्दा है, देखो तो क्या रिश्ता है।
1: बहुत खूबसूरत।
2: और साहब ये गजल का मतलब देखें कि चुप्पी से बतियाऊं कैसे ये लहजा अपनाऊं कैसे।
1: आहा।
2: रहना और कहीं नामुमकिन खुद में भी रह पाऊं कैसे।
1: क्या बात है।
2: जिनका उत्तर केवल तुम हो ऐसे प्रश्न उठाऊं कैसे।
1: वाह वाह सर, बहुत खूबसूरत।
2: और सब कुछ समझे बैठे हो तुम फिर तुमको समझाऊं कैसे।
1: क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत।
2: सब कुछ समझे बैठे हो तुम फिर तुमको समझाऊं कैसे। और जिसने मुझको दुश्मन समझा मैं उसका हो जाऊं कैसे।
1: वाह।
2: और किसने दर्द दिया है मुझको सबको सच बतलाऊं कैसे। किसने दर्द दिया है मुझको सबको सच बतलाऊं कैसे। और मुझको खुद पर शक होता है पर इल्जाम लगाऊं कैसे। चुप्पी से बतियाऊं कैसे ये लहजा अपनाऊं कैसे।
1: बहुत खूबसूरत गजल
2: सर। एक गजल और देख लें।
1: जी स्वागत है।
2: मतलब देखें कि मुझको जिस्म बनाकर देख एक दिन मुझ में आकर देख। मुझको जिस्म बनाकर देख एक दिन मुझ में आकर देख। और ये शेर देखें कि जिसका उत्तर तू खुद है

0: अब वो प्रश्न उठाकर देख, अच्छा अपने खुद को तू, अच्छा अपने खुद को तू खुद में ही दफना कर देख, और क्या समझा तू दुनिया को, क्या समझा तू दुनिया को खुद में ही, क्या समझा तू दुनिया को, दुनिया को समझा कर देख। और गजल का आखिरी शेर करता हूँ कि तू अपनी जद में है क्या, तू अपनी जद में है क्या, अपना हाथ बढ़ाकर देख।
1: वाह बहुत खूबसूरत गजल।
0: एक मतलब देखें कि लापता था लापता है,
1: लापता था
0: लापता था लापता है, ये पता तो आपका है।
1: वाह।
0: और एक मतलब और देखें कि मुझसे मिलकर फर्ज आने, मुझसे मिलकर फर्ज आने, लौटे होकर दीवाने
1: दीवाने।
0: और ये मतलब अर्ज करता हूँ गजल का, आईना दिखलाना है क्या, आईना दिखलाना है क्या, उसको सब समझाना है क्या, वो जो इतना गुमसुम सा है, वो जो इतना गुमसुम सा है, कोई राज छुपाना है क्या।
1: वाह।
0: और तुम जो इतना खुश दिखते हो, तुम जो इतना खुश दिखते हो, उनका आना जाना है क्या।
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
0: तुम जो इतना खुश दिखते हो, उनका आना जाना है क्या, और इतनी देर लगी आने में, इतनी देर लगी आने में, रस्ते में मैखाना है क्या।
1: क्या बात है।
0: इतनी देर लगी आने में, रस्ते में मैखाना है क्या, और पैकिंग इतना चमकीला है, पैकिंग इतना चमकीला है, भीतर माल पुराना है क्या।
1: बहुत बहुत अच्छा।
0: आईना दिखलाना है क्या, उसको सब समझाना है क्या।
1: बहुत सुंदर सर बहुत सुंदर। तो ये थे हमारे वरिष्ठ शायर श्री विज्ञान व्रत जी। और किसी ने कहा है कि यही नहीं कि जमाने का ढप दिखाई दे, यही नहीं कि जमाने का ढप दिखाई दे, और गजल वो है कि सब दिखाई दे। तो उसी तरह से विज्ञान जी ने इतनी खूबसूरत गजल हमें सुनाई, बहुत खूबसूरत सर। और इसी के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे आज के दूसरे मेहमान शायर आदरणीय श्री अरुण सागर जी का। अरुण सागर जी को मैं आवाज लगाता हूँ बशीर बद्र साहब के एक शेर से कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। बहुत बहुत स्वागत है अरुण सागर जी आपका।
2: नमस्कार। मैं एक मतलब और एक शेर हाजिर कर रहा हूँ।
1: स्वागत।
2: हजारों ठाव काटे जा रहे हैं, हजारों ठाव काटे जा रहे हैं, हमारे गांव काटे जा रहे हैं, हजारों ठाव काटे जा रहे हैं, हमारे गांव काटे जा रहे हैं, और जिन्हें आता है चलने का सलीका, जिन्हें आता है चलने का सलीका, उन्हीं के पांव काटे जा रहे हैं।
1: वाह वाह।
2: जिन्हें आता है चलने का सलीका, उन्हीं के पांव काटे जा रहे हैं, हजारों ठाव काटे जा रहे हैं, हमारे गांव काटे जा रहे हैं। इसी हवाले से एक मतलब और चंद अशआर सुने। तुम्हारे जुल्म को हम तख्त की सौगात कहते हैं, तुम्हारे जुल्म को हम तख्त की सौगात कहते हैं, हमें तुम गौर से देखो हमें सुकरात कहते हैं।
1: वाह वाह।
2: तुम्हारे जुल्म को हम तख्त की सौगात कहते हैं, हमें तुम गौर से देखो हमें सुकरात कहते हैं, और सजा जिस दौर में दी जा रही हो बेगुनाहों को, सजा जिस दौर में दी जा रही हो बेगुनाहों को, हम ऐसे दौर को ही गर्दिशे हालात कहते हैं। हम ऐसे दौर को ही गर्दिशे हालात कहते हैं। और इसी हवाले से एक शेर और सुने कि किसी के जख्म आंसू दर्द गम तकलीफ की खातिर, किसी के जख्म आंसू दर्द गम तकलीफ की खातिर, जो आंखों में छलक जाए उसे जज्बात कहते हैं, जो आंखों में छलक जाए उसे जज्बात कहते हैं। और इसका आखिरी शेर सुने कि जमी पर बादलों से जो बरसता है वो पानी है, जमी पर बादलों से जो बरसता है वो पानी है, जो आंखों से बरस जाए उसे बरसात कहते हैं। जमी पर बादलों से जो बरसता है वो पानी है, जो आंखों से बरस जाए उसे बरसात कहते हैं। तुम्हारे जुल्म को हम तख्त की सौगात कहते हैं, हमें तुम गौर से देखो हमें सुकरात कहते हैं।
1: वाह।
2: हमें तुम गौर से

0: अखबार में और खामियां जो थी नहीं किरदार में वो खबर छापी गई अखबार में। आइए और कुछ मोहब्बत के चंद मतले और शेर सुन लें, फिर यह गजल तरन्नुम से आपके सामने हाजिर करूंगा। कि देखें कि हदे एहसास बढ़ती जा रही है, हदे एहसास बढ़ती जा रही है, मिलन की आस बढ़ती जा रही है, और तुम्हारा इश्क दरिया हो रहा है, तुम्हारा इश्क दरिया हो रहा है, हमारी प्यास बढ़ती जा रही है। हदे एहसास बढ़ती जा रही है, मिलन की आस बढ़ती जा रही है, तुम्हारा इश्क दरिया हो रहा है, हमारी प्यास बढ़ती जा रही है, हमारी प्यास बढ़ती जा रही है।
1: बहुत खूबसूरत।
0: और इसी हवाले से एक मतला और एक और शेर गौर कीजिए कि गुलो गुलजार मंजर दे रहा हूँ, गुलो गुलजार मंजर दे रहा हूँ, फरिश्तों का मुकद्दर दे रहा हूँ, बस एक कतरे की खातिर तू खफा है, बस एक कतरे की खातिर तू खफा है, तुझे पूरा समंदर दे रहा हूँ, बस एक कतरे की खातिर तू खफा है, तुझे पूरा समंदर दे रहा हूँ, तुझे पूरा समंदर दे रहा हूँ। और हम सब लोग गांव से कुछ न कुछ ताल्लुक रखते हैं, मैं वहां से एक मतला और एक शेर और कहके फिर एक गजल की ओर बढ़ते हैं मुकम्मल की। न चांदी याद आती है न सोना याद आता है,
1: वाह।
0: न चांदी याद आती है न सोना याद आता है, दिया मिट्टी का खिलौना याद आता है, और हम अपने मखमली बिस्तर पे जब करवट बदलते हैं, हम अपने मखमली बिस्तर पे जब करवट बदलते हैं, पुराने गांव के घर का बिछौना याद आता है, हम अपने मखमली बिस्तर पे जब करवट बदलते हैं, पुराने गांव के घर का बिछौना याद आता है, न चांदी याद आती है न सोना याद आता है, न दिया मिट्टी का खिलौना याद आता है।
1: बहुत खूबसूरत,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और दो तीन अशआर एक गजल के और सुन ले, फिर एक तरन्नुम से गजल हाजिर करता हूँ। कि गले उसको लगाया जा रहा है, गले उसको लगाया जा रहा है, जिसे कातिल बताया जा रहा है, और सलीका सीख कर जीने का हमसे, सलीका सीख कर जीने का हमसे, हमें जीना सिखाया जा रहा है।
1: बहुत खूबसूरत।
0: सलीका सीख कर जीने का हमसे, हमें जीना सिखाया जा रहा है, और जरा देखो हमारे कत्ल में ही, जरा देखो हमारे कत्ल में ही हमें मुलजिम बनाया जा रहा है, जरा देखो हमारे कत्ल में ही हमें मुलजिम बनाया जा रहा है, और किसे अपना बनाने का था वादा, किसे अपना बनाने का था वादा, किसे अपना बनाया जा रहा है, किसे अपना बनाया जा रहा है, और हम ही से मांग कर माचिस की तीली, हम ही से मांग कर माचिस की तीली, हमारा घर जलाया जा रहा है, हम इसे मांग कर माचिस की तीली, हमारा घर जलाया जा रहा है, गले उसको लगाया जा रहा है, जिसे कातिल बताया जा रहा है।
1: वाह।
0: और दोस्तों मेरे प्यारे श्रोताओं, एक गजल तरन्नुम से उसके चंद असार सुन लें आप।
1: स्वागत है।
0: कि दर पे तेरे ठहर गई आंखें,

तुझको देखा तो तर गई आंखें, तुझको देखा तो तर गई आंखें, लौट कर फिर न घर गई आंखें। गौर कीजिए, बज्म में सब हसीन है फिर भी बस।

लौट कर फिर न घर गई आंखें, तू तो बस छोड़ कर गया मुझको, तू तो

0: लौट कर फिर न घर गई आंखें।
1: वाह वाह।
0: और मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ, लौट कर फिर सिर्फ तेरी तलाश में सागर, सिर्फ तेरी तलाश में सागर, जाने किस किस के डर गई आंखें, जाने किस किस के डर गई आंखें, लौट कर फिर।

0: मेरे प्यारे श्रोताओं, आकाशवाणी के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कवि गोष्ठी में अब तक जो हम सब का संचालन कर रहे थे सारे कवियों का, अब उनकी बारी है। मैं एक मतला और एक शेर से उनको आवाज देता हूँ। हिंदुस्तान के जाने माने कवि और शायर हैं। तेरे जुल्मो सितम से ये निगाहें नम नहीं होंगी, हमारा पर कतरने से उड़ानी कम नहीं होंगी, और बुलंदी पर हमारा हौसला है और हम भी हैं। बुलंदी पर हमारा हौसला है, बुलंदी पर हमारा हौसला है और हम भी हैं। हमारी धड़कनें सांसें कभी बेदम नहीं होंगी, हमारी धड़कनें सांसें कभी बेदम नहीं होंगी, तेरे जुल्मो सितम से ये निगाहें कम नहीं होंगी। मैं बहुत अदब से आवाज दे रहा हूँ भाई नया नीरज नायाब जी को, आप सुने, गौर से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक मतला और शेर देखें, और ये गजल जो मैं आपको सुनाऊंगा इसमें एक पिता का दर्द है, वो आप महसूस कर पाएंगे
0: बहुत खूब,
1: कि एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करता है। कि जुगनुओं से आफताब बनाता रहा हूं मैं, जुगनुओं से आफताब बनाता रहा हूं मैं, दबी सांस से हर रिश्ता निभाता रहा हूं मैं।
0: वाह।
1: जुगनुओं से आफताब बनाता रहा हूं मैं, दबी सांस से हर रिश्ता निभाता रहा हूं मैं, वो जो कर रहा है अब मेरी इज्जत को तार तार, वो जो अब कर रहा है मेरी इज्जत को तार तार, उसकी हर बात पे पर्दा गिराता रहा हूं मैं।
0: खूबसूरत।
1: उसकी हर बात पे पर्दा गिराता रहा हूं मैं, और मेरे कांपते हाथों से अब परहेज है उसे,

0: मेरे कांपते हाथों से अब परहेज है उसे पकड़ के उंगली जिसे चलना सिखाता रहा हूं मैं,
1: वाह वाह,
0: पकड़ के उंगली
1: बहुत खूब।
0: जिसे चलना सिखाता रहा हूं मैं, और दर्द घुटने का अब नया खर्चा है उसके लिए, दर्द घुटने का अब नया खर्चा है उसके लिए, बिठा के कांधे पर जिसे मेले घुमाता रहा हूं मैं, बिठा के कांधे पर जिसे मेले घुमाता रहा हूं मैं,
1: बेहतरीन।
0: और बेटा अब माँ को पास रखने को तैयार नहीं, बेटा अब माँ को पास रखने को तैयार नहीं, जिस माँ बेटे के प्यार पर इतराता रहा हूं मैं, जिस माँ बेटे के प्यार पर
1: सच,
0: इतराता रहा हूं मैं,
1: वाह।
0: और आने वाली नस्लों को तुम यूं बर्बाद न करना। ये शेर देखें कि आने वाली नस्लों को तुम यूं बर्बाद न करना, पुरानी नस्लों को जिस तरह से खून पिलाता रहा हूं मैं,
1: वाह
0: कि पुरानी नस्लों को जिस
1: वाह,
0: तरह से खून पिलाता रहा हूं मैं, और रुला रहा है मुझे अब खून के आंसू, रुला रहा है मुझे अब खून के आंसू, उसकी हर बात पर मुस्कुराता रहा हूं मैं,
1: वाह,
0: कि उसकी हर बात पर मुस्कुराता रहा हूं मैं, और वो जो कर रहा है मेरे ना लौटने का इंतजार, वो जो अब कर रहा है मेरे ना लौटने का इंतजार, उसको हर कदम पर आवाज लगाता रहा हूं मैं, उसको हर कदम पे आवाज लगाता रहा हूं मैं, और छोड़ रहा है चिता में अब जलता हुआ मुझे, छोड़ रहा है चिता में अब जलता हुआ मुझे, बनकर शजर जिसे धूप से बचाता रहा हूं
1: क्या
0: मैं,
1: बात है।
0: बन के शजर जिसे धूप से बचाता रहा हूं मैं। और इसी तौर का एक कुछ असार और देखें कि इस दर्द को दवा बना लूं क्या,
1: हाँ, क्या मिश्रा है।
0: इस दर्द को दवा बना लूं क्या, तुम कहो तो जरा मुस्कुरा लूं
1: मुस्कुरा
0: क्या,
1: लूं क्या,
0: तुम
1: बहुत
0: कहो तो जरा मुस्कुरा लूं क्या, और मुझे फिर से किस्मत आजमानी है,
1: हाँ,
0: मुझे फिर से किस्मत आजमानी है, एक बार फिर से दिल लगा लूं
1: लगा लूं
0: क्या,
1: क्या।
0: एक बार फिर से दिल लगा लूं क्या, और सांस लेता हूं तो दम सा घुटता है। इसे देखें कि सांस लेता हूं तो दम सा घुटता है, दिल में एक खिड़की बना लूं क्या,
1: क्या बात है,
0: दिल में
1: क्या बात है,
0: एक खिड़की बना लूं
1: क्या
0: क्या,
1: बात
0: और
1: है।
0: कटी है हर रात फकत अंधेरे में, कटी है हर रात फकत अंधेरे में, बुझे दिए को खून से जला लूं क्या,
1: जला लो क्या,
0: बुझे दिए को
1: बहुत
0: खून
1: खूब,
0: से जला
1: जला
0: लूं
1: लो
0: क्या,
1: क्या।
0: और धूप अब मेरे चेहरे तक नहीं आती, धूप अब मेरे चेहरे तक नहीं आती, जुगनुओं से नया आफ्ताब बना लूं
1: बना लूं
0: क्या,
1: क्या,
0: कि जुगनुओं से नया आफ्ताब बना लूं क्या, और रात के सन्नाटे अब चुभने लगे हैं, रात के सन्नाटे अब चुभने लगे हैं, पुराना कोई गीत गुनगुना लूं
1: गुनगुना लूं
0: क्या,
1: क्या।
0: पुराना कोई गीत गुनगुना लूं क्या, और हवा से बिखर गया आशियाना मेरा, हवा से बिखर गया आशियाना मेरा, तुम्हारे दिल में नया घर बना लूं
1: बना
0: क्या,
1: लूं क्या।
0: तुम्हारे दिल में नया घर बना लूं क्या, और वो अभी मुझसे ज्यादा दूर नहीं गया, वो अभी मुझसे ज्यादा दूर नहीं गया, जरा जोर से आवाज लगा लूं
1: लगा लूं
0: क्या,
1: क्या,
0: तुम कहो तो जरा मुस्कुरा
1: मुस्कुरा
0: लूं
1: लूं
0: क्या,
1: क्या।
0: तुम कहो तो जरा मुस्कुरा लूं क्या। और
1: जी बहुत बढ़िया,
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक एक कविता है सर, वो देखें,
1: जी
0: ये इस तरह से है, जैसे सर जहां हम आज इस मकाम पे पहुंचे हैं, कितनी मेहनत आप लोगों ने करी होगी वहां पहुंचने के लिए, तो उसी को है शब्दों के रूप में मैंने संजोया है
1: जी
0: कि अब वो मेरे लफ्जों को गुनगुनाने लगे,
1: अब वो मेरे
0: अब वो
1: लफ्जों
0: मेरे लफ्जों को गुनगुनाने लगे, इस मकाम पे आने में मुझे जमाने लगे,
1: जमाने लगे।
0: इस मकाम पे आने में मुझे जमाने लगे, जला हूं मैं किसी शबे चराग की तरह, जला हूं मैं किसी शबे चराग की तरह, खुद को रोशनी बनाने में मुझे
1: जमाने
0: जमाने लगे,
1: लगे,
0: खुद को रोशनी बनाने में मुझे जमाने लगे, और आसान नहीं था दरिया का रुख मोड़ देना, आसान नहीं था दरिया का रुख मोड़ देना।

0: ना रास्ते से पत्थर हटाने में मुझे जमाने
1: जी
0: लगे कि रास्ते से पत्थर हटाने में मुझे जमाने लगे, और गिरे दरख्तों को भी दिया है सहारा मैंने, गिरे दरख्तों को भी दिया है सहारा मैंने, इस जंगल में घर बनाने में मुझे जमाने लगे कि इस जंगल में घर बनाने में मुझे जमाने लगे, और एक को मनाया तो कभी दूजा रूठ गया। रिश्तों में आप देखते हैं कि एक को मनाया तो कभी दूजा रूठ गया, ये रिश्ते समझ आने में मुझे जमाने लगे, और बस धूल की वजह से लाल है ये आंख मेरी, बस धूल की वजह से लाल है ये आंख मेरी, उसे ये बात समझाने में मुझे जमाने लगे, उसे ये बात समझाने में मुझे जमाने लगे, और वो एक पल में भूल गया मेरी यादें सारी, वो एक पल में भूल गया मेरी यादें सारी, दिन लम्हों को जुटाने में मुझे जमाने लगे, और ढल
1: वाह
0: गया सूरज मगर एक शाम न गुजरी, ढल गया सूरज मगर एक शाम न गुजरी, कि उसके दिल में घर बनाने में मुझे जमाने लगे, और एक कतरा भी उसके आंसू का फिर गिरने न दिया, एक कतरा भी उसके आंसू का फिर गिरने न दिया, भले ही अपनी आंख सुखाने में मुझे
1: जमाने
0: जमाने
1: लगे।
0: लगे। और ये शेर देखें कि लहजे में ये नरमी बस आपके लिए है, लहजे में ये नरमी बस आपके लिए है, और ये लहजा बनाने में मुझे
1: जमाने
0: जमाने
1: लगे।
0: लगे। मैं उसी पल उसका हो गया जो मेरा हो गया, मैं उसी पल उसका हो गया जो मेरा हो गया, मगर ये बात जताने में मुझे
1: जमाना
0: जमाने लगे, मगर ये बात जताने में मुझे जमाने लगे, और गुजरा हूं कई बार एक ही रास्ते से मैं, गुजरा हूं कई बार एक ही रास्ते से मैं, इस मंजिल तक आने में मुझे
1: जमाने
0: जमाने
1: लगे।
0: लगे, और किसी ने देखे ही नहीं पैरों के छाले मेरे, किसी ने देखे ही नहीं पैरों के छाले मेरे, जख्मों को मरहम बनाने में मुझे जमाने लगे। और आखिरी शेर है देखें कि
1: जी
0: कई बार चुभा नस्तर मगर खून न निकला, कई बार चुभा नस्तर मगर खून न निकला, खुद को पत्थर बनाने में
1: जमाना
0: मुझे
1: जमाने
0: जमाने
1: लगे।
0: लगे,
1: बहुत
0: खुद
1: बढ़िया।
0: को पत्थर बनाने में मुझे जमाने लगे, और गूंगों की तरह रहा हर एक बज्म में नीरज, के गूंगों की तरह रहा हर एक बज्म में नीरज, जुबां को आवाज बनाने में मुझे
1: जमाने
0: जमाने
1: लगे
0: लगे,
1: जमाने लगे।
0: जुबां को आवाज बनाने में मुझे जमाने लगे। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गजल गोष्ठी, जिसमें हमारे मेहमान थे आदरणीय विज्ञान व्रत जी और आदरणीय अरुण सागर जी, और मैं आशा करता हूं सभी श्रोताओं को गजल शायरी एक एक शेर पसंद आया होगा, और इसी आशा में कि आपसे फिर से मुलाकात होगी, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं आज तक के लिए, फिर किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: अभी आप ये कवि गोष्ठी सुन रहे थे। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे युवा गजलकार श्री नयन नीरज। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग था वंदना का और प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण लाल मीना।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: अभिजीत की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रुतों कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में लीजिए अब सुनिए यस बोस फिल्म से लिया गीत। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है जतिन ललित का।

0: मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
0: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
0: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा।

0: श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में

0: जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने वुमेन्स लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन, वुमेन्स स्टीपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में मोना ग्रांपेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sec.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: श्री मोदी ने लोगों से मेढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर

0: बयान देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और एलएनजी दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
1: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है। 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में एसयूटी एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth: technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की, कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
3: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
4: भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
3: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
5: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको किस टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछ सके कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के।
3: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षत वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
6: एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाज सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्वी ने डेकथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्दा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैम्पेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far. Also calls for greater public participation in cleanliness drives ahead of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Defense Minister Rajnath Singh asserted

0: India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat, marking railway's shift towards cleaner energy. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bats bronze in decathlon, women's steeplechase and 200-meter events, and India retained Nona Gaprina Dashavili trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today. He said the surgical strikes carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan in 2016 demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Mr. Modi said India will mark the 10th anniversary of the cross-border surgical strike tomorrow.
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: Speaking about Census 2027, Mr. Modi said the first phase of the ongoing exercise is nearing completion across all states and union territories. He said data from more than 32 crore families has already been recorded so far. He urged people to participate in the drive and use self-enumeration facility.
1: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drives ahead of the birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi on the 2nd of October. He cited examples of cleanliness initiatives from across the country.
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं। स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: Prime Minister Modi said millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth while announcing health checkups and meditation camps as part of 100-week campaign. Speaking about One District, One Product initiative, Prime Minister Modi said it is creating new opportunities for amla growers and entrepreneurs at Pratapgarh in Uttar Pradesh, with around 100 processing units now operational and women's self-help groups playing an important role. It's an initiative aims to take local products to national and global markets and urge people to promote the vocal for local message during the upcoming festive season. Defense Minister Rajnath Singh has said India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. Mr. Singh was addressing a defense conclave in New Delhi today. He said India does not seek to occupy the territory of any country but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy if threatened. He said as long as a neighboring country continues to support terrorism, India is entitled to take all necessary measures against it.
2: भारत शांति चाहता है।
3: इंडिया वांट्स पीस बट इट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स सिक्योरिटी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इंडिया बिलीव्स इन डायलॉग बट इफ एनी कंट्री प्रमोट्स टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग विद दैट कंट्री।

45 मिनट पर खबरें सुनिएगा, 9:55 मिनट का वक्त रहेगा प्रोग्राम हेल्थ टिप्स का। कुछ बातें होंगी आपकी और हमारी सेहत के हवाले से। रात 10 बजे मार्केट मंत्रा प्रोग्राम नशर किया जाएगा।

0: जी अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक फनकार। आज के फनकार थे हरिहरन। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। 9:45 होने को हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आप ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ में अब्दुल वाहिद। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट फजाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी ने 2027 की मर्दमशुमारी में की गई पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अभी तक 32 करोड़ से ज्यादा कुंभों के आदादोशुमार रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में और ज्यादा लोगों की शिरकत पर जोर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी दिफाई खुदमुख्तारी से समझौता किए बगैर आलमी इस्तेहकाम का खाहां है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के शहर साबरमती से LNG से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो माहौल के लिए साजगार तवानाई के मकसद से रेलवे में की गई एक बड़ी कामयाबी है। और एशियन गेम्स में भारत ने खवातीन की लंबी छलांग और मर्दों की ऊंची छलांग ने इस मर्दों और खवातीन के स्क्वैश सिंगल्स में चांदी के तमगे हासिल किए हैं। और डेकेथलॉन खवातीन की स्टिपल चेज ने 200 मीटर के मुकाबले में कांसे के तमगे जीते हैं। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2000

वलह की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट फलाई हमला और 2025 में किया गया ऑपरेशन सिंदूर, दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। वज़ीर आज़म आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कल सरहद पार सर्जिकल हमले के 10 साल पूरे होने की याद ताजा करेगा। भारत ने 2016 में 28 और 29 सितंबर की रात ये हमले किए थे, जिनमें उस महीने के आगाज में उन्हीं में किए गए दहशतगर्दाना हमले के जवाब में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भारतीय सिपाहियों की बहादुरी को देखकर हैरान है, जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर लिया था। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को दहशतगर्दाना हमलों की वजह से पैदा दहीना दर्द का भारत का एक फैसला कुन जवाब करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली दहाई में 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट फदाई हमलों से 2025 के ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार एक वाजे पैगाम दिया कि दहशतगर्दाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने उस वक्त को याद किया जब सिलसिलेवार बम धमाके मुल्क में अक्सर होते थे। उन्होंने 13 सितम्बर 2008 को दिल्ली में किए गए सिलसिलेवार बम धमाकों का जिक्र किया, जिनमें बहुत से लोग हलाक हुए थे, जिसके कुछ ही हफ्ते बाद मुंबई में 26/11 के दहशतगर्दाना हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत आज दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है और अपने इस तरीकेकार का समरा भी देख रहा है। 2027 की मर्दमशुमारी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि इस अमल का पहला मरहला तकरीबन सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मुकम्मल हो रहा है। उन्होंने कहा कि 32 करोड़ से ज्यादा कुनबों के आदादोशुमार रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी का यह काम लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दूरदराज और बर्फ से ढके हुए इलाकों में भी जारी है, जहां बहुत से तहरीक देने वाले तजुर्बात हासिल हुए हैं। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी एक कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खुदशुमारी की सहूलत से यह अमल आसान हो गया है। लोग अपने और अपने कुनबों के बारे में जानकारी अपने मोबाइल फोन के जरिए दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सहूलत हिंदी और दिगर 16 जबानों में मौजूद है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब का अख्ताम करते हुए लोगों को मुबारकबाद दी और आइंदा त्योहारों के दिनों में खुशी और खुशहाली की नेक ख्वाहिशात पेश की। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर को बाबाए कौम महात्मा गांधी के यम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में लोगों की और ज्यादा शिरकत पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क भर में सफाई सुथराई के लिए किए गए इकदाम की मिसालें दी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत किसी मुल्क के किसी इलाके पर कब्जा करना नहीं चाहता, अलबत्ता अगर उसे धमकी दी जाएगी तो अपनी सलामती और दिफाई खुदमुख्तारी की हिफाजत करेगा। नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस की तरफ से मुनाक़िदा दिफा से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि भारत आलमी इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अपनी दिफाई खुदमुख्तारी की कीमत पर नहीं। वज़ीर मौसूफ ने खासतौर पर कहा कि किसी ऐसे मुल्क के साथ मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती जो भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को बढ़ावा दे। कौमी इतिहास को कौमी सलामती का एक अहम सुतून करार देते हुए जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क की सलामती अकेले मुसल्ह फौजों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर शहरी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने शहरियों से जोर देकर कहा कि वह मजहब, जात पात, जबान, खित्ते और दीगर तरह की शनाख्त की बुनियाद पर की जाने वाली तफरीक से ऊपर उठें और कौमी मफाद को जाति और छोटे मफाद से ऊपर रखें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उम्र दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने साबरमती में आज कई बड़े रेलवे तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा और आगाज किया। इन प्रोजेक्टों की लागत 1500 करोड़ रूपये से ज्यादा है। वजीर मसरूफ ने गुजरात के वजीर आला भूपेन्द्र पटेल की मौजूदगी में मुल्क की पहली LNG से चलने वाली ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन साबरमती स्टेशन से रवाना की गई। इस ट्रेन में डीजल और रकीक बनाई गई कुदरती गैस के दोहरे ईंधन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके इंजन में तकरीबन 40% रवायती ईंधन डीजल की जगह 1400 हॉर्स पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर एक बड़े अवामी इस्तेमाल से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में पिछले 12 साल में भारतीय रेलवेज की काबिल जिक्र कामयाबी को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने जदीद रेल के बुनियादी ढांचे में भारत की तेज रफ्तार तरक्की पर भी जोर दिया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि टेक्नोलॉजी किसी डॉक्टर के इंसानी हमदर्दी के जज्बे

0: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, लीजिए सुनिए प्रोग्राम मार्केट मंत्र।
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on your mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav with my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. हेलो सुबोध,
1: धन्यवाद वैभव और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। ख्याल रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे,

0: सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: पहले हेडलाइंस के साथ वैभव।
2: Shows the headlines ahead of festive season. Prime Minister Narendra Modi urges everyone to promote local products. External Affairs Minister S. Jaishankar calls upon all warring nations to de-escalate tensions and keep energy and trade routes open during ongoing conflicts. And foreign portfolio investors withdraw over 17,000 crore rupees from Indian equities in September so far.
0: Tyohari mausam se pehle Pradhanmantri Narendra Modi ne sthaniya utpadon ko badhava dene ka anurodh kiya. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धरत देशों से तनाव कम करने और वर्तमान संघर्ष के बीच ऊर्जा और व्यापार मार्ग खुले रखने का आह्वान किया और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय शेयरों से 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली।
2: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Starting with our first headline, the Prime Minister Narendra Modi today said every region of India has a unique specialty, ranging from agricultural products and traditional art forms to local skills. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said the One District, One Product ODUP campaign seeks to promote these distinctive products and help them move beyond local markets to reach consumers across the country and abroad. He also linked the initiative with the Vocal for Local campaign, saying that promoting local products can contribute to the country's drive to self-reliance. With the festive season approaching, the Prime Minister urged people to keep the spirit of local, vocal for local in mind and support products made by local farmers, artisans, entrepreneurs and self-help groups.
0: पहले कॉलर से संपर्क हुआ है हमारा मुंबई, अमित हमारे साथ है, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा सवाल था कि हाइब्रिड फंड और मल्टी एसेट फंड में डिफरेंस क्या है और इसमें हाइब्रिड फंड और मल्टी एसेट में एक एक नाम आप बता सकते हैं प्लीज, और ये क्या डेट फंड में अवेलेबल होते हैं, डेट फंड सॉरी। थैंक यू
1: जी। देखिए हाइब्रिड और मल्टी एसेट में आपने अंतर पूछा है, तो मल्टी एसेट एक तरह के हाइब्रिड फंड्स हैं। हाइब्रिड फंड्स एक ओवरऑल एक बड़ी अम्ब्रेला कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं और मोस्टली उनमें डिपेंड करते हैं कि वो कितने एसेट क्लास में कितने प्रतिशत अपना पैसा निवेश करते हैं। जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं वो करीब 70-75% आपका पैसा इक्विटी और बचा हुआ डेट में निवेश करते हैं। बैलेंस्ड हाइब्रिड्स 50-50% आपका पैसा एलोकेट करते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड वही 25% इक्विटी और 75% डेट करते हैं। अब इसी बीच में मल्टी एसेट एक थोड़ी नई कैटेगरी है जिनका मैंडेट होता है कि वो कम से कम 3 एसेट क्लास में आपका पैसा डिवाइड करेंगे और अधिकतर देखा गया कि वो 3 कैटेगरीज होती है, 3 एसेट क्लास होती है, इक्विटी, डेट और कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड। अब अलग अलग मल्टी एसेट फंड जो प्रोपोर्शन इन तीनों एसेट क्लास का रखते हैं वो अलग अलग होता है, वो कोई फिक्स्ड कोई एक बहुत प्रिस्क्राइब्ड मैंडेट नहीं है। अलग अलग फंड में देखा गया कि कुछ इक्विटी हैवी रहेंगे, कुछ तीनों में बराबर बराबर आपका पैसा निवेश करेंगे, तो वो निवेश से पहले आपको देखना होगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। अब डेट और इक्विटी देखिए टैक्स के नजरिए से देखें तो हाइब्रिड फंड्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जो फंड 65% से ज्यादा आपका पैसा इक्विटी में निवेश करते हैं तो वो इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उनको इक्विटी वाला टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है और वहीं वो थोड़ा रिस्क रिटर्न उनका ज्यादा ऊंचे पैमाने पर रहता है। वहीं जो डेट हैवी हाइब्रिड्स होते हैं उनमें आपको डेट वाला टैक्स ट्रीटमेंट लगता है, गेन गेन्स आपकी स्लैब पे टैक्स होते हैं आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट पर, और रिस्क और रिटर्न का जो स्पेक्ट्रम होता है वो उस पर डाउन द ऑर्डर आते हैं. तो ये काफी वेरी कर सकते हैं एक से दूसरा फंड, आपको इसको ध्यान से देखना होगा.
0: जी आशुतोष, हम कई बार देखते हैं कई निवेशक जो अच्छी जानकारी रखते हैं म्यूचुअल फंड बाजार की और कैसे निवेश करें, कौन सी कैटेगरीज हैं, और कई हमारे हमेशा नए निवेशक भी जुड़ रहे हैं, कभी एसआईपी के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे भी पता लगता है नए निवेशकों की अद्भुत दुविधा देखने को मिलती है. उस पर हम चर्चा करेंगे कि वो कैसे एजेंट्स और एडवाइजर्स से सलाह लेते हैं और कौन सी सलाह अच्छी है कौन सी नहीं है. चले अगले कॉलर के पास. वैभव,
4: एब्सोल्युटली. आवर नेक्स्ट कॉलर इज जितेंद्र फ्रॉम जयपुर. जितेंद्र जी, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर. जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए. जितेंद्र जी से कुछ संपर्क हुआ लेकिन आवाज और शोर कुछ ज्यादा है.
0: जी तो हम अपनी बातचीत जारी रखें आशुतोष की. जैसे कई लोग एजेंट से एडवाइजर्स के जरिए निवेश कर रहे हैं और उनसे और वही उनके सलाहकार भी बन जाते हैं. जब आप जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा ये ले लो आप, इसमें पैसे लगा दो आप. और कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि जो एसआईपी शुरू कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड में जा रहा है या कहां है. अगर कोई एजेंट या एडवाइजर किसी नए निवेशक को सलाह देता है कि आप किसी एक तरह के फंड में, मान लीजिए आप अपना 70% पैसा लगा दीजिए स्मॉल कैप फंड्स में, तो क्या आप बोलेंगे कि क्योंकि अभी उसके रिटर्न्स अच्छे दिख रहे हैं, क्या ये अच्छी सलाह है? क्योंकि खास करके ऐसे निवेशक के लिए उसको पता ही नहीं है कि वो स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है.
1: तो देखिए आपके सवाल पर मुझे एक एक चीज याद आती है कि एनएससी का जो टैगलाइन है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. तो निवेशकों को सबसे पहले वही करना है कि आप आपको कोई भी कुछ भी रिटर्न्स का प्रलोभन दे, आपको आपको अपने आप से, क्योंकि आपका पैसा है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, थोड़ा आपको सोच समझ कर निवेश करना है. स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिटर्न अच्छे देते हैं, हिस्टोरिक रिटर्न उनके काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ऐसे फेस भी आते हैं कि जब वो काफी धड़ाम से गिर जाते हैं. जब मार्केट क्रैश होता है तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा देखा गया गिरते हैं, तो उसका टॉलरेंस होना जरूरी है. लेकिन शुरुआती निवेशकों के लिए जब तक उनको फैमिलियरिटी नहीं है, इंडेक्स फंड एक बड़ा ही सरल और सुगम तरीका है जिसमें डिसीजन मेकिंग आपको ज्यादा नहीं करनी पड़ती. इंडेक्स फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से वो शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि उनका रिस्क थोड़ा कंट्रोल में रहता है. और अगर जानकारी का अभाव भी है तो इन फंड्स में आप फिर भी थोड़े मॉडरेट रिस्क के साथ अपना पहला कदम मार्केट के निवेश की ओर रख सकते हैं.
4: नेक्स्ट कॉलर इज योगेश फ्रॉम दिल्ली. योगेश जी, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
5: थैंक यू सो मच. नमस्कार आप सभी को. मेरा सवाल ये है कि जैसे वॉरेन बफेट के बराबर कहते हैं कि बाय एंड होल्ड एंड बाय एंड होल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, सो डू म्यूचुअल फंड हाउसेस डेट देमसेल्फ बाय अ स्टॉक एंड होल्ड इट फॉर लाइक सिंस मैनी ईयर? बिकॉज आई नोटिस अबाउट दे डू अलॉट ऑफ चर्निंग विद देयर पोर्टफोलियो, सो दे बाय एंड दे सेल समटाइम. सो इज देयर एनी स्टडी ऑन दैट के what is the longest duration that a mutual fund AMC hold a stock for the longest term?
4: Ashutosh, the investor is trying to get into the minds of the fund manager. Your views, sir?
1: So while I won't have a specific study or a number to quote on this, but it will always be a mixed bag. You will find funds which say that they are on a buy and hold strategy, but there are other funds which say that they don't mind churning, they don't mind getting in and getting out. Different kind of funds, different fund managers, different mandates, and you will find the behaviors could be different. Even in the same fund, a lot of fund managers, what they call as their portfolio construction strategy as a core and a satellite approach, where they would have a core component in the portfolio, which are stocks, which they consider as all-weather stocks, which they continue to hold through the ups and downs of the market. And then there is a satellite portfolio where they take slightly more opportunistic, slightly more tactical calls depending upon the prevalent macroeconomics, which industries or themes they think will benefit, and then they move in and they move out. So portfolio construction, managing your money is a fairly complex task, better left to the fund manager, better left to their discretion and judgment, and you would find all shades of gray.
0: और श्रोताओं को हम याद दिला दें कि आज हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। और अगर आपको म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका के राष्ट्रपति

0: मसूद ने भी कहा है कि ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने अडिग रहेगा। उधर श्री ट्रंप ने ईरान के 7 दिन के संघर्ष विराम और होर्मुज को फिर से तुरंत खोलने के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे।
1: Moving to our next story, India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during ongoing conflicts. Addressing the UN General Assembly in New York last night, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar pointed out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations. Referring to the protracted Russia-Ukraine conflict, the minister said the ongoing war remains a critical international concern and echoed Prime Minister Narendra Modi's call for an end to hostilities. On the Gulf conflict, Dr. Jaishankar said the hostilities are exacerbating an already difficult situation.
2: This year, we are witnessing a conflict in the Gulf, one that is exacerbating an already difficult situation. We remain deeply concerned over continuing hostilities. The targeting of commercial shipping and seafarers transiting international waterways is simply unacceptable. India calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
1: Dr. Jaishankar also said that the world is witnessing weaponization of everything from finance and market access to supply chains and technology. He said countries are responding by reducing risks and diversifying their ties. Dr. Jaishankar described a 4F crisis confronting the global south, the security of food, fuel, fertilizer and finance. And once again, Jitendra from Jaipur is rejoining in Market Month. Jitendra ji, swagat hai Market Month mein, apna sawal poochhein.
3: Hello, haan, sir, this is ek hamara multi कैप फंड चल रहा है महिंद्रा मनु लाइट में, एक और हम चाहते हैं मल्टी कैप फंड तो बता देते हैं जैसे एक और खोलने के लिए, और इसमें एक फंड आया था नया अभी जस्ट 15 दिन पहले, एक्टिव मोमेंटम फंड। तो किसको ट्रैक करता है, किसका आइडिया है क्या एक्टिव मोमेंटम फंड?
4: तो देखिए, नए फंड से मेरा सुझाव रहेगा कि थोड़ा आप बचें। एक्टिव मोमेंटम फंड, उसकी स्ट्रेटेजी मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की रहेगी। एक्टिवली मैनेज रहेगा, तो एक्टिव मोमेंटम का मतलब है एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड जो कि मोमेंटम एक उसकी स्ट्रेटेजी का मेन फैक्टर रहेगा जिसके बेसिस से वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेगा। और अगर मोमेंटम एज अ थीम, एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चलता है बाजार में, तो आप इस फंड से रिटर्न की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन नए फंड से मेरे ख्याल इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए। कुछ भी ऐसा नोवेल्टी कोई भी नया फंड नहीं देता है कि आपको उसके एनएफओ के टाइम पे ही उसमें निवेश करना है। उसको समय दीजिए, अपने आप को प्रूव करने दीजिए मार्केट में। अच्छे रिटर्न अगर वो देता है, कंसिस्टेंसी के साथ देता है, तो उसमें निवेश करने की सोचें। और इसी तरह आप अपना मल्टी कैप फंड भी कोई ऐसा फंड का चुनाव करें जो कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न। मल्टी कैप फंड को आए हुए मार्केट में करीब 5-6 साल हो गए हैं, 5-6 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है जब ये कैटेगरी सेबी द्वारा नई बनाई गई थी। तो आप कोई भी ऐसा फंड जो, और इस बीच में मार्केट के उतार चढ़ाव के दौर भी मार्केट में देखें, थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट कोई ऐसा फंड का चुनाव करके निवेश करें जिसने कंसिस्टेंटली रीजनेबली अच्छे रिटर्न दिए। नेवर चेज द हॉटेस्ट परफॉर्मर, एकदम जो टॉप परफॉर्मर है कभी भी उस फंड के पीछे जरूरी नहीं है कि वही सबसे अच्छा फंड हो। ऐसा फंड का चुनाव करें जो कि एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखता है और मार्केट के उतार चढ़ाव में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हिलती डुलती नहीं है, वो अबव एवरेज अगर हर टाइप के मार्केट के माहौल में आपको अनुभव दे पाता है, तो मेरा ख्याल वो एक अच्छा फंड होगा।
0: जी, और अगले कॉलर है दिल्ली से राजेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
5: मैंने कुछ म्यूचुअल फंड होल्डिंग डीमैट होल्डिंग में ले लिया था। डीमैट होल्डिंग में रिडम्पशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं उसे डीमैट से अलग निकाल के कर सकता हूँ क्या? यदि हाँ तो क्या डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वही रहेगी?
4: जी, तो आप डीमैट होल्डिंग्स को आपने पहला बात, आपकी जो टिप्पणी है ये बिल्कुल सही है कि डीमैट होल्डिंग्स को बेचना आप उसी ब्रोकर के थ्रू वहीं पे बेच सकते हैं जहां से आपने खरीदा है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो एक साधारण जरिया होता है म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करने का जिसको एसओए फॉर्मेट या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट बोलते हैं, वो ज्यादा फ्लेक्सीबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कहीं से भी म्यूचुअल फंड खरीद भी सकते हैं और किसी और प्लेटफॉर्म पर उसको बेच सकते हैं। तो

0: आपके पास उसमें ट्रांजैक्शन करने के सुविधाएं और साधन ज्यादा उपलब्ध हैं, तो एसओई फॉर्मेट एक आम म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए मेरी राय में बेहतर, ज्यादा सुगम तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। अब रही बात आपकी डीमैट होल्डिंग्स की, तो बिल्कुल आप उनको एसओई फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अपने इन्वेस्टर सर्विस से आप कॉन्टैक्ट करें, जिस भी एएमसी में आपका निवेश है, कुछ आपको उसमें डॉक्यूमेंटेशन करना होगा और आपकी यूनिट्स डीमैट से एसओई फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसके बाद आप उनको कहीं भी खरीद बेच पाएंगे और आपकी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वही रहेगी। तो अगर आप शायद आपका इशारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबिलिटी की तरफ है, तो बिल्कुल आपकी जो फर्स्ट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपकी, वहीं से आपकी होल्डिंग पीरियड को काउंट किया जाएगा।
1: अगली खबर पर नजर डालते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक 17,131 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेच दिए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार 25,682 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंज में हुई बिकवाली से निकाले गए, लेकिन प्राइमरी मार्केट में एफपीआई ने निवेश कायम रखा और सितंबर में अब तक उन्होंने इसमें 8,551 करोड़ रुपए डाले हैं। विदेशी निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय ऋण बाजार से भी निकासी का रुख कायम रखा है। एफआईआर के जरिए उन्होंने 7,385 करोड़ रुपए निकाले, वीआरआर के जरिए 3,021 करोड़ रुपए और जनरल लिमिट रूट से 1,889 करोड़ रुपए निकाले हैं। और अगले कॉलर है गाजियाबाद से गौरव, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्ते
2: सर, मेरा सवाल रियल एस्टेट कंपनी पिछले कई सालों से बहुत अच्छा, मतलब पिछले साल दो साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है वो बेसिकली वो कवर करता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज और वो रेजिडेंशियल कवर नहीं करता है, ऐसी बात, ये बात सही है क्या? रेजिडेंशियल कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में जो उछाल आता है उसको वो कैप्चर नहीं कर पाते, दे आर मोर इन टू ये जो प्रॉपर्टीज होती है अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज और मॉल प्रॉपर्टी, उसी को कवर करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इसी से संबंधित इससे सवाल है कि क्या कोई ऐसे फंड होते हैं जो रियल एस्टेट कंपनीज को में ही इन्वेस्ट करते हैं या उनके ऊपर ज्यादा फोकस है, ऐसा कुछ फंड है क्या जो इस पर उस पर ध्यान दिया जाता है, या फ्लेक्सी कैप विल बी एबल टू कैप्चर द रियल एस्टेट मार्केट ग्रोथ? थैंक यू सर।
0: जी, तो देखिए रीट्स अपने आप में एक अपकमिंग एसेट क्लास है। इंडिया में अभी बहुत ज्यादा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्रेवलेंट नहीं है, बट ये अपकमिंग सेगमेंट है। सेबी का भी इसके ऊपर थोड़ा फोकस है, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में रीट्स को एक अपशॉट देने के लिए उनको इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स का दर्जा दिया गया है, जिससे कि वो जो इंडेक्स होते हैं, मार्केट इंडेक्स होते हैं, उनमें रीट्स की भी एंट्री हो पाए। तो रीट्स को प्रमोट करने के लिए सेबी अपना काम कर रहा है। आने वाले टाइम में होपफुली रीट्स एज एन एसेट क्लास आपको उस पर ऑप्शन ज्यादा मिलेंगी, ज्यादा वेरिड टाइप के रीट्स की अवेलेबिलिटी होगी। आपका सवाल म्यूचुअल फंड्स में, तो देखिए जो स्टैंडर्ड अभी तक जो वनीला म्यूचुअल फंड्स रहे हैं उनमें आपको रीट्स का एक्सपोजर काफी लिमिटेड ही मिलता है, लेकिन हाल फिलहाल में एक दो फंड आए हैं जो रीट्स पे ही फोकस करते हैं, रियल एस्टेट पे फोकस करते हैं। उनका मैंडेट है कि वो आपका पैसा रीट्स में इन्वेस्ट करेंगे और अगर रीट्स में उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो रियल एस्टेट वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। बहुत नए फंड है, एक का तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो एनएफओ पीरियड ही चल रहा है, तो इनको आप आइडियली थोड़ा समय दीजिए ये कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर आप काफी इंक्लाइंड हैं तो बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करके आप देख सकते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहता है इनमें, बट इनको थोड़ा समय दीजिए और आने वाले टाइम में मेरा ख्याल ये सेगमेंट में आपको ऑप्शंस काफी मिलेंगी।
3: And we're joined in by Dinesh from Delhi. Dinesh, welcome to Market Lunch. Please ask your question.
4: Namaskar, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ, दिल्ली अशोक विहार से।
3: जी नमस्कार।
4: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कंपनीज होती हैं म्यूचुअल फंड में इक्विटी कंपनी, वो जब डिविडेंड अनाउंस करती हैं तो वो डिविडेंड का अमाउंट कहाँ जाता है और क्या वो एनएवी को अफेक्ट करता है, और इस बारे में क्या कोई थर्ड पार्टी ऑडिट होता है टू एंश्योर दैट द डिविडेंड इज इंटेंडेड टू गो टू द प्लेस वेयर इट इज सपोज टू बी? थैंक यू।
0: जी, तो देखिए म्यूचुअल फंड्स में पहली बात तो डिपेंड करता है कि आप जो म्यूचुअल फंड स्कीम होल्ड करते हैं, जो आप प्लान होल्ड करते हैं, वो आप डिविडेंड प्लान है कि ग्रोथ प्लान है। डिविडेंड प्लान्स को म्यूचुअल फंड्स में आईडीसीडब्ल्यू प्लान्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई फंड डिविडेंड, कोई आप ऐसी स्कीम है जिसके बारे में आपने सुना कि उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन अगर आप उसका ग्रोथ वेरियंट ओन करते हैं तो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। तो कई बार मैंने देखा है कि ये कुछ इन्वेस्टर्स को ये थोड़ा सा

0: टाइम में हो जाता है कि इसका अभी मैंने सुना था डिविडेंड आया लेकिन मेरे पास नहीं आया। वो काफी बार वो कारण यही होता है कि आप शायद ग्रोथ प्लान में उस फंड के इन्वेस्टेड होंगे, डिविडेंड प्लान में नहीं। बाकी म्यूचुअल फंड्स में देखिए डिविडेंड कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। जब मानिए एक फंड है जो कि 20 रुपए की एनएवी पे ट्रेड कर रहा है और वो फंड 1 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करता है, तो वो 1 रुपया जो भी डिविडेंड प्लान के निवेशक हैं उनको उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जितनी भी वो यूनिट्स होल्ड करते हैं उसके हिसाब से, और उनके फंड की एनएवी 20 रुपए से 19 रुपए हो जाएगी। तो डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स में कुछ एक्स्ट्रा लाभ नहीं है, वो आप ही का पैसा थोड़ा सा रिडीम कर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये बिल्कुल ये सटीक तरीके से किया जाता है। आरटीएस जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के निवेशकों का रजिस्टर ओन करते हैं, जहां पे बड़ी सटीकता के साथ सारे फंड निवेशक उनकी कितनी होल्डिंग्स हैं सब कुछ दर्ज होता है, तो बड़े प्रिसिशन के साथ ये डिविडेंड का काम किया जाता है। इट इज सब्जेक्ट टू इंडिपेंडेंट ऑडिट। म्यूचुअल फंड्स जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, एएमसी का जो स्टेट्यूटरी ऑडिट होता है वो एक अलग होता है, और म्यूचुअल फंड के जो अकाउंट्स होते हैं वो एएमसी से अलग अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स टेक्निकली अगर देखें तो एक ट्रस्ट ओन करता है, और जो म्यूचुअल फंड्स के खाते होते हैं वो एक अलग इंडिपेंडेंट ऑडिटर को ऑडिट करके सर्टिफाई करने होते हैं, तो काफी वेल रेगुलेटेड वो है। ऐसा हो सकता है कि कुछ बहुत पुराने निवेशक जिनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग उनके अकाउंट में दर्ज नहीं है, तो ऐसा है कि डिविडेंड का पैसा अनक्लेम्ड रह गया है, तो लेकिन ये एज अ निवेशक आपको एंश्योर करना होगा कि आपकी प्रॉपर बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके फोलियोज में मैप्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग के जरिए वो सक्षम है कि बैंक आपके बैंक अकाउंट में सीधा आपके डिविडेंड की रकम को वो ट्रांसफर कर दें। तो अगर आपने ये एंश्योर किया है तो डिविडेंड का पैसा जरूर आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है तो आप एएमसी के इन्वेस्टर सर्विस सेंटर से संपर्क करें, वो आपकी मदद करेंगे। अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, आपको फिर भी लगता है कि आपके साथ कुछ शायद धोखाधड़ी हो रही है, तो आप बिल्कुल सेबी पे उनके स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पे इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और जरूर कार्रवाई होगी
1: जी। और नई मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर व्यवस्था अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगी। इसके तहत 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लेन देन पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि स्थानीय बाजारों में क्यूआर कोड स्कैन करने पर क्या ग्राहकों से कोई शुल्क लिया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कहा है कि स्थानीय बाजारों, रेहड़ी पटरी वालों या छोटी खुदरा दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन करने पर ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। एनपीसीआई ने यह भी साफ किया कि क्यूआर कोड से भुगतान करने वाले ग्राहक से किसी भी राशि की खरीदारी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
2: Our next caller is Shankar from Chennai. Welcome to Market Month. Please ask your question.
3: Good evening.
2: Good evening, sir.
3: I have a query related to mutual fund investments for NRI. Please listen to this query carefully because it's a very unique query. Okay?
2: Sure.
3: And answer me if in case of advice, please let me know. For an NRI relative who is staying in Germany, he is already investing through a mutual fund distributor through DMAT account. Okay, sir? Now, his mother passed away and he wants to have the mother's things which he will acquire in his NRO account, okay, to be invested in mutual fund. But the mutual fund distributor says one more DMAT account need to be opened because the current DMAT account is only for NRE account investment. Is this correct? What the regulation says and what is the advice? Because having two DMAT accounts is cumbersome, am I right? Are there any exceptions? Who can guide me correctly on?
0: Well, I'm afraid I also may not be 100% sure because of the very specificity of this query, but I'm inclined to believe that what your distributor is saying is right, because in the DMAT account, if an NRE account is already linked, then you may not be able to link an NRO account with the same DMAT account, and that could be the reason. So it is not about the DMAT account per se, but likely related to the NRE and the NRO status, two different accounts which may not be feasible here, but something which needs to be ensured. And this is my opinion, this is my gut feel, but I'm afraid I won't be able to answer with 100% surety right now.
1: जी, और अगली खबर पर नजर डालें, देखें सोने और चांदी का हाल। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। अमेरिकी डॉलर की मजबूती ट्रेजरी यील्ड में

0: बढ़त और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीद से निवेशकों ने कम उत्साह दिखाया। एमसीएक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना वायदा पिछले हफ्ते 2.3% की गिरावट के साथ 1,50,881 रूपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। दिसंबर अनुबंध की चांदी के वायदा भाव में 2.8% की कमी आई और ये 2,34,696 रूपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना 2.3% गिरकर $4,287.80 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर रहा। दिसंबर अनुबंध की चांदी 3.5% लुढ़ककर $64.80 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर आ गई।
1: Domestic investors are expected to closely monitor key market triggers including macroeconomic data, geopolitical developments, foreign institutional investor FII flows, commodity prices, bond yield movements and currency fluctuations during the holiday shortened week ahead. Indian equity markets will remain closed on Friday on account of Mahatma Gandhi's Jayanti. Market participants will focus on industrial production data, IIP, monthly auto sales figures, GST collection data and the HSBC manufacturing PMI reading. The primary market is also set for another busy week, with 4 main board IPOs scheduled to open for subscription. Globally, investors will closely monitor developments surrounding the West Asia conflict in the United States. Personal consumption expenditure PCE and jobs data will remain on investors' radar. Meanwhile, inflation and trade data from South Korea will also be closely watched by market participants.
0: आशुतोष 10 सेकंड में बता दें हमें कि अगर हमारा कुल निवेश कुछ 30,000 रूपये का एसआईपी चल रही हो तो उसका हम कितना प्रतिशत स्मॉल कैप में रखें, अगर हमें बहुत लालच आ ही रहा हो तो।
2: देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको डर नहीं लगता, आप रख सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल अपना 20-25% तक पैसा आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं।
0: जी आशुतोष, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के और हमारे भी सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी,
1: before we close the headlines once again, ahead of festive season, Prime Minister Narendra Modi urges everyone to promote local products. External Affairs Minister S. Jayashankar calls upon all warring nations to de-escalate tensions and keep energy and trade routes open during ongoing conflicts. And foreign portfolio investors withdrew over 17,000 crore rupees from Indian equities in September so far. That's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
5: मीडियम 1,071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है प्रोग्राम तमिल इरशाद।

राधा कुमार विद्यार्थी, सरिता राधे विद्यार्थी और फूलना झा। और ये आया है फरमाइशी मेल स्वीटी और नई दिल्ली वेस्ट से स्वीटी रवि और इंदर का। इसी नगमे को सुनना चाहा था। छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश वर्मा ने। किशनगंज बिहार से ये फरमाइशी मेल मिला है हमें रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और अनुराग मोहन का। सब्जी मंडी बुल्डाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन और मज्जू बाबा। अगला फरमाइशी मेल हमें मिला है, ये आया है मेरठ से, सरदना मेरठ से, अनिल जैन, सायम जैन और जीवीएम जैन का। और फरुखाबाद यूपी से संजय चौरसिया, पूजा चौरसिया और उनकी साथी। इमाम मंजिल बिशनपुर गिड्डी झारखंड से हिना साबरी, आयजल इमाम और मोहम्मद हसन इमाम। और समीन अगला नगमा आप सुनेंगे फिल्म धूल का फूल का। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की। नगमा निगार हैं साहिल लुधियानवी और मौसिकार एम दत्ता। सुनने की फरमाइश की है आप सबने। अगला फरमाइश फरमाइश हम तक पहुंची है, ये आई है रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और अनुराग मोहन की बिहार से। इसी नगमे को सुनना चाहा है टैगोर गार्डन से अर्चना पाठक, राधा रानी पाठक और इनके साथी। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और रिधान खुराना। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग। मजनू का टीला दिल्ली से ये फरमाइशी मेलम तक पहुंचा है मधु बालूजा, कमल बालूजा और सागर बालूजा का। आतिश रेडियो लिसनर्स क्लब बिशनपुर गिडी झारखंड से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं इम्तियाज इमाम, आतिश इम्तियाज इमाम आतिश, तायरा परवीन आतिश और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा। अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब और अब्दुल हक डावर, जयलक डावर, मोहम्मद उमर डावर, बटाबारा छत्तीसगढ़ से ये फरमाइशी मेला में मिला है। पंडरपुर तालुका पंडरपुर से जाके मुलानी, सुरैया मुलानी और सुभान मुलानी। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी। अहमदपुर के गांव खंडवा से कैलाश पूर्माली, दीपक पूर्माली और वैदिक पूर्माली। और ये मिला है सनानास का। और इनके साथ बहुत सारे लोग हैं, इनका मैसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फरमाइशी मेल देखते हैं। गाड़ी नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण ताई लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव और सोनल यादव। अगला फरमाइशी मेल इसी नगमे को सुनना चाहा इनका आया है आकोट से विनायक बेडी, श्रीमती मंगला बेडी और शुभम बेंडे। सुनिए सुनते आप सबकी पसंद का ये अगला नगमा। फिल्म का नाम है धूल का फूल। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की।

और समय अगला नगमा आप सुनेंगे। फिल्म का नाम है बहारों के सपने। आवाज लता मंगेशकर की है। मौसीकार हैं आरडी बर्मन। सुनने की फरमाइश की है आप सबने केसर हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, उपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और शाहनवाज सरफराज अब्बासी, मंगदा पार मंगलवेडा महाराज से मास्टर रलीम पाटिल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। और ये अगला फरमाइशी मेल पहुंचा है, इसी नगमे को सुनने की फरमाइश की है जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और जय जैस्मिन भट्ट ने, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बोला अनेजा। और ये फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सल्ला मनवर और बीबी प्रियांशी का, चिंता कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद इसाक खत्री और मोहम्मद अयूब खत्री, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रीति मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, संबल से छोटी अंसारी, राजधानी रायपुर से नीलू बेग नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और विट्टू कुमार, और ये फरमाइश आई है बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम और इनके साथ ही। अब फरमाइशी मेलम तक पहुंचा है विदर्भ अकोट से के संजीव डाबेराव, डॉक्टर रसिका डाबेराव, डॉक्टर कौस्तुंभ डाबेराव, शास्त्री नगर बीच शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल और सोनिया विशाल सपकाल, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरालानी और गीतिका खोरवाल और इनके साथ ही। अगला फरमाइशी मेल पहुंचा है हम तक छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम और मोहम्मद अशफाक का, जसपुर उत्तराखंड से ये फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत का, बुलडाना इस्लामपुर महाराज से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेश कुमार दामोदर, डबरी बाटा पारा से के आर साहू, आकाश कमलेश और गन्नूलाल रजक, और अगला फरमाइशी मेल पहुंचा है छत्तीसगढ़ चौड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद, ये हमने शामिल कर लिया था। और अगला फरमाइशी मेल आया है गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिद्दा अलका मिद्दा और इनके साथ ही। चलिए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये अगला नगमा। फिल्म का नाम हमने बता दिया था आपको बहारों के सपने, आवाज लता मंगेशकर की।

और समीन अगला नगमा आप सुनेंगे। फिल्म का नाम है दीदी। आवाजें हैं मुकेश और सुधा मल्होत्रा की। मौसिकार दत्ता नाइक, नगमा निगार साहिल लुधियानवी। सुनने की फरमाइश आप सबकी। बताला महाराज से विजय सुलरकर, रतनमाला सुलरकर और राकेश सुलरकर, पंडर कावड़ा, यवतमाल से नीलूषा बरानी, अनुश्री धनुश्री। और अगला फरमाइश मेरे हम तक पहुंचा है, ये आया है कस्बा बिल्लाम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम जैनब। बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान। महाराष्ट्र प्रताप कॉलोनी, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नचानी, भारती नचानी और मिथिला नचानी। नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद शाहिद का ये फरमाइश मिली है हमें। फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से, भागलपुर से प्रदीप कुमार मंडेल, आशीष मंडेल और कुंदन मंडेल। नाज मंजिल महसूस सीतामणि बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम और बीना वसीम बहू। और अगला फरमाइशी मेल जो हम तक पहुंचा है वो आया है मछली गोदाम रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह का। इसी नगमे को सुनना चाहा था अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चंद फारूक पुल वालों ने, निजामाबाद तेलंगाना से, नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से। और इन्फॉर्मेशन मेल पहुंचा है रजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाहजापुर से, मनमोहन रजावत, मधु रजावत और राशि रशीद का। जफर मौजम शेख, फलक तबस्सुम शेख और बीबी अली सबा शेख, रघुवीर नगर नई दिल्ली से ये फरमाइशी मेल हमें मिला है। विजय सुलरकर, रतनमाला सुलरकर और हर्षल सुलरकर का मुताला महाराज से, देर से दिग्दर्शन और कविता गौड़। बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत और अर्जुन भारती, और हरगोविंद नगर नवाशहर पंजाब से सुरेंद्र संधु, अनीता संधु और प्रतीक्षा संधु। गांव जाखुद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, बंगला देवी खटक और पूजा खटक। शिरवानी स्कूल गंजुनवारा से आफताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर। वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार और भावेश सनी। कृष्ण कॉलोनी झांसी से सुभाष योगी, राजू मिगलानी और डब्बू बब्बू। और ये अगला फरमाइशी मेल हमें मिला है ताज मोहम्मद अंसारी, ग्राम साबिर राही मेरा जहां का, आजाद नगर।

जहां मोदी ने कहा कि भारत कल सरहद पार सर्जिकल स्ट्राइक हमले के 10 साल पूरे होने की याद ताजा करेगा। भारत ने 2016 में 28 और 29 सितंबर की रात ये हमले किए थे, जिनमें उस महीने के आगाज में उरी में किए गए दहशतगर्दाना हमले के जवाब में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले दहाई में 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट फिजाई हमलों से 2025 के ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये वाजे बयान दिया कि दहशतगर्दाना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जनाब मोदी ने उस वक्त को याद किया जब सिलसिलेवार बम धमाके मुल्क में अक्सर होते थे। उन्होंने 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में किए गए सिलसिलेवार बम धमाकों का जिक्र किया, जिसमें बहुत से लोग हलाक हो गए थे, जिसके कुछ ही हफ्ते बाद मुंबई में 26/11 के दहशतगर्दाना हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत आज दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अख्तियार किए हुए है और अपने तरीकेकार का समरा भी देख रहा है। 2027 की मर्दमशुमारी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि इस अमल का पहला मरहला तकरीबन सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मुकम्मल हो रहा है। उन्होंने कहा कि 32 करोड़ से ज्यादा कुनबों के आदादोशुमार रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी का ये काम लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दूर दराज और बर्फ से ढके हुए इलाकों में भी जारी है, जहां बहुत से तहरीक देने वाले तजुर्बात हासिल हुए हैं। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी एक कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खुदशुमारी की सहूलत से ये अमल आसान हो गया है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब का इख्तिताम करते हुए लोगों को मुबारकबाद दी और आइंदा त्योहारों के दिनों में खुशी और खुशहाली की नई ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी ने 2 अक्टूबर को बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में लोगों की और ज्यादा शिरकत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी मुल्क के किसी इलाके पर कब्जा करना नहीं चाहता, अलबत्त अगर उसे धमकी दी जाएगी तो वो अपनी सलामती और दिफाए खुद मुख्तारी की हिफाजत करेगा। नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस की तरफ से मुनक्किदा दिफा से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मसूफ ने जोर देकर कहा कि भारत आलमी इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अपनी दिफाई खुद मुख्तारी की कीमत पर नहीं। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर कहा कि किसी ऐसे मुल्क के साथ मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती जो भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को बढ़ावा दे। कौमी इत्तेहाद को कौमी सलामती का एक अहम सुतून करार देते हुए जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क की सलामती अकेले मुसल्ला फौजों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर शहरी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने शहरियों से जोर देकर कहा कि वह मजहब, जात पात, जुबान, खिते और दीगर तरह की शिनाख्त की बुनियाद पर की जाने वाली तफरीक से ऊपर उठें और कौमी मफाद को जाती और छोटे मफादात से ऊपर रखें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने साबरमती में आज कई बड़े रेलवे तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा और आगाज किया। इन प्रोजेक्टों की लागत 1500 करोड़ रूपये से ज्यादा है। वजीर मौसूफ ने गुजरात के वजीर आला भूपेन्द्र पटेल की मौजूदगी में मुल्क की पहली एलएनजी से चलने वाली ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन साबरमती स्टेशन से रवाना की गई। इस ट्रेन में डीजल और रकीक बनाई गई कुदरती गैस के दोहरे ईंधन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके ईंधन में तकरीबन 40% रिवायती ईंधन डीजल की जगह 1400 हार्स पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये भारत की माहौल दोस्त सफर और कार्बन के अखराज को पूरी तरह खत्म करने के मुल्क के मकासद की जानिब एक अहम संग मिल है। इस मौके पर एक आवामी इज्तम से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की क्यादत में पिछले 12 साल में भारतीय रेलवे की काबिल जिक्र तब्दीली को उजागर किया। वजीर मसूफ ने जदीद रेल बुनियादी ढांचे में भारत की तेज रफ्तार तरक्की पर जोर दिया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि टेक्नोलॉजी किसी डॉक्टर की इंसानी हमदर्दी के जज्बे की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने मसनूई जहानत एआई और डिजिटल सेहत के शोबे में तेजी से पेशरफ्त के दौर में डॉक्टरों के अंदर हमदर्दी के जज्बे की अहमियत को उजागर किया। जनाब राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में एसयूटी अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के जलसे तकसीम असनाद से खिताब कर रहे थे। उन्होंने नौजवान डॉक्टरों पर जोर दिया कि वो अपनी बात वाजे और जामे अंदाज में पेश करें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने रमी कल्चर ऐप और दिगर से मुतालिक एक मामले में तकरीबन 442 करोड़ मालियत की मनकूल

मोहम्मद रफी और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था धर्मपुत्र। नामा निगार थे साहिल लुधियानवी, मौसीकार थे अंदंता। सुनने की फरमाइश थी आप सबकी राम रतन टॉकीज कुंडलवाड़ी से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर और इनके साथी। और ये अगली फरमाइश ही मेरे हम तक पहुंचा है सेलू से हिमलता और हिमलता और सी आर कुलकर्णी चंद्र कुलकर्णी का दुबई से पहुंचा है ये मेल हमें। वारसी क्लब सिंदौली मीरगंज से, मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान वारसी और रेहान वारसी। उसी नगमे को सुनना चाहा था राशिद हुसैन अंसारी ने, नसरीन अंसारी और नोरीन अंसारी ने जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। अगला फरमाइशी मेल हमें मिला है करोला मुरादाबाद से अयूब खान, एडम गुड़िया और शुएब खान का। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत और किसू तासु। अस्तुपुरा जिला मऊ से मदर अली अंसारी, रविया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। और ये फरमाइशी मेल मिला है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव का। इसी नगमे को सुनना चाहा था जिला बारह राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव और सारा परिवार। और समय अगला नगमा हम आपको सुनवाएंगे, फिल्म का नाम है मुकेश की आवाज में ही नगमा है। माफ कीजिएगा, मुकेश की आवाज में नगमा है, फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता। सुनने की फरमाइश की है आप सबने। कुमारी महाराज से अनूप कुमार, उद्धव पाटिल और इनके साथी। निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और स्वप्निल कुमार निषाद छत्तीसगढ़ से, मानपुर छत्तीसगढ़ से ये फरमाइशी मेल मिला है। और इसी नगमे को सुनना चाहा है कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सुनीता दले और अमी के दले ने। सूरज प्राची और एकलव्या बल्लार शाह चंदुलपुर से। यवतमाल महाराज से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई और शैलेश। भलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा शेख रेलवे रोड गंजुनवारा से। अगला फरमाइशी मेल हमें मिला है, ये आया है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह चंदा, जसबीर सिंधा और सीता गीता का। डीजे सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा हरियाली और रास्ता, फिल्म का आवाज मुकेश की।

आजमी। फिल्म का नाम है आओ प्यार करें। बासिकार हैं उषा खन्ना। सुनने की फरमाइश आप सबकी है। कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, तेजस्वी चौहान और अनिकेत, बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंबादे, भारती रंबादे और इनके साथी, जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी, और ये अगला फरमाइशी मेला में मिला है मॉडल टाउन करना आसिसुद्दीन नूतन, किरण ठाकुर और जुग्गी दुआ का, अनुपम कुमारी, अपूर्व कुमारी, अपूर्व सिंह और राकेश कुमार जमशेदपुर से हैं, पुराना तालाब दुमरौसी वली अंसारी, आसमानाज अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी, चमनपुरा उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा बानो और रईसा खातून, ग्राम फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनादी नारंग, लगता है इनका मेल दोबारा रिपीट हो गया शायद। अगला फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है कापसीड़ा मार्ग नई दिल्ली से आमना नसरीन, आजाद और आसमा नसरीन, गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी और मास्टर बीबी, और महाराष्ट्र से अगला फरमाइशी मेला में मिला है रमेश और दिव्यानी गणेश कामले का, वाडी खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी अरोरा, इसी लहमे को सुनना चाह है बाटापारा से बच कामल, मोतीलाल यादव और बसंत बोरगली, जो सुनिए अपनी पसंद का ये अगला नगमा।

और समय लगना हम आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है पड़ोसन। गाने के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और मौसिकार हैं आडी बर्मन। सुनने की फरमाइश की है आप सबने। मुमताज मोहल्ला नवगाछिया से, इसराइल अंसारी सीरत अंसारी और आलिया खातून। इसी नगमे को सुनना चाहा है, ये हैं सुहेल अहमद निदवानी, शाहजेब निदवानी कांदी कोट से, और बूंदी चक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। इसी नगमे को सुनना चाहा है बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और रजत भाटिया जुज्जर हरियाणा से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओमकार गायकवाड़ नांदेड़ महाराष्ट्र से, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा और निशांत वर्मा, शाहनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद अंसारी, मटक्कली जिला बरेली से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और अगला फरमाइशी मेल आया है, इसी नगमे को सुनने की फरमाइश की है, ये हैं वैष्णो कॉलोनी सनावत से मुश्ताक अहमद और मोहम्मद शादाब खत्री। ग्राम पारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंचोर, चंद्र किरण बंचोर और छाया। अकाली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी और दिलीप कुमार चंद्रवंशी। गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी। चलिए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये अगला नगमा। फिल्म का नाम है पड़ोसन, आवाज किशोर कुमार की।

समय चलते चलते कुछ और मेल भी शामिल कर लेते हैं। अजमेर शरीफ राजस्थान से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी।

अभी खुसरो रोड गंजनवारा से डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवर और भुवन प्रकाश गौतम। और समय इसी के साथ मैं नकमात से इजाजत चाहूंगी।

सुनने में भी आप सुन रहे थे क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग दरबारी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। और ये सुनिए पुराने फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिरी शब। आखिरी शब प्रोग्राम लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं नगमा। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं बाबुल फिल्म के नगमे से, आवाज है शमशाद बेगम और लता मंगेशकर की, नगमा निगार है शकील बदायूनी और मौसीकार हैं नौशाद।

मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में यह नगमा था फिल्म दामन का। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से इस वक्त आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिरी शब। आखिरी शब की अगली पेशकश है फिल्म राजपूत का नगमा, आवाज है सुरैया की।

0: मैच जीत लिया। भारत की तरफ से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 139 रन बनाए और नॉट आउट रहे। विराट के अलावा शुभमन गिल ने सेंचुरी स्कोर करते हुए शानदार 110 रन बनाए। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट फैदाई हमले और ऑपरेशन सुदूर दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम मोदी ने 2027 की मर्दमशुमारी में की गई पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने महात्मा गांधी के योम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में और ज्यादा लोगों की शिरकत पर जोर दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के शहर साबरमती से एलएनजी से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो माहौल के लिए साजगार तवानाई के मकसद से रेलवे में की गई एक बड़ी कामयाबी है। और एशियन गेम्स में भारत ने खवातीन की लंबी छलांग और मर्दों की ऊंची छलांग नीज मर्दों और खवातीन के स्क्वैश सिंगल में चांदी के तमगे हासिल किए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब को एक बजने को है। उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। कल सुबह 9:30 पर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे पहली मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शब बखैर। जय हिंद।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच आज हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में कल एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
4: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
2: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी।

मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन कतर सरकार से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त यूपीआई भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2000 रुपए से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेनदेन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना केंद्र पर अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के परिचालन चरण की शुरुआत कर दी है। मित्र देशों की साझेदारी में शक्ति विषय पर आधारित यह अभ्यास अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास में 7 मित्र देश ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Apneet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani.
1: 10 years ago, 28-29 September 2016, Bharatiya Sena ne Pakistan mein aatanki thikanon par surgical strike ki thi. सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था. बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा. अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है.
0: स्पीकिंग अबाउट सेंसस 2027, मिस्टर मोदी सेड डेटा फ्रॉम मोर देन 32 क्रोर फैमिलीज हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड सो फार. ही अर्ज्ड पीपल टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइव एंड यूज सेल्फ इन्यूमरेशन फैसिलिटी. मिस्टर मोदी ऑल्सो कॉल्ड फॉर ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन क्लेनलीनेस ड्राइव्स अहेड ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ऑन द 2nd ऑफ अक्टूबर. ही सेड मिलियंस ऑफ यंग पीपल हैव प्लेज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स अंडर द नशा मुक्त युवा अभियान. ही कॉल्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ ड्रग फ्री यूथ एंड अनाउंस्ड हेल्थ चेकअप्स एंड मेडिटेशन कैंप्स एज पार्ट ऑफ द 100 वीक कैंपेन. The proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association AIBEA. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association. In a social media post, the AIBEA has stated that this decision was taken after a meeting held between the Indian Banks Association and the United Forum of Bank Unions UFBU on the issues related to the strike. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Canada are preparing to take their bilateral relationship to a higher level. He met Canadian Foreign Minister Anita Anand on the sidelines of the United Nations General Assembly in New York. In a social media post on X, Dr. Jaishankar described the discussion as very productive, adding that both the countries are working to strengthen ties. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will inaugurate a two-day national conference on agriculture for Rabi campaign 2026 in New Delhi today. The Agriculture Ministry said in a statement that the two-day conference will focus on strengthening center-state coordination and evolving a coordinated, outcome-oriented strategy for enhancing agricultural production, productivity, sustainability and farmers' incomes. The Supreme Court will hear a plea today challenging the center's decision to impose a merger.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10:15 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे। दोस्तों, गीत सुनहरे वो कार्यक्रम है जिसमें आप सुनते हैं वो गीत जो हमेशा से हमारे दिलों पर राज करते हैं। और आज के गीत सुनहरे कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म महल के गीत के साथ। आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म नवरंग से। आवाजें दी हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। सी रामचंद्रन का संगीत है और गीतकार हैं भरत व्यास।

मुझे सुनते हैं अगला गीत फिल्म मिलन से, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म साहिब बीबी और गुलाम से, आवाजें हैं आशा भोसले की।

0: माँ मुझे क्षमा कर दीजा, माँ की महानता मैंने बहुत देर में जानी, माँ आखिरी वक्त में बेटे को माँ से अलग करने का मुझसे माँ बाप हुआ, माँ मुझे माफ कर दो।
1: मैं इस बर्बादी की वजह हूँ, मेरी वजह से तुमने खुल खुल के जान दे दी। ऐशो आराम के लालच में मैं अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया। मैं बड़ा नालायक हूँ, मुझे तुम्हारे पांव छूने का भी अधिकार नहीं।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में और लता मंगेशकर की आवाज में गाया ये गीत, फिल्म का नाम गाइड। लीजिए सुनते हैं अगला गीत।

इंगित लिया गया है फिल्म अनामिका से। आवाज़ें लता मंगेशकर की, संगीत है आर डी बर्मन का।

इसे सुनते हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है अखियों के झरोखे से। आवाज है हेमलता की और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। इस आखिरी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। यह आकाशवाणी दिल्ली का यह लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 2 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत के आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन कतर सरकार से मुलाकात करेंगी तथा साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त यूपीआई भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को दिए जाने वाले 2000 रूपये से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेनदेन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य सेवा की भावना, समुदाय की भागीदारी और देश के प्रति समर्पण को बढ़ावा देना है। विकसित भारत दौड़ 2026 के लिए कल भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकजुट हुए। यह दौड़ भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इंडियन पीपल्स फोरम IPF के साथ मिलकर मशहूर दुबई फ्रेम के पास आयोजित की थी। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। यह मैच नेशन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम अपना स्वर्ण पदक बचाने की कोशिश करेगी। अफगानिस्तान जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है लेकिन ग्रुप स्टेज में उसे नेपाल से हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान की टीम भारत को कड़ी टक्कर देने और सेमीफाइनल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करेगी। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिंडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashwani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani.
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
3: स्पीकिंग अबाउट सेंसस 2027, मिस्टर मोदी सेड डेटा फ्रॉम मोर देन 32 क्रोर फैमिलीज हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड सो फार। He urged people to participate in the drive and use self-enumeration facility. Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drive ahead of the birth anniversary of father of the nation, Mahatma Gandhi, on the 2nd of October. He said, millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukta Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth and announced health checkups and meditation camps as part of the 100-week campaign. The proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association, AIBEA. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association, IBA. In a social media post, the AIBEA has stated that this decision was taken after a meeting held between IBA and the United Forum of Bank Unions, UFBU, on the issues related to the strike. Defence Minister Rajnath Singh has said, India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. Mr. Singh was addressing a defence conclave in New Delhi yesterday. He said, India does not seek to occupy the territory of any country, but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy if threatened. He said, as long as a neighboring country continues to support terrorism, India is entitled to take all necessary measures against it. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will inaugurate a two-day national conference on agriculture for Rabi campaign 2026 in New Delhi today. The Agriculture Ministry said in a statement that the two-day conference will focus on strengthening center-state coordination and evolving a coordinated, outcome-oriented strategy for enhancing agricultural production, productivity, sustainability, and farmers' incomes. The Supreme Court will hear a plea today challenging the center's decision to impose a merchant discount rate, that is MDR, on specified UPI person-to-merchant transactions of over 2,000 rupees. Ending nearly 6 years of fully free UPI payments, the government has introduced a 0.4% fee on transfers of over 2,000 rupees made to merchants through the UPI platform from October the 15th, while explicitly ring-fencing everyday person-to-person transactions and small payments from any charge. The MDR will be capped at 300 rupees for payments of 75,000 rupees and above.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2:10 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सरिता, लाई हूं आपके लिए बेहतरीन खूबसूरत गीत नॉनस्टॉप। तो एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत गीतों की झड़ी को।

0: मुझे शर्म है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: I love you.
2: Yeah!

0: अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन कतर सरकार के नेतृत्व से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रूपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त UPI भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रूपये से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। नेपाल में 4 दिनों की मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 21 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हुए हैं, जबकि 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सबसे ज्यादा मौतें भूस्खलन के कारण हुई हैं। भूस्खलन से 14 लोगों की जान गई और 5 लोग लापता हो गए। बाढ़ से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोगों की मौत लगातार बारिश के कारण हुई। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। यह मैच निशन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम अपना स्वर्ण पदक बचाने की कोशिश करेगी। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत और गजल।

शफक कहते हैं किरणों को रेज और धनु रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है शफक

ऋषि व पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमल ने।

आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4:20 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म कर्नाटक म्यूजिक के। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जानकी रमन का गायन।

Hey, nice.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म कर्नाटक म्यूजिक के। इस कार्यक्रम में आपने सुना एस आर जानकी रमन का गायन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरा वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 सितंबर 2026 सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 5 बजने को है, अब समाचार होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम जिन्हें आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज का विषय है भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन। 5:20 पर देशभक्ति संगीत होगा और 5:30 पर आपको सुनवाएंगे स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस खास कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग नट भैरव में डॉक्टर दिनकर शर्मा का हारमोनियम वादन। सुबह 6:10 पर कार्यक्रम होगा वंदना, भक्तिमय संगीत का एक खास कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आएंगे इंद्रप्रस्थ पर। 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज का विषय होगा भीतर के विघ्नों का नाश। हर रोज की तरह आज भी सुबह 6:45 पर आपके लिए लेकर आएंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 6:55 पर होगा संस्कृत में समाचार। 7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर कार्यक्रम होगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग। तो श्रोताओं, ये खास कार्यक्रम आज आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरा वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 5 बजने को है, अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: अमर सात गौर थेर किया अमरदार अमृत छतर गौर राम दिया गौर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच परमान पुरख गौर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो और

गुरु गुरु कहायो पान मथुरा मूरत सदा तेरे लाए चित खान मुख रहो काल युग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लाग बेतर हो पान मथुरा मूरत सदा तेरे लाए चित सन मुख रहो काल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लाग बे

0: जन जाचो जगत पर जानियत बास रैन बास जाको हित नाम स्यो परमतीत परमेश्वर के रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत ताम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही औरे काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व में अर्जुन गुर भगत के हे पाए रेओ मिल राम स्यो अंत न पावत देव सवे मुन इंद्र महासि विजोग करी कुन बेर ब्रंच विचार रेओ हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत शिष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरु ज्योत अर्जन माहे तरी
1: जग और न आहे महात्म्य

0: शतर सिंहासन प्रथमे गुर अर्जन को दे आयो। अजय गंग जल टल सिख संगत सब नावे, नित प्राण बचे वेद ब्रह्मा मुख गावे। अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो, गुर अर्जन सिर छतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर पर गुर रामदास हर पै गयो, हरि वंश जगत जस संचरियो। सो कवन कहे श्री गुर मोयो, हरि वंश जगत जस संचरियो। सो कवन कहे श्री गुर मोयो,
1: वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोग, कैत मज सोग जिसे दही पात खाए जियो। देख रूप अत अनूप मोह मा मग पई, किंकनी शबद चरितकार खेल पाए जियो। काल कलम हुकम पाक तो कौन मेक सके, ईश्वर ज्ञान ध्यान तत ही चाहे जियो। सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। रब दातो दातार परयो जाचक इक सरना, मिले दान संत रेन जे लग पौ जल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दरस मन चाओ भगत हो मन ठहरावे। बलियो चरा गंध्यार में सब कल उदरी एक नाम तरम, प्रगट सगल हर

जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निस बासुर हर चरण निवास तांते संगत सगन पाए पौ मन है तुम लिया गुर प्रगट।

फूले सतधारा से प्रीत एक पंथ सुने हो गोर संगत

जेसका तान मान तान सब तेसका सोई सुगड़ सुजानी

तेन तेल नहीं कीमत जानी रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीर गोर दीनो मंतानी डिगै न डोले दृढ़ कर रहियो पूरन होए त्रिपतानी ओई जो बीच हम तुम कश होते तेन की बात बेलानी अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी प्रगति ज्योत सहज सुख सोब बाजे अनहत बानी कहो नानक निहचल कर बादियों